FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर यह रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: That is love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: साज दिल जब सदा नहीं देता, कोई नगमा मजा नहीं देता।

0: smack them back.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: इन द वे टू स्टार्ट दिस इज द मैन इन द हाउस कम ऑन ऑल द

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। हमारे स्टूडियो का डायरेक्ट फोन नंबर है 39 29 71 04। एक दफा से फिर सुन लें, 39 29 71 04। नियत खाव नियत चू इन हल्फियास नल्फिया। हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज अल्लाह ताला के पाक कलाम से करते हैं।
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم
3: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
2: قل یا ایہا الکافرون
3: اے پیغمبر ان منکران اسلام سے کہہ دو کہ اے کافروں

0: आगे कुछ ना कुछ मेडिकल टर्म्स हमें बताते थे, हमें खुशी होती थी सुन के कि जिन चीजों का हमें इल्म नहीं वो हम सीखते थे और अपने अपने एहतियात करते थे। लेकिन अब मसला ये हो गया कि क्या लोग हम लोगों को ये चीजें बता सकेंगे, क्या हम ये जो पैसा
1: आजकल का जो सबसे बड़ा इल्म है ना कि पैसे किस तरह बनाने हैं, एसेट किस तरह बनाने हैं, बड़े बड़े घर किस तरह बनाने हैं, तो जब हम इस तरह भाग पड़ेंगे तो बाकी चीज़ों से हम हटते जाएंगे। शाह साहब देखे ना कि हम यहाँ यूरोप में रहते हैं, यहाँ जिस तरह हमने कहा था कि हमें मेडिकल फ्री है, मेडिकल की सहूलियात है, हर चीज़ किस्म की सहूलियात है, लेकिन जहाँ हम जोर लगाते हैं वहाँ हर चीज़ में देखें शाह साहब, क्या आप इतना ज़र मुबादला जो अरबों के हिसाब से जो ज़र मुबादला जाता है जो अपने प्यारे वतन जाता है, दूसरे ममालक के लोग भी भेजते हैं, ये नहीं है कि हम भेजते हैं या हमारे मुल्क के लोग भेजते हैं, दूसरे ममालक के लोग भी भेजते हैं, शाह साहब क्या हमें सहूलियात मिलती हैं वो, क्या हमारा ओवरसीज़ का मेडिकल फ्री है, क्या ओवरसीज़ के लिए वहाँ स्कूल बने हुए हैं? तो शाह साहब जब हमें बुनियादी सहूलियात ही नहीं मिलती, क्या वहाँ का तालीमी निज़ाम जो है, वहाँ आप जो है आपका MNA देखे, आपका MPA देखे, वो किस तरह अपनी पर्सनालिटी क्लैश पे पड़ा हुआ है, रिश्वत खोनी का बाजार गर्म है, थाना कचहरी को आप देख लें। शाह साहब एक आसान टारगेट है, आप आजकल आसान टारगेट लोगों ने बनाया हुआ है शौदा को, शौदा के बारे में बहुत सारी बातें की जाती है, आए दिन शाह साहब 70, 72, 20, 30 जो है वो जवान अफीसर अफवाज पाकिस्तान के जो है वो शहीद हो रहे हैं, हम उनका मजाक सोशल मीडिया पर उड़ाते हैं, हम एक पार्टी के सरकार के मुलाजम होते हैं, एक सूबे के मुलाजम होते हैं, उसके बाद अपने मुल्क पर चढ़ाई करने के लिए आ जाते हैं, सोमनाथ का मंदिर बना के गिराने के लिए हम आ जाते हैं। शाह साहब ये शऊर हम कैसे पैदा करें जबकि इस मॉडर्न तीन दौर में हम अपने जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ के लोग भी ये सोच रखते हैं जो मैं बात कर रहा हूँ।
0: ये आपने बिल्कुल सही बात की है, ये शहूर उस वक्त आता है जब पढ़े लिखे लोग जो हैं या जो जो अपने आप को मैं तो उनको मौलवी हजरात कहूंगा, जो अपने आप को आलम दीन कहते हैं, आलम दीन का मतलब होता है कि दुनिया के दीन के बारे में आप बात करें, तो वो जब तक खुद सीधे रस्ते पे नहीं आएंगे, खुद आकर बात नहीं करेंगे। हम कभी कभी किसी महफिल में जाते हैं जहाँ कोई पाकिस्तान से या किसी दूसरी जगह से कोई पढ़ा लिखा बंदा आता है, कहता है जी मैंने इतनी किताबें लिख दी, मैंने इतनी चीजें कर दी, लेकिन जब आप उससे सवाल करते हैं कि क्या आपने किसी ऐसे बंदे से मुलाकात की जो इस चीज से इस रस्ते से गुजर रहा हो, तो जवाब होता है माइनस, यानी कि जो किताबें पढ़ी, जो लिखी हुई किताबें पढ़ी उनमें से अपनी मर्जी के चुनाव करके अपनी किताब लिख दी और कह दिया कि जी मैं सब कुछ कर रहा हूँ। आजकल तो इतना इजी हो गया है, आप देखें कि अब दुनिया भर की जो जो हुकूमतें हैं वो चीखने शुरू हो गए हैं कि ये जो AI आया है ये बहुत ही खतरनाक है, लेकिन हमने पिछले साल से ही आपके रेडियो पे ये लोगों को इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी थी कि प्लीज आप बड़ा मेहरबानी AI को ज्यादा यूज ना करें, ये बहुत ही खतरनाक है, इसके साथ मुख्तलिफ तस्वीरें बन जाती हैं, इसके साथ मुख्तलिफ लोग गलत तरीके इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हर चीज। यहाँ पे हमारे मुल्क में जो आपका रेलिवेंट सवाल था उसकी तरफ मैं आता हूँ, यहाँ पे बजाय चंदे इकट्ठे करके तो पाकिस्तान में भेजने या किसी और मुल्क में भेजने की बजाय इनको ये चाहिए था कि ये ऐसे सेमिनार करें जिसके अंदर इस मुल्क के अंदर रहने वाले जो यंगस्टर्स हैं, हमारी औरतें हैं, बच्चे हैं, वो जो हैं उनसे फायदा हासिल कर सके, उनको समझ सके, और ऐसे ऐसे लोग होने चाहिए जो उस सब्जेक्ट को समझते हो, ताकि वो लोगों के सख्त से सख्त सवालों के भी जवाब जो है वो आसानी से और मुस्कुराहट के साथ दे सके। ये नहीं करें कि जी मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ या मैं बहुत बड़ा तूफान हूँ, मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, तो फिर लानत है ऐसे लोगों के ऊपर कि जो शहीदों को ये कहते हैं कि देखो जी ये शहीद हुए। देखें कुरान, आप जब शहीद का मजाक उड़ाते हैं तो आप कुरान मजीद का मजाक उड़ा रहे हैं, ये हमारे डेनमार्क के उलमा के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो शोहदा के ऊपर हर जुमे के ऊपर लेक्चर दे कि शहीद जो है किसी किस्म का भी कोई शहीद है उसका मजाक ये बिल्कुल ना उड़ाए, क्योंकि अल्लाह ताला ने یہ قسم کھائی ہے کہ جو شہید ہیں تمہیں شوق ہی نہیں, تمہیں تصور بھی نہیں کہ وہ میرے گھر میں زندہ جاوید ہیں. اور اللہ بہتر جاننے والا ہے. جب ہم قرآن مجید کی بات کو ٹالیں گے تو اس کا مطلب ہے ہم مرتد ہو گئے ہیں. قرآن کے زیر زبر کو آپ شک کی نگاہ سے نہیں دے سکتے. تو لہٰذا میں لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ جیسے بھی ہیں دجال مت بنے, آپ مرتد نہ بنے. آپ اپنے آپ کو, اگر آپ کو یہ نہیں پتا کہ شہید کون ہوتا ہے تو اس کے بارے میں مولویوں کے پاس جائیں, پڑھے لکھے لوگوں کے پاس جائیں اور اس کے اوپر آرام سے بیٹھ کے پوری بات سنیں. ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ ہی شہید ہو رہے ہیں یا آپ کے ہی گھر میں سے کوئی شہید ہو رہا ہو. آج آپ شدہ کی بھی مذاق اڑا رہے ہیں, کل کیا کہیں گے جی کہ ہم وارث ہیں اس شہید کے. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اندر جو لفاظ آئے ہیں ہم ان کا غلط مطلب نہیں لے سکتے, ہم اس کا مذاق نہیں اڑا سکتے, کیونکہ اس طریقے سے انسان جو ہے وہ مرتد ہو جاتا ہے. اور کافر مسلمان ہو سکتا ہے, کافر جو ہے مرنے دم سے پہلے دعا کر سکتا ہے اور معافی مل سکتی ہے, لیکن مرتد کو جو ہے کوئی معافی نہیں ہے, وہ سیدھا دوزخ میں جائے گا اور ساری زندگی دوزخ میں رہے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن مجید میں. لہٰذا میں اپنے بھائیوں سے یہی بات کہوں گا کہ آپ مرتد نہ ہو, اسلام کے دائرے میں رہیں. اگر آپ شہداء کے بارے میں آپ کچھ نہیں جانتے تو آپ خاموش ہو جائیں, اگر آپ ان کے لیے دعا خیر نہیں کر سکتے تو پھر بھی خاموش ہو جائیں. لیکن کسی ایسی چیز کا مذاق اڑانا جو قرآن مجید کے الفاظ کو آپ نعوذ باللہ آپ اس کی تشریح کر رہے ہو, یہ میں لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جس نے بھی اگر ایسی کوئی تحریر لکھی ہے یا ایسا کوئی مذاق اڑایا ہے تو وہ جو ہے وہ فوراً سے پہلے اللہ سے رجوع کرے اور معافی مانگے. جی راجق صاحب.
1: شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ. شاہ صاحب اگلے پروگرام میں دوبارہ ملیں گے, آج کے لیے اتنا ہی کافی.
0: بہت بہت شکریہ راجق صاحب, اللہ حافظ. جی
2: سامعین کرام, ایف ایم 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.

0: राजा साहब आपको बहुत बहुत सलाम और सब साथियों को, सब नाजरीन और सब सुनने वालों को सलाम अलैकुम।
1: सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहीम, सबको आपके सामीन को बहुत बहुत सलाम अलैकुम रहमतुल्ला। हाँ जी, इलेक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया है। 26 अगस्त से लेकर 13 सितंबर तक यहाँ पर इलेक्शन हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। जो अभी जो जितने भी है, अब देखते हैं जो मतलब पार्लियामेंट में जो सीटें निकली हैं वो लेफ्ट विंग की वो 176 हैं और राइट विंग की जो है वो 173 हैं। तो अब देखते हैं जी आगे, और 28 सितंबर को स्पीकर है जो स्वीडन पार्लियामेंट, उन्होंने इजलास बुलाया, और 29 सितंबर को वहां पार्लियामेंट में वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। जी रहा सर,
2: देखिए राजा साहब, जहाँ तक इलेक्शन की बात करें तो लाजमी सी बात है कि इस पे हर पाकिस्तानी की नजर रही, और खास तौर पे माजरीन के लिए बहुत ही अहम किस्म का जो ये इलेक्शन था वो रहा। अगर हम इलेक्शन के नतज को देखें तो यकीनी तौर पर नतज हैरान कुनी है। स्वीडन में इंतहाई दाएं बाजू की जो जमात है, स्वीडन डेमोक्रेट्स की जो मकबूलियत थी, वो हालिया दिनों में कुछ इस हद तक बढ़ चुकी थी कि एक जमाना था लोग इनको छुप कर वोट दिया करते थे और बताने से डरते थे, लेकिन इस बार ना सिर्फ लोग फखर से वोट देकर सोशल मीडिया पर दिखा रहे थे बल्कि पार्टी के जुलूसों और जलसों में तिल धरने की जगह तक नहीं होती थी। फिर बात आती है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों कि स्वीडन डेमोक्रेट्स या जो आपका इंतहाई दाएं बाजू की जमातें हैं वो हारी किस तरीके से, या उनका जो है वोट बैंक है वो कम कैसे हुआ? तो हुआ यूं कि एडवांस वोटिंग, जिसको हम फोर्थ हीथ रोशनी कहते हैं, कि उन दिनों में एक ऐसा स्कैंडल सामने आया जिसने हंगामा बर्पा कर दिया कि एसडी का एक शेंस्तेमान, यानी कि उनका एक रहनुमा था, उनका रशिया से जो है वो कोई ताल्लुक खुलकर सामने आया, और ये स्कैंडल कुछ बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया और मीडिया पर चलता रहा, जिसकी वजह से स्वीडिश वोटर जो है वो अपने मुल्क की सलामती को मद्देनजर रख के उन्होंने इस मामले को हसास जाना, और स्वीडिश डेमोक्रेट्स का जो वोट बैंक है वो इसको आप समझें कि जबरदस्त एक धचका लगा और नुकसान हुआ। अगर हम इस वक्त जो बात करें सेंटर लेफ्ट की जीत की, तो कोई ये बड़ा कारनामा नहीं है, फकत 3 मैंडेट से इन निशस्तों का फर्क है, यानी कि जो सेंटर लेफ्ट की गवर्नमेंट है उनको, या जो पार्टियां हैं उनको 176 सीटें मिली हैं बमुकाबला 173 जो हालिया हुकूमत थी उनके मुकाबले में। अगर हम हुकूमत साजी की बात करें कि क्या मैकडेलना एंडरसन इसे आसानी से हुकूमत बना लेंगी, तो दरअसल 2018 की तारीख याद करें कि 2018 में स्वीडन में भी इसी ही बारीक सूरत हाल बनी थी कि तकरीबन 134 दिन तक मामला थे, लेकिन अब जैसे कामरान ने बताया कि अब बहुत सारी चीजें फाइनल हो चुकी हैं और हो सकता है कि वजीर आजम की वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाए, लेकिन मामला आसान नहीं है। स्वीडन के रिजल्ट का जो माजरीन हमारे जो खुशफहमी में मुब्तला हैं उनका भी जो है आप समझें कि एक वक्त ऐसा आएगा कि चीजें खुल के सामने आएंगी। अब अगर हम इस नुक्ते की बात करें कि माजरीन की के उनके लिए कितना फायदेमंद हुआ, तो माजरीन के लिए ये खुशी की तो बात जरूर है कि सेंटर लेफ्ट पार्टी जो है वो उन्होंने हुकूमत बनानी है और उनकी मौजें हो जाएंगी, लेकिन मैं अपील करता हूं कि इस खाम ख्याली से बाहर निकलें। हुकूमत बनने के बाद भी इमिग्रेशन के हवाले से कोई खातिर ख्वाह नरमी होती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ मैं सामीन को बताता चलूं कि खुद सोशल डेमोक्रेट्स ने भी अपने दौरे इक्तदार में ऐसे कई कवानीन को मंजूर किया कि जो माजरीन के हक में नहीं थे, और अब ऐसा मुमकिन ही नहीं कि पिछली हुकूमत ने जो सख्त कवानीन बनाए हैं ये नई हुकूमत इनको खत्म कर देगी या इनमें कोई नरमी लाएगी। क्यों नहीं लाएगी, उसकी भी एक बड़ी वजह है, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। स्वीडन में कानून बनाने का एक खास जो है वो आईनी और पार्लियामानी तरीकेकार है, यानी कि सबसे पहले एक बाजाबता कमेटी होती है जो बनने वाले कानून का तफसीली जायजा लेती है। उस कमेटी में अपोजिशन के सियासतदान और कानूनी माहरीन भी शामिल होते हैं। जब कमेटी इस कानून को जायज करार देती है तो उस कानून की मंजूरी के लिए वोटिंग का सिलसिला पार्लियामेंट में होता है। इस वक्त स्वीडन की जो आवाम का सबसे बड़ा है वो ये रहा है कि गैर कानूनी और बगैर काम करने वाले जो माजरीन हैं उनको मुल्क बदर किया जाए, इमिग्रेशन के कवानीन सख्त किए जाएं, और जुर्म करने वालों से शहरियत तक वापस लेने के लिए कानून साजी के मुतालबात आवाम के आप समझेंगे लिस्ट में सर फहरिस्त हैं। नई बनने वाली हुकूमत कभी भी स्वीडिश आवाम के इस मुतालबे के खिलाफ जाने का रिस्क नहीं लेगी। अगर इन्होंने माजरीन के लिए नरमी की तो सोशल डेमोक्रेट्स अपनी गिरती हुई साख को बिल्कुल संभाल नहीं सकेंगे, और इनका वोट या तो छोटी जमातों में बढ़ जाएगा या मुस्तकबिल में दाएं बाजू के लिए हमेशा के लिए राह हमवार हो जाएगी। जी राय साहब,
3: हमेशा के लिए राह हमवार हो जाएगी। फैसल, आप नौजवान हैं, आप मालमों में रहे, बहुत सारे इलेक्शन को आपने देखा, उससे पहले भी इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन के मुतल्लिक आप क्या कहेंगे?
4: अस्सलाम वालेकुम राजा साहब और आपके जितने भी साथ दोस्त हैं, जुबैर भाई हैं, कमरान भाई हैं, नईम भाई, शाह साहब को मेरा बहुत सलाम। तो ये राय साहब, इलेक्शन जो स्वीडन में, जैसे जुबैर भाई ने भी कहा है, कमरान भाई ने भी जो बातें की हैं, इसके बाद कोई ज्यादा तफसील तो मेरा ख्याल है जो है वो नहीं बनती, लेकिन ये बात यही समझ लें कि जो रिजल्ट आज से 3-4 महीने पहले डेनमार्क में आया था, वही रिजल्ट स्वीडन के अंदर आया है। यहाँ मैड्रिड लास लुकस जो है वो मैन प्लेयर बन गया था, उधर सेंटर पार्टी मैन प्लेयर बन गई है। अब जिस तरफ उसको अच्छी डील मिलेगी, हुकूमत उस तरफ बनेगी, लेकिन उधर मेरा ख्याल है जैसे लास लुकस भी इधर सोशल के साथ चला गया था, मैटे की हुकूमत बन गई, इस तरह उधर भी जो है सोशल की हुकूमत, सोशल डेमोक्रेट की जो है हुकूमत बनने का चांस है। जैसे दूसरे नंबर पे जुबैर भाई ने ये एक बात की है कि अगर कोई इमिग्रेशन वाला ये सोच रहा है कि उसके बाद नरमी होगी, तो वो बातें इनकी जो है ना वो बिल्कुल ठीक है कि नरमी के कोई चांस नहीं है, सख्तियां ज्यादा हो सकती हैं, नरमी नहीं हो सकती। और दूसरे नंबर पे सिर्फ इधर डेनमार्क में जब इलेक्शन होते हैं तो सिर्फ पार्लियामेंट के होते हैं, लेकिन जब स्वीडन में होते हैं तो उधर तीनों इलेक्शन एक ही दिन पर होते हैं। तो इस तरह जो बल्दियाती इलेक्शन भी उधर हुए हैं तो उसपे मालमो कमून में हमारे 3-4 पाकिस्तानी थे और उनका भी रिजल्ट आया है। तो मैं तो अपने भाई कामरान को, जिसके मैं पूरी कंपेन भी कर रहा था, वो जो है वो तकरीबन कामयाब उम्मीदवारों में वो 8वें नंबर पे रहा है अपनी सोशल डेमोक्रेट में, अपनी पर्सनल वोट की वजह से 630 लोगों ने इस पर एतमाद का इजहार किया है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसने अपने कुछ हमारे फॉरनों के एरिए थे, जैसे रूसनगोट, जहाँ की ये सोशल डेमोक्रेट का हेड भी रहा है, हेड है बल्कि, उधर से भी इसने क्लीन स्वीप किया है अपनी पर्सनल वोटों में। तो माशाल्लाह, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इनका पहला इलेक्शन था और इन्होंने जो 30-30 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका डट कर मुकाबला किया है। तो अभी देखते हैं मालूमों में जो है वो भी हुकूमत
3: सोशल जाऊंगा। तो ये जो कोई मुश्तरका उम्मीदवार भी थे उनको कितने वोट मिले हैं?
4: मुश्तरका उम्मीदवार तो मुश्तरका तो कोई नहीं, उनको आप कह सकते हैं बस वो ऐलानों की आता की मुश्तरका थे वो, उनका माशाल्लाह वो हमारे अंकल ही हैं, वो तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं उस वक्त भी उनको बोला था वो तीसरा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनके उनके लिए वो कभी इतनी ज्यादा अपनी कंपेयर नहीं करते, तो लेकिन ठीक है वो अपनी मर्जी से मैदान में थे तो उन्होंने अपना मुकाबला, उनको भी 300 वोट मिल गए हैं जो उनके साथ जो लगे हुए थे और उनके लिए भी कंपेन अच्छी की है ने, तो 300 वोट उन्हें। लेकिन कमरान की जो है वो 630 वोट, एक बहुत अच्छी जो हमारे लोगों का एतमाद है, पाकिस्तानियों का, अरबियों का, अखवानियों ने भी, मैं कहता हूँ कि उन्होंने भी बड़ी सपोर्ट की है कमरान भाई को, और पहले इलेक्शन में 630 और अपनी पार्टी में पर्सनल तौर पर जो है वो पर्सनल वोट 8वें नंबर पर कमरान भाई ने, ये हम बिल्कुल आखिरी 90% रिजल्ट पर हम जो है वो चौथे नंबर पे, 5वें नंबर पर थे, लेकिन वो फिर एंड पे कुछ इलाके ऐसे आए जहां से पर्सनल वोट 2-3 कैंडिडेट और के निकल आए, जिस पे कामरान भाई को जो है फिर वो 8वें नंबर पर जो है वो फाइनल फैसला जो है।
3: शाह साहब, आपने ये सब को सुना देखा तो आप क्या इसमें इजाफा करेंगे या क्या सवाल बिल्ड करेंगे?
0: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरे से तो सब यंगस्टर्स हैं, लेकिन एक चीज़ इनको याद रखनी चाहिए कि सियासत बड़ी बेरहम होती है और ये बहुत वक्त मांगती है, ये कुर्बानी मांगती है। तो मैं अपने यंगस्टर्स को यही कहूंगा, जो कुछ मैंने डेनमार्क और स्कैंडिनेविया की सियासत को गहरी नजर से देखा और इसका तजिया किया, तो वो ये है कि जब इनको क्या वजूहात थी, किस वजह से हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो डेंचो गए या यूरोपियन या स्वीडिश या स्कैंडिनेवियन किसी भी कंट्री में अपने वोट हासिल नहीं कर सकते पर्सनली, वो इसकी वजूहात ये है कि हम वो जब इलेक्शन का वक्त आता है तो हम लोग उस वक्त अपनी कैंपेन शुरू करते हैं। हालांकि एक सियासतदान जो है वो सोते जागते हुए सियासतदान होता है, उसको लिखना पढ़ना से ज्यादा जो है सेमिनार करने चाहिए। अगर ये सारे मिलकर कोशिश करें कि कोई ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, हमारे डेनमार्क के अंदर भी पॉलिसीज है, यहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बकायदा आपका कल्चरल या कोई ऐसे प्रोग्राम करे तो वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे बहुत सारे लोग जो है उसको वो मिस यूज करते हैं, तो लिहाजा काफी जगह कम्यूनों के अंदर पाबंदी है। लेकिन अगर हम लोग बेसिकली स्वीडिश और डेनिश और नॉर्वेजियन आइन के मुताबिक चले और लोगों को अवेयरनेस दें, और इसके अंदर सिर्फ ये नहीं कि अपने लोगों को बनाएं बल्कि मुख्तलिफ अकवाम जो रह रही हैं वहां पे, पोलिश है, स्वीडिश है, चेक्स है, सबको आप इनवाइट करें और उनको कहें कि ठीक है आप आए, वहां उनको एक बोतल कोको कोला या एक समोसा पे पकौड़े पे ही आप उनको रखें, लेकिन उनके साथ जब आप घुल मिल जाएंगे तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा सहूलत मैसर होगी और आपके जो है वो चाहने वाले जो है वो ये देखेंगे कि ये एक बाहर से आया हुआ हमारे मुल्क में हमारे माशरे में हमारे आइन की प्रोटेक्शन कर रहा है। सबसे बड़ी जो मेरे तजिए में ये बात आई है कि ये आपके किसी भी कॉल ऑफ ऑल को ये आपको नजरअंदाज करके सिर्फ एक चीज को पकड़ते हैं, वो है कत्लो गारत। ये कहते हैं कि भाई हमने अपने मुल्कों में अपने लोगों पे कत्लो गारत जो करते हैं उनको कड़ी सजाएं देते हैं, उनको हम जो है माशरे में इतना नाम नहीं देते।
3: चलें शाह साहब, ये बात तो आप ही सवाल बिल्ड करते हैं, हमें शायद ने भी ज्वाइन कर लिया, शायद आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, शायद आपको आवाज आ रही है समान, शायद को आवाज नहीं आ रही। शाह साहब अब
5: तो चलते हैं, मैं एक मिनट आता हूँ, मुझे आवाज आ रही है, आप एक मिनट दें मुझे बस।
3: चलें जब आ जाए तो आप बता दें। शाह साहब आप बात कर रहे हैं, अभी हम शायद से बात करते हैं, चूंकि ये इस प्रोग्राम में शामिल साथ साथ रेस जो इलेक्शन स्वीडन में हो रहे थे, ये अपने खामोशी से अपना काम करते रहे, और चूंकि आजकल वो दूसरी चीज़ों पे लगे हुए अपने काम के सिलसिला में गारमन स्टॉकहोल में इस वक्त उनकी आवाज़ मुझे आ रही है, वो कहीं अपने साथियों के साथ गए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे जूं ही उनके पास माइक आता है। तो मैं कामरान की तरफ चलूँगा। कामरान, अब आपको 630 के करीब पर्सनल वोट मिले हैं, तो ये वोट मिलने के बाद अब आप पार्टी पोजिशन क्या होगी आपकी?
1: जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि जैसे माशाल्लाह यहाँ पर हमारे ज़ुबैर साहब मतलब है, उनका बहुत अच्छा एक एक तजिया होता है, मैं उनको फॉलो भी करता हूँ, माशाल्लाह वो बड़े चैनल्स में भी उनकी होती हैं, एनालाइज देते हैं अपने। और फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने बहुत साथ दिया है हमेशा, और हमेशा जो एक भाई फ्रेंड्स जैसे फ्रंट लाइन पे होता है एज ए जर्नल की तरह, वो फैसल मिर्जा साहब है। और शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने मेरे साथ कीप इन टच रहे जी। और शाह साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान हुआ है, मेरा पहली दफा था मतलब इसमें मैंने कैंडिडेट एज ए सोशल डेमोक्रेट की तरफ से, तो जो बहुत से हमारे दोस्त और भाई थे जो मुझे बहुत सारे मसले हुए यहाँ पर, वो ऐसे हुए कि वो जो हमारी यूरोपीय यूनियन के भाई थे उनका फर्स्ट टाइम था वोट के लिए, तो हमने उनकी बहुत ज्यादा एक्सप्लेन की, उन्हें बताया कि वोट की अहमियत क्या है, तो फिर इंशाल्लाह वहां पर उन्होंने मतलब है हमने डिफरेंट जगह पे कॉर्नर मीटिंग की और एक्सप्लेन किया बहुत से लोगों के साथ, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोग निकले और मैंने पहली दफा अपनी लाइफ में जो मालमो में यूनिटी के साथ और दिल के साथ लोगों ने माशाल्लाह आए और वोट डाला, मैं बहुत

इम्यून यानी कि इम्यून सिस्टम तमाम यानी कि तीन के तीन इंतखाबात साथ होते हैं, ऐसा फैसल ने शुरू में भी बताया था। सामिन के लिए समझना बहुत जरूरी है कि स्वीडन में पाकिस्तान की तरह हलकों या शख्सियात की बुनियाद पर इलेक्शन नहीं लड़ा जाता, बल्कि यहाँ सियासी जमात को वोट डाला जाता है। पार्टी अपने काबिल और मंझे हुए सियासतदानों को टॉप 10 या टॉप 20 लिस्ट में रखती है, बाकी ईमानदार सफों में मौजूद उम्मीदवारों को लिस्ट में नीचे के नंबर दिए जाते हैं ताकि वो सब मिलकर पार्टी के लिए वोट जमा कर सकें। अगर तरजीही लिस्ट में पीछे मौजूद किसी उम्मीदवार ने इब्तदाई 10 उम्मीदवारों को बायपास करना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि वो जो पार्टी को वोट पड़ा उसके तकरीबन 5% उसको जाती वोट, जिसको पर्सोन रोस कहते हैं, वो हासिल करे। बड़ी पार्टियों में चूंकि ये 5% का हदफ हजारों वोटों पर मुश्तमिल होता है, जिसे हासिल करना एक इंतहाई मुश्किल काम होता है। और इन्हीं हिस्सों में मालमो के नतीजों को अगर हम देखें तो कुछ यूं है। मालमो में हमारे पास रिक्सदाग यानी कि पार्लियामेंट के लिए जो सोशल डेमोक्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनको तकरीबन 61,724 वोट मिले हैं। अगर इन 61,724 वोटों का हम 5% निकालें तो तकरीबन एक उम्मीदवार जो के टॉप 10 लिस्ट में नहीं है उसको पार्लियामेंट के अंदर आने के लिए 3,087 जाती वोट चाहिए थे। तो हमारे दो पाकिस्तानी उम्मीदवार थे इस लिस्ट में, एक का नाम नजम मलिक है जो कि नंबर 17 पे था पार्लियामेंट की लिस्ट में, उसको तकरीबन 233 वोट मिले हैं जो हतमी नतीजे आए हैं। फिर अगर बात करें मुनीर नियाजी की, वो सबसे लास्ट पे थे, 21 नंबर था, उनको 60 वोट मिले हैं पार्लियामेंट के लिए, जबकि एक शख्स को या एक उम्मीदवार को तकरीबन 3,087 का हदफ हासिल करना था ताकि वो पार्लियामेंट तक पहुंच सके। और यूं ये हम ये कह सकते हैं कि रिक्सदाग के लिए कोई भी उम्मीदवार पार्लियामेंट के लिए नहीं पहुंच सका और उस दौड़ से काफी दूर था। फिर अगर हम सूबाई की नशिस्त की बात करें तो सोशल डेमोक्रेट्स को तकरीबन रीजन इस कोने में 68,684 वोट मिले। यहाँ 5% के हिसाब से उम्मीदवार को तकरीबन 3,434 जाती वोट दरकार थे। और अब तक की जो मेरे पास मालूमात है उस लिस्ट के अंदर कोई पाकिस्तानी खास तौर पर मौजूद नहीं थे इन लिस्टों के अंदर सोशल डेमोक्रेट्स के। फिर बात करते हैं कम्यून की, जिसमें हमारे बहुत सारे पाकिस्तानियों के नाम थे। मालमो में म्यूनसिपलिटी में सोशल डेमोक्रेट्स को तकरीबन 64,700 वोट पड़े। यानी इब्तदाई सफों से हटकर लिस्ट में निचले नंबरों पर मौजूद उम्मीदवारों को काउंसलर बनने के लिए तकरीबन 3,235 जाती वोट की जरूरत थी। हमारे चारों पाकिस्तानी उम्मीदवारों की लिस्ट कुछ यूं है। नजम मलिक नंबर 22 पर थे, उनको 272 वोट मिले। मुनीर नियाजी जो है वो 48 नंबर पे थे, उनको 70 वोट मिले। फिर अमजद खान साहब जो कि 56 नंबर पे थे, उनको 338 वोट मिले। और कामरान अनवर जो कि नंबर 62 पर थे, उनको 630 वोट मिले। तो कुल अगर आप इसका जो हासिल कलाम करें वो कुछ यूं है कि कुल मिलाकर कोई भी पाकिस्तानी ना काउंसलर बन सका, ना सूबाई नशिस्त हासिल कर सका और ना ही पार्लियामेंट में जगह बना पाया। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है राजे साहब, हमारी दो बड़े अलमी हैं। सबसे बड़ी बात की जाए कि इसका निचोड़ यूं है कि हमारे यहाँ सिर्फ कम्युनिटी में एक दूसरे को हराने का मुकाबला उरूज पर रहा। इलेक्शन आते ही मुख्तलिफ ग्रुप्स एक्टिवेट हो जाते हैं और सोशल मीडिया में ग्रुपों में गेमा गेमी मचाते हैं, बस इसके अलावा कोई खास काम नहीं होता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तान में हम माजरत के साथ मुर्गे लड़ाते हैं कि किसका कुक्कड़ कितना तगड़ा है, और फिर साढ़े कुक्कड़ दी जीत है के नारे बजाते हैं, और हालांकि दरअसल हमने कुछ भी हासिल नहीं किया होता। अगर हम यहाँ पर दो अलमियों की बात करें तो सबसे बड़ा हमारा सियासी जमातों का अलमिया है। स्वीडन में सियासी जमातों का जो सबसे बड़ा अलमिया वो ये है कि किसी की भी तारकिन वतन या किसी भी नुमाइंदे की ना तालीमी काबिलियत देखी जाती है, ना उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड या बैकग्राउंड चेक किया जाता है, और उसे लिस्ट के अंदर शामिल कर लिया जाता है बतौर उम्मीदवार। फिर दूसरा हमारी कम्युनिटी का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि हमारे उम्मीदवार हमेशा बड़ी सियासी जमातों के पीछे भागते हैं, यानी कि सोशल डेमोक्रेट्स या मॉडरेट्स के पीछे भागते हैं। वहां 5% का कोटा इतना बड़ा हो जाता है कि आपको जाती वोट 3,000 से 4,000 वोट तक हासिल करना होता है, जो कि कोई भी उम्मीदवार उसको पूरा नहीं कर पाता। अगर हम बात करें कि हमसे 100 गुना बेहतर सोमालियन कम्युनिटी है, उनके 5 नुमाइंदे इस बार स्वीडन की पार्लियामेंट तक पहुंच गए। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इन्होंने अकल का इस्तेमाल किया, छोटी सियासी पार्टियों का इंतखाब किया जहां 5% का जाती वोट का जो कोटा था वो कम था। यानी कि कुछ शहरों के अंदर उनको 500 वोट दरकार थे, कहीं 600,
पूरा करके पार्लियामेंट तक वो पहुंच गए और हम नूरा कुश्ती समझ लें कि उसमें ही लगे रहते हैं और सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे स्वीडिश सियासतदान लिखकर पिंड दे लोगों को पागल बना दे रहने हैं। तो असल बात यह है कि हमारे जो सियासतदान है, अगर मैं कामरान की बात कर लूँ, 630 उसको काफी अच्छा वोट पड़ा और ये जाति वोटों में पाकिस्तानी कम्युनिटी में तो काफी ज्यादा था, लेकिन अगर ये किसी छोटी पार्टी के अंदर होते, वेंस्टर पार्टी में होते, अगर ये मिलियो पार्टी में होते, अगर ये सेंटर पार्टी में होते

0: مشین مارنی.
1: میلا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے براہ راست پیش کیا جا رہا ہے. دن کے 2 بجے ہیں تو ہم نے ٹائم کا خیال کرنا ہوتا ہے. اس وقت جو ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں وہ ذیشان علی ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں, حکومتی جماعت کے نمائندے ہیں اور بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنی پارٹی میں. ان کا بڑا اثر و رسوخ ہے اور یہ اسکول ٹیچر ہیں. ابھی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ فٹ بال کا جو ہے وہ میچ کھیلنے گئے تھے یا کہ میچ کھلانے گئے تھے. چونکہ استاد ہیں ظاہر ہے ان کے شاگرد یا بچے جو اپنے ہوتے ہیں, بچے بھی شاگرد ہی ہوتے ہیں, تو یہ مصروف رہتے ہیں. چھٹی کا دن ہے, بڑی مشکل سے ٹائم ہوتا ہے. تو ذیشان ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں.
0: جی بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم راجہ صاحب, آپ کو سب سننے والوں کو, اور بہت شکریہ جی. بڑا اچھا لگتا ہے آپ کا انٹروڈکشن بھی سن کے.
1: نہیں جی, بڑا ہمیں اچھا لگتا ہے کہ کیونکہ استاد کو جو ہے نا, استاد چاہے چھوٹی عمر کا ہو چاہے بڑی عمر کا ہو, استاد استاد ہوتا ہے.
0: ہاں جی بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ایک بڑا پیارا جی کیا کہتے ہیں لقب بھی ہے, ڈیوٹی بھی بڑی پیاری سی ہے کہ اسی میں اپنا گھر بار بھی چل جاتا ہے, اسی میں خدمت خلق بھی ہو جاتی ہے, اس میں مطلب سب کچھ بڑا اچھا سا آ جاتا ہے, اللہ کا بہت شکر ہے.
1: ذیشان الیکشن ہو گئے, کمیون کی کمیٹیاں بھی بن گئی, تقسیم ہو گئے, ابھی کچھ بجٹ جو ہے وہ پاس نہیں ہوئے لیکن بجٹ پر جو ہے وہ کام سارا سب کا مکمل ہو گیا. افیشل جو اناؤنسمنٹ ہے وہ ابھی سامنے نہیں آئی, تو آپ کیا کہیں گے؟
0: جی کام تو زوروں سے چل رہا ہے. وہی دیکھیں نا جی, کمونوں کے بھی بجٹ چل رہے تھے, ہمارے ادھر بھی چل رہے ہیں, کچھ جگہ دی اینڈ ہو گیا ہمارا. میرے خیال سے بیلر کا پھنسا ہوا ہے. ہم لوگ تو اس طرح سے پیشے تو ہینڈلنگ میں نہیں ہے, مگر کچھ پارٹیز کے ساتھ جس طرح وہ کہتے ہیں نا باہر بیٹھ کے بھی تعاون ہوتا ہے, تو ہمارا ذرا پھنسا ہوا ہے. ہمارا ادھر سے میں وہی کہتے ہیں نا کہ الیکشن کے ٹائم میں سب لوگ کرتے ہیں اسکول بچے, مگر ہمارا ادھر کمیون کا اسپارک ہے, چلو آ گیا تھا, اس میں سجیشن کی گئی جی بچوں پہ اور اسکولوں پہ بھی کیسے اسپارک کرنا ہے. پھر یہ جو پچھلے 2-3 ہفتے پہلے فیس ہے ہونا, پھر اس کا رزلٹ آ گیا, پھر ادھر رک گئے اسپارک کرنے سے. یہ بڑا چلتا رہتا ہے پالیٹکس میں, بڑا مزے کا کام ہے. جب الیکشن ہوتے ہیں تب جی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے, اور جب پھر چل پڑتے ہیں تو پھر ادھر بچانا ہے ادھر بچانا ہے. جو بچانے والی سوچ ہے نا ڈنمارک کی, یہ بڑی ہے. اس کا اسپارک اسکول
1: بچانے والی سوچ ہے تو اخراجات کرتے وقت کیوں نہیں سوچتے؟
0: کیونکہ اخراجات کرتے وقت یہی, اگر میں بھی بولوں کہ جتنا مجھے یہ سال 2 جو ان سے پچھلے لگے یا اندر ہو کے دیکھا ہے, یہی سمجھ نہیں آتی کہ اخراجات اچھے بھلے کر کے جاتے کدھر ہیں. اور وہ اصل میں بیوروکریسی کافی زیادہ ہو گئی ہے اس ملک میں. اس طرح آپ دیکھتے ہیں کسی بھی شعبے میں چلے جائیں, بیوروکریسی بڑی ہے, میٹنگز بہت ہیں. ہم اسکول ٹیچرس کی بھی ایسے ہی ہے, کافی دفعہ میٹنگز ہوتی رہتی ہیں مگر وہ جس طرح کام آگے بڑھتا نہیں ہے, اسٹوڈنٹ مطلب آگے بڑھ نہیں رہے اس طرح, مگر میٹنگز کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے, ہم ہینگ نے پاور فل نیٹ ورکس میں. تو اس چیز کو کم کرنا ہے, اور شکر ہے کہ اب کچھ پارٹیوں نے یہ بھی بولنا شروع کر دیا کہ یار ان چیز پہ فوکس کم ہونا چاہیے. جو ٹیچرز ہیں بچوں کے ساتھ زیادہ ٹائم گزارے, جو ڈاکٹرز نرسز ہیں وہ پیشنٹس کے پاس زیادہ ٹائم ہونا چاہیے, انسٹیڈ آف بیٹھ کے ہم وہ تکمچیا کر رہے ہیں ہر چیز کو لکھنا جی, کیونکہ دوسروں کے لیے لکھنا کرنا. تو ادھر سے بچانا اصل میں ریسورسز کو دوسری طرح یوز کرنا سیکھنا پڑے گا, کیونکہ بچتے بچتے تو آپ کو پتا ہے بچانے لگو تو بچتا کچھ نہیں کسی کو بھی, پرائیویٹ ہو یا حکومت یا ملک کا خزانہ.
1: تو لگتا ہے اسی طرح ہے کہ جب جس طرح یہ گیمز کھیلی جاتی ہیں کمپیوٹر پر, دنیا بھی ایک گیم بن گئی ہے, تبدیلی کی طرف جو ہے سیاست کم ہے گیم زیادہ ہے.
0: جی بالکل, ایک گیم زیادہ ہو گیا. دوسرا تو آپ دیکھیں گیم چھوڑے, ایک تو سیاست ٹک ٹاک ہو کے رہ گئی ہے نا, اور بس ویڈیوز ہو کے رہ گئی. آج کل اگر آپ دیکھیں گیم تو گیم, مطلب یہ جو الیکشن جو ہوا اس میں سارے ڈیسک پالیٹکس کی طرف دیکھتے ہیں. انہوں نے جی اپنے پولیٹکس کال کی ہوا, جن کو بولتے ہیں وہ کم کر کے انہوں نے یہ جو کمیونیکیشن کال کی ہوئے یہ زیادہ رکھ لی ہے کہ ویڈیوز کیسے بنانی ہے, لوگوں کا اٹریکٹ کیسے کرنا, اور انہیں پالیٹکس ہوتی ہے نہیں, بس ادھر کی بات ادھر, کوئی پولیٹکس کے انوالو ہے نہیں. اور جب ان کو کچھ نہیں ملتا تو ظاہر ہے مسلمان اور ہم کالے بالوں والے ویسے ہی ملے ہوئے ہیں, ان سے سارے بولتے رہتے ہیں. जो मसले मसाइल हैं मुआशरे के, उस पर कोई बोलता नहीं। उस पर जब बोलना शुरू करते हैं जी, किसी के पास कोई सलूशन नहीं है। अभी स्कूल का इतना बड़ा इशू दोबारा हो गया, सलूशन मोबाइल टेलीफोन ले लो जी। अब पहले कौन सा बच्चे मोबाइल टेलीफोनों पर बैठे रहते हैं स्कूलों में, देखे ना। आज आके कसूर किसको दे दिया, जहां मतलब कोई कुछ करना ना पड़े। तो वो भी काफी टीचर्स भी इस चीज से काफी कहते हैं फ्रस्ट्रेटेड थे कि मतलब यार प्रॉब्लम रिजल्ट आ भी रहे हैं, मगर इन लोगों ने ना फिर भी सोल्यूशन कोई अपनी मतलब कहीं देखना।
1: स्कूलों में बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आप देखते रहते हैं चूंकि खुद आपके बच्चे अपने हैं, लेकिन सियासतदानों में अगर देखा जाए तो पार्टियां, जो बड़ी पार्टियां या छोटी पार्टियां हैं, कद काठ वाला लीडर जो है वो जिस तरह पहले वक्तों में होता था, हर पार्टी का बड़ा लीडर होता था और एक के बाद दूसरा बड़ा लीडर होता था, नंबर टू तो उससे भी
0: जी
1: बड़ा
0: जी
1: लगता था, लेकिन अब किसी पार्टी में इस तरह कद काठ के कितने लीडर रह चुके हैं, जो रह गए हैं वो भी अब एक्सपायर हैं।
0: जी और ये हमारी कल भी यही गुफ्तगू चल रही थी कि अगर आप देखें पिछले 2-3 इलेक्शन देख रहे हैं, वो लोग कहते हैं मेटे कैसे बन जाती है, कैसे बन जाती है जी। ओपोनेंट कोई है नहीं सही तरह, अच्छा कोई आया पिछले 2-3 इलेक्शन में। पहले आप देखें ना पार्टियों के अंदर मतलब एक एक दो दो तीन तीन जी खड़े होते थे जी, कि अगर ये गया तो मैं तैयार हूं। अभी फॉरमैन एक जाता है, अगला कोई आगे आता ही नहीं है, बस लोग बैठे हुए हैं कि चल हम बैठे रहे। और वही थोड़ा बहुत ये, अब मैं खुद इसमें इंटरव्यू हो गया, मतलब ये भी कहना कि बंदे जो उनसे हैं कौन से अंदर आते हैं कौन से नहीं, मगर आप वो पौन इस पची देख रहे हैं, उनके साथ जो 2-3 बंदे हैं उनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, मतलब बंदा सोचता है कभी कभी के काफी वेले बंदे आ गए हैं इसमें भी। पता नहीं कहना ठीक होगा जब बंदा खुद भी बैठा हुआ, मुझे आता ही नहीं समझ कि खुद की तनकीद खुद ही, क्योंकि मैं अपने आप को तो उस तरह से वेला समझता नहीं। जरूरी ड्यूटी भी है, बड़ी जिम्मेदारी का काम है, मगर डेनिश पॉलिटिक्स में आजकल बस लोग कौन सा वीडियो टिकटॉक्स बना बना आते ना अंदर आ गए, काम करना सबको आता नहीं।
1: मतलब है हर सिस्टम को जो है वो एक गुलाम बना लिया गया है।
0: ऐसे ही है,
1: तो जीशान,
0: ऐसे
1: चूंकि
0: ही।
1: आप सोचते रहते हैं, आप खुद भी सोशल मीडिया को देखते हैं और हमारे लोग भी देखते रहते हैं, लेकिन हम यहाँ की सियासत जब 2-3 माह रह जाते हैं तो फिर हम सियासतदानों की बातें करते हैं, कैंडिडेट्स की बातें करते हैं, और उसके बाद बाकी सारा साल 3-4 साल जो है वो पाकिस्तानी सियासत करते रहते हैं। इसकी क्या वजह है?
0: इसकी वजह इंटरेस्ट होगी राजा साहब। अब मैं अपना इसमें कसूर मांगता हूँ। मुझे मैं पिछले 1-2 दिन पहले दोस्त भी लोग कह रहे चलो यार तू नजर नहीं आ रहा आजकल ना ऑनलाइन मीडिया, तो उधर रहना बड़ा जरूरी है, एक जरूरत भी बन गया कि अगर आपने पॉलिटिक्स में रहना तो नजर भी आते रहना। और उनकी बात बिल्कुल ठीक, वो भी चढ़ रहे कहते यार तू खुद पिछले समय नाम हो गया, 2 दिन लास्ट साथ गुजारे, इधर मीटिंग पे होता है उधर रखा कर, अपना बताया करके क्या कर रहा है ना, कि यार बस आदत नहीं है इस चीज की। मगर दूसरी तरफ ये भी देखे, अब मेरे बाकी अब कासिम भाई अंदर गया हुआ है जी, वो आजकल बैठे हुए हैं, वो भी लिख रहे हैं। इरफान भाई, इरफान गिलानी साहब, वो भी बैठे हुए हैं, वो भी लिखते रहते हैं। नदीम फरूख साहब बैठे हुए हैं, वो बड़े बड़े बैठे हुए हैं। कभी आप जाके देखे ना कि हमारे कितने बंदे लाइक या कमेंट या उनको कुछ करें, कुछ भी नहीं होता। तो जब वो जो काम कर रहे हैं तब दिखा रहे हैं, तब उसमें कमेंट शमेंट भी कोई नहीं उस तरह से, मगर जब कोई लंगर पार्टी का सिस्टम होता है उधर माशाल्लाह जी जबरदस्त और कामयाबी के बड़े ज्यादा मैसेज आ रहे होते हैं, तो जो
1: लंगर पार्टी
0: पॉलिटिकल
1: तो
0: गेम
1: हमारा
0: वाला
1: कल्चर है ना जी।
0: तो वही है ना जी। अब वो माशाल्लाह ये जो हमारे सारे काबिल दोस्त आगे पीछे बैठे हैं, अपना दिखा रहे हैं कर रहे हैं, मगर कितने लोग वो पोस्ट पढ़ते हैं शेयर करते हैं वो भी देखे ना। मगर कहीं कोई अगर किसी ने कोई किसी के दाल में पार्टी रख दी, वो ऐसे शेयर हो रही होती है कि जैसे पता नहीं गया। तो वो हम भी वही बन गए जो पॉलिटिकल, जहां पॉलिटिकल इन्वॉल्व है, जहां मतलब काम हो रहा है उसको हम भी सही तरह नहीं देखते। फिर जब इलेक्शन आते हैं फिर आपको पता है फिर कोई इधर पार्टी रख रहा होता है, फिर उधर वाह वाह हो रही होती है, फिर कोई और रख रहा होता है जी के वाह वाह करवाने के लिए।
1: पिछले
0: तो
1: दिनों कोई
0: बस
1: बात कर रहा था
0: ये
1: मुझसे तो वो कह रहा था राजा साहब 10 दिन मैंने रोटी फ्री खाई है मस्जिद में।
0: बस
1: तो इसका मतलब है
0: ऐसे ही है।
1: सियासत तो फिर मस्जिद कर रही है।
0: बस ऐसे वही मैं कह रहा हूँ कि बातें होती नहीं। मेरा तो काफी अब अपने यूथ से जब मैं मस्जिदों में बात करता हूँ, तो आप तो रखा करें महीने में एक दफा कम से कम कंटेम्प्रेरी एक इशू लेके कि अब हो क्या रहा है, मतलब इस महीने मीडिया में क्या हुआ। मुसलमानों के बारे में कुछ ना कुछ तो मीडिया में आता रहता है, और ये क्या मस्जिदों में बुला के अपने यंगस्टर्स को बताएं कि ये खबरें चल रही हैं, इनको हमने कैसे डील करें, कैसे ना करें, क्या हिकमत है, ये भी समझाना बड़ा जरूरी है। बाकी चीजें तो हम समझाते रहते हैं, हकूक समझाते रहेंगे, वुजू तहारत नमाज जो सब जरूरी काम है वो तो समझाते रहेंगे, मगर मुआशरे में चलना भी कैसे है वो भी हमारा और मसाजिद का फर्ज है कि इस तरह के प्रोग्राम भी रखा करें। कुछ लोग कर रहे हैं, मगर ये अच्छे से होना चाहिए वैसे हमारे यंगस्टर्स के लिए, और ये नहीं कि
1: लेकिन
0: मतलब
1: शुरू
0: बाहर से
1: किया
0: ही
1: है,
0: आऊंगा
1: बहुत लेट शुरू किया है।
0: बस, वो तो फिर चलो शुरू कर लिए, शुक्र है। ये है कि अगली दफा तक तैयारी हो जाएगी। मुझे भी अब अल्लाह का शुक्र है कोई यूथ के ऑर्गेनाइजेशन है, पूछ लिया आप आएंगे जी, वो बात मैं जरूर आऊंगा। मतलब अगलों को तो ये लगता है कि अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा करने आ रहा है, मगर मेरा तो बेसिकली ये है कि बस निकल आए लोग, फिर वोट अगर दाएं दें या बाएं दें, मगर वोट तो देना पहले, तो फिर इंशाल्लाह हम कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे ज्यादा बंदे। क्योंकि तो मेरी पिछले दिनों वही किसी दोस्त से बात हो रही थी, मैंने कहा आजकल हम लोग खुश हो जाते हैं जी के ये जब हमारी दो चार बड़ी कमूने स्पेशली पॉन्पी एल्बसलोन छॉस्टो जहाँ हमारी बैकग्राउंड के काफी लोग रहते हैं, मैं बोला मैं कि यार हमें एक बंदे को छह छह सात सात सौ वोट लेके अंदर आने का क्या फायदा होगा, अगर ज्यादा बंदे आए किसी तरह, अगर हम कुछ कर सके ज्यादा आ जाए। मैं कहा सिर्फ अंदर आ रहे नहीं, अब इन ऐसी कमूनों में हमारी भी एक परमिशन फर्स्ट निकलनी चाहिए, कुछ सालों में ये हमारी प्लानिंग होनी चाहिए,
1: नहीं,
0: सिर्फ ये नहीं
1: आपने
0: कि
1: शुरू में
0: अंदर
1: बात
0: अंदर
1: की
0: आ
1: है
0: जाए।
1: ना ब्यूरोक्रेट्स की, तो हमारे कैंडिडेट्स भी जाने से पहले ब्यूरोक्रेट बनना चाहते हैं।
0: बस फिर काम मुश्किल भी काफी है भाई साहब,
1: मुश्किल
0: समझ
1: काफी
0: नहीं
1: है
0: आती किस काफी
1: जीशान।
0: मुश्किल
1: मेरे
0: है
1: एक
0: क्योंकि
1: दोस्त हैं सियासतदान, तो मैंने उनको दावत दी, मैंने कहा यार आपसे बात करनी है, तो मुझे कहने लगे मैं जी आज जो है ना वो गजल नाइट पे मसरूफ हूँ।
0: अच्छा वो उतने
1: करनी
0: गजल नाइट
1: सियासत
0: होगी
1: है तो
0: शौक,
1: गजल लाइट पे मसरूफ हूं।
0: कल्चरल भी तो थोड़ा सा करना चाहिए ना एनहेंस। अगले हफ्ते इंशाल्लाह टाइम दे देंगे चौथे, फिर उम्मीद तो यही है मगर
1: देखिए जीशान,
0: वाकई
1: आप बच्चों को जाते हैं सुबह स्कूल जाते हैं, आपको टाइम पर जाना पड़ता है, टाइम पर छुट्टी करनी पड़ती है, जो मीटिंग्स होती हैं वो आपको टाइम पर करनी पड़ती है, सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम पर करनी पड़ती हैं, सियासत टाइम पर नहीं करनी।
0: बस वो क्या करें, हम शऊर और शौक की भी बात होती है जी, लगता भी है कि टाइम वेस्ट है सबको, जिससे मैं पूछता हूँ कहते यार क्यों टाइम जाया कर रहा है, तो कभी कभी वाकई बंदा सोचता है यार मैं किधर टाइम जाया कर रहा हूँ, मगर वही बात आ जाती है कि इन दी एंड इधर ही फैसले होते हैं, इधर से ही निकलता है सब कुछ, रहना पड़ेगा इवन दो हमें लगता है कि यार टाइम जाया हो रहा है। तो सियासत यही बात है, वो सारे ही कहते हैं ना कि एक इलेक्शन के दूसरे इलेक्शन के बीच में होता है आपका कैंपेन सारा, और ये मैं भी यही सीख रहा हूँ, तो ये हमें करना पड़ेगा सीखना पड़ेगा। अब अल्लाह का शुक्र है कि जहां भी जाता हूँ इन गर्मियों माशाल्लाह मेले भी हुए, अब ये है कि लोग देखते हैं पहचानना शुरू किया है, गुफ्तगू करते हैं पॉलिटिक्स के बारे में, इस तरह किसी तरह बस ऑर्गेनाइज कर सके सही तरह, वही मैं भी सोच रहा हूँ। क्योंकि आपको सच्ची बात बताऊं, लोग आते हैं स्पेशली यंगस्टर आते हैं बात करते हैं खुशी बड़ी होती है, मगर फिर जब याद आता है ना हम किसी से बात करते हैं वो, तो यार मैं इस दफा वोट नहीं डाल सका क्योंकि इस तरह के भी बड़े लोग मिले, तो यार वो मैं भूल गया, या मेरे मुझे टाइम नहीं मिला, फिर बंदा कभी कभी सब ये भी सोचते हैं कि हम ये किसके लिए कर रहे हैं किसके लिए खड़े हो रहे
1: यार टाइम नहीं मिली, अगर आप
0: हैं
1: देखें
0: बस
1: किसी
0: वैसे।
1: प्रोग्राम में जाए ना, किसी मस्जिद में प्रोग्राम होता है ईद मिलाद नबी के हवाले से, या जो है अपना जो है और किसी किस्म के प्रोग्राम होते हैं, तो खाना खाते वक्त तकरीबन घंटा लग जाता है, तो वो खाना नहीं
0: जी
1: छोड़ते, वहाँ घंटा टाइम होता है, वैसे उनका बड़ा बिजी टाइम है।
0: जी ये भाई वो इस
1: क्या
0: चीज
1: ये
0: की
1: भी
0: मुझे
1: इंसानी
0: असल
1: हकूक की बात है?
0: में इंसान की नीड की बात होगी, इंसान की खाना तो फिर नीड में आ जाता ना, अगलों को वोट देना नीड नहीं नजर आता तो क्या करे
1: आपके टाइम से फ़ायदा उठाते हैं, आप हुकूमती जमात के उस भी सुरसा के मेंबर है अपनी जमात के, बहुत कुछ आपको देखने का मौका मिलता है, लीडरान से मिलने का मौका मिलता है। ये कैटेगरी फाइव की हम बात करते रहते हैं, हमने आस्ता आस्ता अभी कंपेन शुरू किया है कि इसके सिग्नेचर लिए जाए और सब पार्टियों को दिया जाए कि लोग अपनी पार्टी के लीडरान को दें ये सिग्नेचर, उसके बाद हुकूमत वक्त को जो पाकिस्तान की हुकूमत है उनके जो नुमाइंदे हैं उनको भी ये कापियाँ दी जाए, आप क्या कहेंगे?
0: हाँ जी, ये आइडिया बड़ा पसंद आया मुझे कि मतलब एक फोर्स हो के सामने वाकई इस तरह की जाए। और जिस तरह आपने जब ये मुझे बताया था कि इस तरह कर रहे हैं, कि बड़ा जबरदस्त है हमारी तो एक दो ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी अच्छी है, वो कश्मीर फंड की जितने डॉक्टर्स हैं सारे इकट्ठे, कितने कितने पढ़े पढ़े लिखे बंदे, कितने कितने हाई पोस्ट पे बंदे बैठे हुए हैं, कि ऐसे ऐसे बंदे जरा सामने आए इससे, जिस तरह वो पिटिशन को सपोर्ट करें, तो फिर ये है कि इसे हम आगे लेके चलेंगे। जा रहे यार फैमिली वीजा तो किसी तरह खोलना है,
1: इसमें तो किसी का कोई जाती मुफाद नहीं है।
0: नहीं, सबके लिए खुल जाएंगे, जिसका कोई आ गया करीबी प्यारा मतलब तो बिस्मिल्लाह। तो ये है कि अब माशाल्लाह इतनी पार्टीज में इतने इतने लोग वाकई सारे बैठे हैं कि उनके उनको इस ऑफ होता कि इस तरह तक तो हाथ पड़ता ही है। बताइए यार इतने लोग हैं, ये दरख्वास्त लेके आए हैं, मतलब इसको भी देखा जाए थोड़ा सा बढ़ेगा। ये है कि मुश्किल काम काफी है इस वक्त पॉलिटिक पे, वो हमारी जो लास्ट से भी होती रहती है, वो यही कहता है कि वो मतलब सोशल डेमोक्रेट ने इसको बहुत टाइट रखा हुआ काम। 300 साल देख रहे हैं आप, उसमें उनके सबसे ज्यादा मेंबर है, उनके बाद फिर वो सारी पार्टियां आ जाती है जो वैसे ही हमारे खिलाफ है। 300 साल में भी देखो सारे वो बंदे बैठे हुए हैं जिनको जी जिन्होंने हमारी साइड बिल्कुल ले ली है, चार बंदे या पांच अपने बैठे हो गए। तो ये है कि कोशिश करनी चाहिए, ये है कि इकट्ठे होके इस तरह का, ये आइडिया बड़ा अच्छा है। अब इसको जरा अंजाम किसने देना है, स्टार्ट किस तरह करना है, फिर आगे से आ जाएगा, इसका क्रेडिट किसने लेना है, ऐसे में हम उधर आगे करते हैं ना, क्रेडिट किसको चाहिए?
1: देखिए ना, रेडिकल वेंस्ट्रा वोट लेकर फॉरनों के अपनी सीटें तो पक्की कर ली, लेकिन जब मौका आता है फॉरनों के लिए वो कानून साजी में हिस्सा नहीं लेते।
0: नहीं, वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, बड़ा मुश्किल काम है। और इस वक्त इस बार तो उनको भी मैं इतना कसूर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सोशल डेमोक्रेट की जो हमारी बैठी हुई है स्टेट मिनिस्टर, वो बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहती इस मामले में। वो तो हमें काफी सोर्सों से पता चला है, उस मामले में तो आप छोड़ ही देना। अब आप देखें
1: इतनी पावरफुल है
0: जी जी, अभी बोला ना कोई और है ही उसके मुकाबले। अब आप देख ले, वो बाकी सारे बंदे उन्होंने साइड पे किए इस दफा,

0: फॉलो कर रहा है, उन्होंने अपना साफ सुथरा बंदा था वो उधर डाल दिया है और उससे बस वही काम ले रहे हैं जो उनको चाहिए। तो इतनी पावरफुल टॉप है जी। यस
1: आप अक्सर देखते रहते
0: अनफॉर्चुनेटली
1: होंगे, हमारे इरफान गिलानी साहब हैं, हम के हमारे अकलौते मेंबर हैं, काफ़ी
0: जी
1: एक्टिव
0: जी
1: रोल अदा कर रहे हैं, तो आप किस तरह देखते हैं उनको?
0: वो तो जी मैं कहता हूँ आप ही ने माशाल्लाह वो दोनों दोनों सीटें भी संभाली हुई हैं, मतलब मीटिंग्स ही मीटिंग्स हैं। फिर इधर का बजट अब उन्होंने पहला वो हिस्टोरिकल बजट में भी अब साथ है, जो रीजन वेस्ट टर्मा का पहला पहला बजट था, नई रीजन जो बनी है माशाल्लाह। और मैं उनकी उनकी पोस्ट तो देखता रहता हूँ, फॉलो करता रहता हूँ, माशाल्लाह काफी अच्छा इनलाइटन कर रहे हैं सबको कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। मगर वही कह रहा हूँ ना, उनकी कितनी लंबी पोस्ट कौन कौन पढ़ता है ये जरा सोचने वाली बात होगी, क्योंकि वो दिखाव बता तो रहे हैं हमें मगर इंटरेक्शन बड़ी कम होती है उनकी पोस्ट
1: क्या आप खाली फोटो में देख रहे हैं या के प्रैक्टिकली देख रहे हैं?
0: जी। फोटो में नजर आएगा तो प्रैक्टिकली भी होगा, तो जाहिर जाते हैं करते हैं, लग तो काफी बिजी रहे हैं मतलब माशाल्लाह। और वो काम भी जिस तरह आप देखें कि मतलब डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पार्टी टॉप में भी उनका काफी अच्छा है, उनके साथ करते रहते हैं, तो वो अच्छे है, अच्छा पोस्ट है माशाल्लाह से, अच्छा है। खिलाड़ी खेल में जरा ऐसे भी बंदा अपना और आया कि जो जिस तरह काम भी कर रहे हैं दिखा भी रहे।
1: तो अगले इलेक्शन में डेफिनेट वो उम्मीदवार होंगे, आप भी उम्मीदवार हैं, कासम भी उम्मीदवार होंगे, राशिद भी उम्मीदवार होंगे, अगली दफ़ा सिकंदर भी उम्मीदवार होंगे, तो अगली दफ़ा टफ मुकाबला नज़र नहीं आ रहा?
0: होना चाहिए टफ मुकाबला, कि कम से कम मुकाबला होगा कभी, तो फिर वही होगा ना कि अच्छा कैंडिडेट उठ के आएगा। अब जैसा इरफान भाई भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने कैंडिडेट बनना है, करना काम दिखाया होगा तो वोट भी मिलेंगे। तो ये जिस दिन हो गया हम सबके साथ के जी काम करके अपना आप दिखा के कॉम्पिटिशन अच्छा फेयर करके एक दूसरे के साथ आया गया, यही तो हम भी चाहते हैं कि लोगों को भी लगे कि यार अच्छे अच्छे बंदे हैं, इनको इनके काम पे देखो, मतलब देखो इन्होंने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो इस दफा उनके पास तो इरफान भाई के पास तो बड़ा अच्छा चांस है, क्योंकि वो तो घुमनेल में भी है, रीजन में भी है, मुझ जैसे के लिए मुश्किल होगा। मैं असल में जहां बैठा हूँ वो काम नजर नहीं आता उस तरह से, वो सारा कॉन्फिडेंशियल काम होता है, वो मीटिंग से जब हम निकले भी ऐसे हो किसी तो बता नहीं सकते जी क्या बातें हुई है।
1: हाँ, ये बात
0: बस ये
1: आपकी
0: बता
1: बिल्कुल सही
0: सकते
1: है।
0: हैं कि बात हुई क्या, मगर ये नहीं बता सकते क्या बात हुई। तो इस तरह के भी काम होते हैं, तो ये है कि डेफिनेटली जब मौका मिले जिस तरह वो कर रहे हैं, अब कासिम भाई हमारे हेल्थनेस में सुप्रिया बन के गए हैं जबरदस्त, मुझे अगर मौका मिला अब तो कम अज कम देख ले, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में ये हो गया कि हमारी जो इधर अमा इनकी सीट थी वो मोनिका गोपीन की थी, मोनिका गोपीन मिनिस्टर बन गई हैं, तो वो ऑल ऑल ले लिया उन्होंने जो कि वो ले सकती थी। तो जो दो नंबर पे क्वेश्चन थे हमारे मुड़गार ने कि वो अब फर्स्ट सुप्लेंट के तौर पे अंदर है, अल्लाह उनको सेहत दे और मतलब अच्छा रखे। मगर अगर अब कुछ हो जाता है उनको, अगर छुट्टियों पे जाना पड़ता है कुछ हो जाए तो अगला फोन आ जाना है निशानली को, तो ये भी है कि अगर मौका मिल गया तो काम करके देखेंगे दिखाएंगे सीखेंगे हम भी उस वाले से अगर आ गए तो, वरना कोशिश अपनी है बाहर से बैठ के जितना कर सकते हैं। फिर जो जज्बा जुनून है वही लोग देखें, जिस दिन काम
1: चलें, जो
0: करने का मौका
1: काम
0: मिलेगा
1: दौड़ते
0: काम
1: हैं
0: करके
1: दौड़ते
0: दिखाएंगे।
1: दौड़ते आखिर मंजिल पर पहुंच जाते हैं।
0: जी जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं रहता, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र कि उनका, मैं आप सबको पता है सारे बोलते थे लेट आया, लेट आके अल्लाह की जात ने जहां तक पहुंचा दी, जो उनसे मौके दे दिए, मतलब ये उसका जितना शुक्र करूं कम। उसके बाद जिस तरह मैं आप कहता हूँ कि अभी बच्चे और यंगस्टर जिस तरह अब तो मैं बहुत तो यंगस्टर रहा नहीं मगर उनके बीच में रहता हूँ, मेरा काम उनके बीच में रहना है, मैं हमेशा उधर ही होता हूँ, उनको समझता हूँ, उनके साथ अटैच दूसरी तरह कर जाता हूँ। ये नहीं कि फील्ड सिर्फ यंगस्टर्स की है, मतलब जब हमारे दूसरे भाई हैं उनकी भी अपनी अपनी फील्ड है, अपनी अपनी सलाहियतें हैं, मगर मुझे असल में जो शौक है मुझे अपने यंगस्टर्स के लिए होता है, और ये है कि अल्लाह उधर अटैचमेंट हो जाती है, वो निकल आए वो एक्टिव हो जाए। मैं तो बोलता हूँ अगर किसी को किसी यंगस्टर को अगर शौक भी है तो आके मिले, उनको भी स्टार्ट करवाएं और उनको अच्छी से शुरू करें, अपना कांटेक्ट बनाएं। ये जिस तरह आप मेरे फॉर की बात कर रहे हैं क्यों इतनी स्ट्रांग है अपनी पार्टी में, क्योंकि ये मतलब बचपन से यंग से तेज हुआ है इसके साथ, के जितने मिनिस्टर हैं जितने इसके पार्टी मेंबर हैं इसके साथ, मतलब ये कितने सालों साथ साथ चलते आ रहे हैं, परेशान होंगे कॉन्टेक्ट

0: तो इस तरह हमारे यंगस्टर भी शुरू से हमें तैयार करने चाहिए, उनकी रहनुमाई करनी चाहिए कि वो स्ट्रांग बन के, जो हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं हम उनके जरिए उनको मतलब स्ट्रांग करें, पार्टी में आगे लाएं। तो
1: कितने
0: उसे
1: यंगस्टर
0: अकेले
1: हैं अगर
0: पार्टी में
1: आपकी,
0: बैठ
1: आप, मैं तो किसी यंगस्टर को नहीं जानता, एक दो को जानता हूँ कि जो अभी यंग
0: जी
1: उम्र में जो मेंबर बने हैं पार्टियों के, वैसे तो बेचारों को दिलचस्पी नहीं है, जब कम्यून का इलेक्शन लड़ना होता है तो कुछ
0: बिल्कुल
1: अरसा मेंबर बन जाते हैं।
0: दिलचस्पी जी वाकई नहीं है। और वो दिलचस्पी मैं अपने बच्चों को बोलूं, गोरे बच्चों को भी आजकल दिलचस्पी नहीं है। सैमसंग से पढ़ाते मुझे अब तो 12-13 साल हो गए हैं, जितनी जितनी कम कम दिलचस्पी होती जा रही है बच्चों को आजकल, मिलना क्या करें। मगर वो भी पॉलिटिक्स भी ऐसी हो गई है ना कि अब समझ भी नहीं आती लोगों को, पहले कम से कम समझ आती थी ये ब्लॉक है वो ब्लॉक है, ये चाहते हैं ये चाहते हैं, अब कौन क्या चाहता है कुछ समझ नहीं आ रही लोगों को, आसरे होते हैं
1: चलें,
0: करते हैं
1: आप
0: यार।
1: जीशान आखिर में क्या कहेंगे, चूंकि आप स्कूल टीचर हैं तो बच्चों को क्या मशवरा देंगे कि वो अपनी तालीम को, वालदैन को क्या मशवरा देंगे कि वो अपने बच्चों पर किस तरह की नजर रखें?
0: जी नजर तो आजकल ये बड़ा रह गया जी कि यारी दोस्ती पे नजर रखनी बड़ा जरूरी है, साथ पे रखना, क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं अगस्त का महीना ले लें, हमारी आजकल अब एजुकेशनल प्लेसेस भी जहां बंदा जा रहा होता है, गिमनेशियम में जा रहा होता है, वो रॉस किले में 16 साल के लड़के ने 16 साल के लड़के को मार दिया। इधर पिछले दिनों हेलियो गिमनेशियम हमारे इधर करीब है, इधर मेरे इतने पुराने स्टूडेंट पढ़ते हैं, उधर पिछले दिनों एक ने जी को छुरी मार, वो बाद में मुझे पता चला जी मेरा एक स्टूडेंट आया पुराना, कहते यार मेरा क्लास में फेलो था। तो कहने का मतलब है कि नजर रखें, दोस्त यारी पे रखें, क्योंकि आजकल आजकल ये अच्छे बच्चे भी आपको जगह जगह मिलेंगे मगर बुरे भी अनफॉर्चुनेटली आते जा रहे, तो नजर रखें, बात करें उनसे, क्योंकि बच्चे काफी कुछ ऑब्जर्व करते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ वो एक कपड़े की तरह, वो मतलब कतरा कतरा करके अपने अंदर लेते जाते हैं, उन्हें निचोड़ना चाहिए कभी, उनके साथ बात करें। और ये जो सारे हो बातें होती हैं, वीडियोज आती हैं वो भी देखते हैं, कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो मौत में सच में ऐसी कोई वीडियो नहीं देखता, या ICM की या मुसलमानों के खिलाफ की, तो बड़ा जरूरी है कि उनसे बात करें जो वीडियोस देखते हैं। और ये मसाजिद को भी जो हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है, बच्चों से बात किया करें क्या चल रहा है, क्योंकि उनके दिमाग में और उनके हाथ में जो मोबाइल है वो काफी कुछ दिखा देता है, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए गुफ्तगू उनके साथ बड़ी लाजम, वरना वो सब उनके अंदर ही रह जाएगा। और तो मोर देन एवर उनसे बात करने की, समझने की और समझाने की बड़ी जरूरत है। तो और मेरे लायक किसी के लिए कोई खिदमत हुई तो आप बेझिझक बताइएगा, किसी को बच्चे की मदद के लिए जरूरत है किसी भी काम के लिए, बच्चों के लिए ऑलवेज ऑलवेज देयर। इस दफा भी दो क्लासे छोड़, दो क्लासों का क्लास लिया बना हुआ हूँ, तो शौक ही यही है, इसी में मजा आता।
1: चलें, आपको शौक भी है तो कोई काम करना चाहिए जिसमें ज्यादा बंदे का शौक होना चाहिए, वो काम करना चाहिए जिसमें बंदा जाकर कोई तब्दीली ला सके।
0: जी तो तब्दीली वही है जी, एक एक बच्चे की भी थोड़ी सी जिंदगी चेंज कर ली, किसी अच्छे रास्ते पर चल पड़े तो इससे बेहतर हो, इससे ज्यादा खुशी और कोई, तो अल्लाह का शुक्र है जी कि 14 साल हो गए, कोई आज तक बच्चा ऐसा नहीं आया कि वो जो बोले यार या के लीदा अल्हम्दुलिल्लाह वही है, इबादत समझ के काम को कर रहे हैं साथ, रिस्क हलाल आ रहा है, अल्लाह का इतना शुक्र है कि जितना करे कम है,
1: रिज़्क के हलाल आ रहा है,
0: बहुत
1: अल्लाह का
0: शुक्रिया
1: शुक्र है, यही
0: जी।
1: सबसे बड़ी बात है आज की।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं, यही बात।
1: जीशान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमें दिया।
0: जी बहुत शुक्रिया आपका भी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके इधर, तो इंशाल्लाह और अब गर्मी की छुट्टियां खत्म हो गई और एक्टिव हो जाऊंगा, तो जिस किसी को भी कभी कुछ हुआ इंशाल्लाह, और सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होने की पूरी कोशिश है, वरना किसी को भी कोई काम हो बिना झिझक रब्ता करें तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जहां तक हो सके तो पूरा करने की इंशाल्लाह।
1: बहुत शुक्रिया जीशान। सामान नाजीन, ये थे जीशान अली जो कि अपनी पार्टी के हुस्न सुलसा के मेंबर हैं, उनकी पार्टी के जो लीडर हैं वो वजीर खारजा भी हैं, कमेटियों में भी बैठे हुए हैं, बड़ी पावरफुल पोजीशन में हैं, और वो ये भी नहीं कहते कि अब मुझे वोट दें, वो कहते हैं सियासत में हिस्सा लें, बच्चों पर नज़र रखें। वो बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है, اور رزق حلال کی طرف جو ہے میں اللہ، انہوں نے کہا کہ الحمد للہ رزق حلال آ رہا ہے اور کافی اچھی مقدار میں مل رہا ہے، تو رزق حلال کھائیں تو انشاءاللہ آپ کو رزق حلال ملے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ سامع ناظرین ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا، اگلے مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں۔
2: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے، اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے، آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے۔ سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں۔

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाइन और नाज़रीन, इस वक्त हम फ्रांस की फजाओं से एक ऐसी शख्सियत जिन्हें आप पाकिस्तान में टीवी पर देखते रहते हैं, अखबारात में पढ़ते रहते हैं और जानी पहचानी शख्सियत हैं, मेरी मुराद है सेनेटर सलीम ज़िया साहब। इस वक्त फ्रांस की फजाओं में हमारे साथ कोपेनहेगन डेनमार्क की फजाओं में मौजूद हैं। सेनेटर साहब, हम आपको कोपेनहेगन की फजाओं में खुश आमदीद कहते हैं।
2: बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जनाब, आपको और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। सेनेटर साहब, यहाँ चूंकि हमारे पास पार्लियामेंटेरियन आते रहे तो यहाँ का एक रवाज आप कह लें, यहाँ की मतलब मीडिया अपने मौजूद मेहमान से कहता है आप अपना तारीफ करा दें ताकि कोई बात रह ना जाए, आप क्या करते रहे, इस वक्त क्या कर रहे हैं और क्या क्या आप अपने जो तालीमी हवाले से, अपने पेशे के हवाले से, फिर हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।
2: मेरा नाम सलीम ज़िया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक है, सेनेट का मेंबर हूँ। सियासत मैंने नहीं बल्कि तालीम के हवाले से पूछे तो तालीम मैंने अमेरिका से खत्म MBA किया, फिर पाकिस्तान आ गया, फिर यहाँ पर आके कुछ अर्सा मुलाजमत भी की, प्रैक्टिस की, वकालत शुरू की और फिर 1990 में मुस्लिम लीग ज्वाइन की। उससे पेशतर मैं 83 में काउंसलर इलेक्ट हुआ, फिर 87 में काउंसलर हुआ, फिर 90 में काउंसलर इलेक्ट हुआ और फिर हमारा क्लिफ्टन कंटोनमेंट बोर्ड है कराची में, बलदियाती अदारा है, उसका 12 साल में वाइस चेयरमैन इलेक्ट हुआ। फिर 97 में जो हमारे जनरल इलेक्शन हुए उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से MP इलेक्ट हुआ कराची से, MQM के सिटिंग हमारे मेंबर थे, उनको उनसे मैंने ये सीट हासिल की और उसी में जो कैबिनेट बनी 1997 में जिसमें लियाकत जतोई साहब थे चीफ मिनिस्टर, उसमें मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से वज़ीर कानून और मिनिस्टर फॉर लॉ एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स बनाया गया। और और क्या होता है,
1: माशाल्लाह
2: आपने वो मामला चल रहा है, 12 अक्टूबर आ गया। 12 अक्टूबर में जाहिर है वो बड़ा एक जरा सख्त वक्त था, उसमें ये था कि हमारे 21 मेंबर्स थे जी, सारे 21 मेंबर्स में से ज्यादा तो नहीं छोड़ के गए पार्टी 12 अक्टूबर को, 21 में से 20 छोड़ गए, तो सिर्फ मैं रह गया उस। इसी तरह हमारे कौमी असम्बली के मेंबर थे उस वक्त 12 में से भी 10 छोड़ गए, सिर्फ एक रह गए। तो ये सिलसिला जारी रहा और फिर वो बाद में फिर इंशाल्लाह जो वक्त आया तो फिर हम पार्टी के साथ ही रहे। काफी सख्त वक्त था मगर हम ये देखते थे कि जो हमारी क्यादत जिस तरह की सख्ती बर्दाश्त कर रही है तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मुझे ये भी एहसास हासिल था कि जो उनके लिए डिफेंस टीम बनी थी बड़े वकला के साथ, मियां नवाज शरीफ साहब को जो एक झूठे जाली और बेबुनियाद हाईजैकिंग केस में उन पर बनाया गया था, उस पर मैं उस टीम में, उस डिफेंस टीम में मैं भी शामिल था और उनके साथ फिर हमारी अदालत में और जेल में मुलाकातें भी होती रही, तकरीबन हर रोज ही होती थी और मैंने उनको जेल में बहुत मजबूत पाया, हमारी तमाम टीम को, अपने शहबाज शरीफ साहब को और मियां साहब को तो खैर थी, वो सबके सबके सरपरस्ती थे, सबको बहुत अच्छी तरह मैंने देखा जांचा और मैंने देखा कि बड़े मजबूत असाब के मालिक हैं। और बस यही है इंटरव्यू
1: माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई आपकी बातें सुन के। और मैं कहता हूँ यहाँ चूंकि हम लोग डेनमार्क में रहते हैं, कोपेनहेगन में है, तो यहाँ जो बंदे डिजर्व करते हैं, मैंने आपकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानता था, जो मेरे सामने वेबसाइट पे पड़ा उतना ही थोड़ा सा मैंने देखा, माशाल्लाह आप डिजर्व करते हैं अपनी सीट पर, आपने एक वक्त दिया अपनी सारी जिंदगी का हिस्सा तालीम के साथ, अपने पेशे के साथ, सियासत के साथ, आप ग्रास रूट से भी ऊपर आए और ये आपका राइट बनता था, आपको अगर पार्टी ने ये दी है सीट तो आपकी जात पर कोई एहसान नहीं किया, आप डिजर्व करते थे। अब बात है चूंकि आपने आपका सारा स्ट्रगल का दौर है,
2: ये आपकी बड़ी मेहरबानी है, आप क्योंकि भाई हैं, आप मेरा मेरी भी कर रहे हैं, सच बात ये है वो मुझ जैसे आदमी के लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। نہیں ہماری نہ وہ خدمات ہیں نہ وہ حیثیت ہے, مگر پارٹی نے جو ہمیں جو کچھ دیا ہے وہ میں تو کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں میری صلاحیت قابلیت سے کہیں کہیں زیادہ پارٹی نے مجھے عزت اور احترام دیا ہے.
1: یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. پارٹیاں اپنے ورکرز کو اپنے ساتھیوں کو ڈیفینیٹ سیٹ دیتی ہیں. میں کہتا اگر آپ ڈیزرو نہ کرتے تو میں کبھی بھی نہ کہتا کہ آپ سینٹر سیٹ کے قابل ہیں. جس جگہ پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم تو انہی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو ڈیزرو کرتے ہیں, اور پارٹی کا رائٹ بنتا ہے, یہاں بھی پارٹی بھی اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے فرمایا کہ 21 ممبر تھے 20 چھوڑ گئے اور آپ اکیلے, تو میں اس اینگل سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی ذات پر کوئی احسان نہیں ہے جو ہے نا. پارٹی تو ٹھیک ہے, ساتھی آپ پارٹیاں نوازتی ہیں, لیکن اب میری یہ بات آپ سے گزارش ہے کہ ابھی جو موجودہ پاناما لیکس کا ایک نیا ایک اسکینڈل بنا, ایک نیا میں کہوں گا پنجابی میں ایک نیا کٹا کھول دیا عمران خان صاحب نے, آپ کیا کہیں گے؟
2: کچھ نہیں, یہ تو اصل میں عمران خان پہلے تو پاناما لیکس کو تو خیر ہم کر لیں گے. پہلا مسئلہ تو خان صاحب کا اپنا ہے کہ وہ میں حیران ہوں کہ اتنی بڑی سیاست وہ کرنے کے خواہش مند ہے. وہ وزیر اعظم بننے کا شوق بھی رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً اس پر بیانات بھی دیتے رہتے ہیں, مگر ان کی میں نے یہ دیکھا کہ کسی ایک بات پہ کہیں ٹکتے نہیں ہیں. یعنی ابتدا جو ہے وہ کہیں سے شروع کر ہوتی ہے بات, پھر کہیں جا کر کہیں رک جاتے ہیں. ابھی اسی کو دیکھ لیں, بعد میں دوسری باتیں اور بعد میں کرتے رہیں گے. کہ انہوں نے سب سے پہلے کہا کہ جی یہ, اور خود ان کی ریکارڈ

0: कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी इधर छुपते हैं, कभी उधर छुपते हैं, और असल में इनको मुश्किल पड़ गई है हाथ पकड़कर चलने की और पीछे छुपने की। कभी उंगली उठाने वालों के चक्कर में पड़े रहते हैं और अभी भी वो इसी चक्कर में है कि कोई दाव पेच लग जाए, जायज नाजायज, जिसमें जनाब इनका कोई इनको पार लगा दे, मगर कोई भी इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टी इन पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है, और जिनको ये बहुत ज्यादा समझते हैं कि जी वो शायद इनकी मदद करेंगे, वो इनको बार बार इनको बता चुके हैं कि उनका इन कामों से कोई वास्ता नहीं है। और हम मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ है, पहली मरतबा ऐसा हो रहा है। अब यही वजह है कि आप देखें कि जितने भी इलेक्शन हुए हैं, बाई इलेक्शन जितने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, सूबाई हो कौमी हो, सवाए एक आध के, सब उन्होंने लूज किए हैं। कराची में उन्होंने जो 2013 का इलेक्शन था, वहां इन्होंने भाईजान 8 लाख की वोट दिए, वो 8 लाख वोट ले लिए, और एक साल के अंदर अंदर, ज्यादा 1.5 साल के अंदर अंदर वहां पर बलदियाती इलेक्शन हुए, कंटोनमेंट के इलेक्शन हुए जी। वो कंटोनमेंट के इलेक्शन के, मेरी आप बात को छोड़ दें, आप अभी आदाद शुमार मंगा लें, आपके पास सारी फिंगर टिप्स होती हैं आप लोगों के, आप देखेंगे वहां पर जिन हलकों में कंटोनमेंट में इलेक्शन हुए, जहां पर 2013 में उनको कितने वोट मिले थे, और ये बलदियाती जो कंटोनमेंट के बलदियाती इलेक्शन हुए उसमें कितने वोट मिले। मैं समझता हूँ कि मैं तो एक हफ्ता 250 को मैं जानता हूँ, जहां से मैंने इंतखाब लड़ा था, और एक पीएस 113 से, वो मैं समझता हूँ कि तकरीबन 80% वोट जो है कम पड़ा उनको एक साल के 1.5 साल के अंदर, क्योंकि उसकी एक तो पार्टी में ग्रुपबाजी बहुत ज्यादा है, फिर इनका कंट्रोल नहीं है। अभी भी आप देखें, ये जो कराची में दो मामला हुए बड़े दीप, वहां पर एक सीट खाली भी थी, जिसका आप देख बड़ा नोट कर रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, कि कैंडिडेट ने इलेक्शन की रात को एमएनए का जो कैंडिडेट था उनका, उन्होंने इलेक्शन की रात को उसने पार्टी छोड़ दी, टिकट वापस कर दिया, मुंह पे मारा इनके, और जनाब उन्होंने कमाल साहब को ज्वाइन किया। इसी तरह इनके पास एक बड़े मंजे हुए पुराने कारकुन थे, सैयद हफीजुद्दीन साहब, एडवोकेट
1: जी जी,
0: वो एमपीए थे, सिटिंग एमपीए, अभी भी असेंबली के मेंबर हैं। वो सब चीजें छोड़ छाड़ कर इनको उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ मजीद में चल ही नहीं सकता, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो इनके साथ मसला ये है कि इनके पार्टी पे ग्रिप नहीं है। अभी कराची, ये भी जो परसों जलसा हुआ है इस्लामाबाद कल, उसमें भी आप देखें हाजिरी की क्या हालत थी, जज्बे की क्या हालत थी, जोश की क्या हालत थी पहले के मुकाबले में। वो मतलब वो चीज थी नहीं जो आज से 1.5 साल पहले थी। उसमें कमी आती जा रही है, कमी आती जा रही है, क्योंकि एक जगह टिकते नहीं है, एक जगह पे रुकते नहीं है, और दूसरा एक मशवरा तो लेते ही नहीं है बिल्कुल, और सिर्फ ये इस चक्कर में है कि कोई दाव पेच लग जाए, कुछ हो जाए, बस मुझे किसी तरह कल नहीं तो आज नहीं तो अभी इसी वक्त मुझे किसी तरह वजीर आजम बना दिया जाए। होता नहीं ऐसे ना, ये तो बड़ा ठंडा काम है, बड़ी ठंडा करके खाना पड़ता है इसमें। वो क्यों इतनी जल्दी में है वो शायद वो खुद ही बता सकते हैं, मगर मुझे एक बात समझ में आती है, ये इनको सबसे बड़ा जो खतरा है इमरान खान साहब को
1: जी,
0: वो ये कि अगर जिस पीठ से नवाज शरीफ साहब की पूरी पार्टी और उनकी गवर्नमेंट जो है, जिस तरह वो मामलात को लेकर चल रही है, और यही अगर 2018 तक चलता रहा इसी तरह, इसी स्पीड से मामला, तो उनको पता है कि 2018 में ये बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगे। अभी भी वाइप आउट ही है तकरीबन। पंजाब में देखें इनकी कई सीटें नहीं है, दूसरों सूबों में कई सीटें नहीं है सवाल खैबर पख्तूनख्वा के अलावा। तो इनको खतरा ये है कि यार 2018 तक अगर ये इनको हमने जाने दिया और इसी स्पीड से ये कार्रवाई करते रहे अपने, और इनकी मकबूलियत इसी तरह बढ़ती रही और बाय इलेक्शन इसी तरह ये जीतते रहे, तो 2018 में तो हमारा कोई टिकट भी नहीं लेगा। ये इनको खतरा ये है और कुछ नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये अगर थोड़ा सा हौसला कर लें, थोड़ी सी हिम्मत कर लें, तो इनके शायद मामला ठीक भी हो सकते हैं। मगर जो आदमी इतनी जल्दी में होता है ना जी, वो मैंने तो उसको आज तक आगे जाते हुए नहीं देखा। तो ये बहुत बड़ी एक एक्सेप्शन होगी अगर इनको कोई चीज हासिल।
1: सलीम साहब, आज बात चूंकि मैं मीडिया में हूँ, मैं एक बात आपसे शेयर भी कर रहा हूँ।

0: इमरान खान साहब इतने उस वक्त पॉपुलर नहीं थे, मैं चंद साल पहले की बात कर रहा हूँ। इंग्लैंड में मेरी इनसे एक जगह मुलाकात हुई, मैं भी गेस्ट था, मुझे इंग्लैंड से किसी ने बुलाया था, तो VIPs हम बैठे हुए थे, तो मुझे कहने लगे राय साहब आप क्यों नहीं सियासत में हिस्सा लेते, तो आप एक ऑफिस खोले, तो हम बस आपको, मैंने कहा मैं ठीक है जो काम करता हूँ मैं इसमें खुश हूँ, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। तो मुझे उस वक्त महसूस हुआ कि इमरान खान साहब ये बात क्यों कर रहे हैं कि आप लोग ऑफिस खोले। तो मुझे जब ये धरने की बात हुई, इस्लामाबाद की बात हुई, तब उसका जवाब मुझे मिला, तो इसका मतलब है कि प्लानिंग बहुत पहले की हो चुकी थी।
1: जी जी जी ये प्लानिंग तो बहुत करते रहते हैं, ये प्लानिंग तो करते हैं। कभी मुशर्रफ के साथ बहुत अरसा चले, उन्होंने जब वजीर आजम नहीं बनाया ठुकरा दिया, उसको छोड़कर आ गए, फिर नवाज शरीफ साहब की भी बहुत नजदीक आने की कोशिश की, और फिर एक बहुत ही बहुत ज्यादा डिमांड कर दी सीटों की, जाहिर है वो भी उनको मना कर दिया गया। तो ये मुख्तलिफ हरबे मुख्तलिफ वक्तों पर कोशिश करते रहते हैं, और बस जाहिर है मगर इन चीजों में कामयाबी कहाँ होती है।
0: चले देखे ना, जब मियां साहब की बात करते हैं कि मियां साहब के ऐसे है पैसे है, करप्शन की बात करते हैं, तो जब अभी इनकी जहाज पे तस्वीर नजर आ रही थी, एक तरफ अलीम खान बैठे हुए थे, दूसरी तरफ जंगी तरीन खान साहब बैठे हुए थे, तो जो लोग हम लोग
1: दो ATM जो है, जी जी जी जी अच्छा मैं समझ गया, उनको आजकल ATM ग्रुप कहलाता है,
0: बिल्कुल ATM ग्रुप है। तो वैसे इमरान खान साहब जितने सर मतलब पैसे वाले लोग होते हैं और जिन्होंने पैसा किसी और तरीके से बनाया होता है उनको अपनी पार्टी में लेते हैं, ये तो बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। यूरोप में सलीम साहब हम आते हैं कि ये जो सारे हालात चल रहे हैं और मियां साहब जो अब खुल के बिल्कुल फ्रंट लाइन पर आ गए हैं खेलने के लिए, और अब ये जलसा जुलूस जो शुरू हो गया, और मियां साहब ने आज कोटली सतियां गए थे, उसके बाद एबटाबाद जा रहे हैं, फिर कराची जाएंगे, तो कहीं ये इलेक्शन की तैयारियां तो नहीं है?
1: नहीं सर, नहीं कतर नहीं, इलेक्शन तो मैं देखिए राजा साहब आपसे मैं रस कर दूं, आप तो भाई हैं, और मैं आपको बिल्कुल ये पार्टी से हटकर मैं बात कर रहा हूँ, इलेक्शन 2018 में ही होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। ये क्योंकि एक एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है, तो और ये खाम एक इन्होंने एग्जाम तलाशी का सिलसिला शुरू किया हुआ है, ये सिर्फ इसी हद तक महदूद है हमारी पार्टी की तरफ से, हमें कोई जल्दी नहीं इलेक्शंस पहले करानी थी। हमारी पोजीशन हर जगह माशाल्लाह मजबूत है, ख्वाब पंजाब में हो, बलूचिस्तान में हो, अभी आप देखेंगे इंशाल्लाह जो इंतखाबात होने जा रहे हैं आजाद कश्मीर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की तरह, वहां भी हमें जबरदस्त कामयाबी होगी और वहां पर भी हमारा ही कैंडिडेट जो है, हमारी ही पार्टी वहां पर हुकूमत बनाएगी इंशाल्लाह।
0: सलीम साहब इसमें कोई शक नहीं कि अगर मुस्लिम लीग नवाज बिजली और ये गैस का बुरान जो है ये अपने आने अगले इलेक्शन 2018 से पहले पब्लिक को ये चीजें मिल जाती हैं तो पब्लिक बादर नहीं करती। देखिए पेट्रोल सस्ता हो गया, गैस भी सस्ती हो रही है, तेल भी सस्ता हो रहा है, तो पब्लिक को तो जो सहूलतें चाहिए, पब्लिक इतनी दूर की नहीं सोचती कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, सूबाई असेंबली में क्या हो रहा है, ऊपर वाले लोग
1: देखते हैं। ठीक है, आम आदमी तो देखता है कि यार मेरी जेब से पैसा निकल कितना ना रहा है, खर्चा कितना मेरा कम हो गया पहले से या ज्यादा हो गया, वही आपकी बात दुरुस्त है। मैं समझता हूँ कि ये 2018 से पहले इंशाल्लाह इंशाल्लाह खुदा चाहेगा कि ये जो बिजली का मसला है और पानी का मसला है, ये बुनियादी तौर पर जो दो मसाइल हैं एनर्जी के और उसके, ये बिल्कुल कवर होंगे। और फिर ये जो एक बहुत बड़ा बीच में मामला आ गया है हमारा, ये चाइना के साथ जो हुआ है सी पैक जो हुआ है,
0: कोई शक नहीं
1: ये $47 बिलियन का प्रोजेक्ट है, इसमें सड़कें हैं, रोडे हैं, पोर्ट्स हैं, ग्वादर पोर्ट है और बहुत सारे इसमें इंटरलिंक्ड प्रोग्राम्स हैं, और तब तक इंशाल्लाह वो भी बाय तकमील तक पहुंचने वाला होगा, यानी उसके नजदीक होगा, उसके जरिए बलूचिस्तान में बड़ी डेवलपमेंट होगी, ग्वादर पोर्ट काफी स्टैब्लिश हो चुका होगा, सड़कें बन चुकी होंगी, हाईवेज बन चुके होंगे, मोटरवेज बन चुके होंगे, और उसके लिए तो आए दिन यहाँ पर उसकी तशरीह भी हो रही होती है, बताया भी जा रहा होता है। ये सारी चीजें हैं, ये इनको खतरा है, ये दूसरी जो पार्टीज है खसूसी तौर पर इनको इमरान खान को खतरा है, ये बाकी और कोई बात नहीं है। बाकी ये जो आप समझ रहे हैं हमारी क्या इस मामले के लिए कि उन्होंने जरा तेजी शुरू की है, तो उसका जवाब दे दिया जाए कि जनाब ये सारा चीज झूठ झूठ का पलंदा है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए या तो होता ना कि नवाज शरीफ साहब कह देते जी कोई कमीशन नहीं है, कोई जुडिशियल कमीशन नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस नहीं है, कोई सर्विंग चीफ जस्टिस नहीं है, मैं नहीं मानता किसी को, बस मैंने जो जो है जिसने जाना अदालत में खुद चला जाए। वो अप्रोच तो की नहीं। मियां साहब ने तो एक बहुत ही दिलेरी का बहादुरी का मजारा करते हुए ये कह दिया कि चलो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करेगा सारी चीज कार्रवाई करेगा और मैं अपने पूरे खानदान को पेश करता हूँ। अब इससे ज्यादा और क्या बात हो सकती है? चाहते क्या है ये नहीं समझ में आता। इमरान खान साहब या तो कोई ऐसा तरकीब कर दिया जाए कि इमरान साहब आप मेरी मदद फरमाए, मेरी मैं इस बात की मैं भी सिफारिश करने के लिए तैयार हूँ कि इमरान खान साहब को बना देते हैं चेयरमैन।
0: बिल्कुल, मैं आपसे ये बात कहने लगा था कि आप चेयरमैन से भी ज्यादा दें, चूंकि मियां साहब देने वाले हैं। तो उन्हें कहें यार आओ, मैं इमरान खान साहब से मैंने बात की इंग्लैंड में, मैंने कहा खान साहब आप इस तरह करें, आप अगर मियां साहब के साथ मिलते, आप मियां साहब के साथ होते तो मैं डेफिनेट आज कम से कम पाकिस्तान की बहुत बड़ी पोस्ट पर आप ही होते।
1: जी जी जी जी।
0: लेकिन आप
1: बस वो अपना ठीक है, आदमी का अपना नजरिया होता है। हम उनको और तो मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता उनके लिए, मगर जो कुछ मैंने देखा है ये 4-6 साल में उनको ऑब्जर्व किया है कि वो एक बहुत ही कंफ्यूज शख्सियत मैंने उनको पाया, बहुत ही वो
0: हालांकि ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, यूरोप में रहे हैं, उन्हें तो देखें जिस तरह वो पाकिस्तान में जलसे जुलूस में तकरीर करते खिताब फरमाते हैं तो पता नहीं चलता कि ऑक्सफोर्ड से गए हुए हैं।
1: हाँ नहीं नहीं, वो जाहिर उनके लबो लहजे में और बहुत ज्यादा बीच में गलाजत भी होती है, बेहूदगी भी होती है, पर आपने ये देखा कि हमारे लीडर ने कभी उसको जवाब नहीं दिया,
0: कभी भी नहीं, बहुत इसमें कोई शक नहीं।
1: यही कहा कि बल्कि ये बरमला कहा है, ये अल्फाज उन्होंने कहा है कि मुझे इमरान खान गालियां भी देता है और मैं उसके लिए हमेशा दुआ करता हूँ। अब ये देखा ना, कोई ये तो आदमी के जर्फ की बात है कि वो आदमी ये कह रहा है और मियां साहब कह रहे हैं कि मैं उनके लिए अभी भी हमेशा दुआ करता हूँ।
0: जहाँ डिबेट चल रही थी, उन्होंने कहा जी देखे मियां साहब ने इनको अस्पताल के लिए जगह दी, यूनिवर्सिटी के लिए जगह दी, क्रिकेट साथ खेलते थे, बहुत सारे अच्छे तलुकात थे, मियां साहब ने कौन सी ज्यादती की है खान साहब? चले छोड़े इन बातों को, आते हैं चूंकि आप आए हुए हैं, मेहमान हैं आप। स्लीम साहब, आपको फ्रांस कैसे लगा? और मैंने देखा कि आपने पाकिस्तान एम्बेसी का भी विजिट किया।
1: बताऊंगा आपको, मैं एक बात कहना चाहता हूँ।
0: जी जरूर।
1: ये हमारी जो सियासी पार्टीज हैं, पाकिस्तान के लोग हैं, हम समझते हैं कि हम तो सारा दिन भी अगर सिजदे में पड़े रहे ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें सारा दिन, तो वो भी कम है, क्योंकि हमें जो ये पाकिस्तान मिला है ना अल्लाह ताला की तरफ से
0: नेमत है ये।
1: ये मैं कहता हूँ इतनी बड़ी नेमत है कि जिसका कोई हिसाब कोई नहीं है। ये लोग अभी कई लोग तासुर ये देते हैं, हालांकि पढ़े लिखे भी हैं, बाशूर भी हैं, वो तासुर ये देते हैं कि शायद पाकिस्तान बस ऐसी बस चलते चलते चलते चलते रात हुई और जी फिर सुबह उठे तो पाकिस्तान बन गया। नहीं, ये तो ये याद दिलाना पड़ेगा हमें अपने बच्चों को, अपनी औलादों को, अपने नए लोगों को कि भाई ये इस तरह नहीं बना है। या पुराने लोग भी हम देखते हैं, वो भी तो लगता है कि वो भूल गए कि पाकिस्तान बना कैसे। पाकिस्तान तो बड़ी लंबी जद्दोजहद के बाद बना है। इसमें तो कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और उनके जो रफ्तकार थे अलामा इकबाल साहब थे, सर सैयद अहमद खान थे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर और ये सरदार अब्दुल रब नेश्तर, ये दुनिया जहान के जो लोग थे, मौलवी फजल हक, ये लोग तो वो लोग थे। और फिर इन लोगों की कुर्बानियां, लाखों सैकड़ों जो वर्कर्स थे उनकी कुर्बानियां, और आखिर में जो तकरीबन 18 लाख के करीब जो लोग शहीद हुए थे पार्टीशन के वक्त, ये उनकी कुर्बानियों से पाकिस्तान बना है। ये कुर्बानियां दी गई हैं, लोगों ने अपनी जान का नजराना देकर पाकिस्तान बना है, खून देकर बना है। ये हमें किसी इंजीनियर ने, किसी डॉक्टर ने, किसी खिलाड़ी ने या किसी जनरल ने फतह करके नहीं दिया पाकिस्तान। हमें ये पाकिस्तान वहां मुसलमानों ने हिंद, जिन्होंने लाखों लोगों की वाकई कुर्बानी दी, अमली तौर पर कुर्बानी दी, उसकी वजह से हमें ये पाकिस्तान मिला है। और आज हमें कोई ये सबक सिखाए कि जनाब ये हो गया है और वो हो गया है। मैं समझता हूँ राजा साहब एक बात बिल्कुल तय है, पत्थर पर लकीर है कि पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान ने बहुत आगे जाना है इंशाल्लाह, और वो सिर्फ और सिर्फ इसीलिए जाएगा कि अगर यहाँ पर जमहूरियत रहे,
0: इसमें
1: जमहूरियत रहेगी पाकिस्तान बहुत आगे जाएगा
0: इंशाल्लाह।
1: कोई यहाँ पर निजाम नहीं चल सकता,
0: हाल ही दूसरा हल नहीं है।
1: जब भी जमहूरियत डिरेल हुई है पाकिस्तान में जबरदस्त नुकसान हुआ है, जबरदस्त किस्म का नुकसान हुआ है, ख्वाह वो बांग्लादेश के हवाले से हो, ख्वाह ये जिस तरह हमें आग में झोंक दिया गया, अफगानिस्तान वॉर में झोंक दिया गया, या फिर जो सबसे ज्यादा जुल्म और जबर जो किया जनरल मुशर्रफ ने किया جس میں یہ تمام ساری چیزیں جس کا آج ہم کمیدہ بھگت رہے ہیں، جس میں تقریباً ہمارے 60,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، جس میں 15,000 ہمارے بہادر فوج کے لوگ ہیں، یہ سارے اسی طرح اسی وجہ سے شہید ہوئے کہ یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے. مگر آج دیکھیں ابھی آپ یہ بیچ میں بات رہ گئی، یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ ابھی دو بڑے مسئلے تھے جب اقتدار میں آئی پارٹی، شمالی وزیرستان وہاں کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. دیکھیں بات انصاف کی ہونی چاہیے، وزیر اعظم اس وقت بھی تھا کوئی، اس وقت جناب سارے معاملات تھے، ساری چیزیں تھیں، فوج بھی تھی، رینجرز بھی تھی، سول انتظامیہ بھی تھی، وہاں پر کچھ کام نہیں کیا گیا. اسی طرح کراچی میں وہاں پر تو پچھلے 27 سال سے دو پارٹیاں حکومت کر رہی ہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم، وزیر اعلیٰ بھی تھا، گورنر بھی تھا، منسٹرز بھی تھے، مشیر بھی تھے، اسمبلی کے ممبران بھی تھے، قومی اسمبلی کے ممبران بھی تھے، سینیٹر بھی تھے، رینجرز بھی تھی، فوج بھی تھی، نہیں کیا کچھ کسی نے، کیونکہ ایک پولیٹیکل کمٹمنٹ نہیں تھا. اب اس دور میں جب یہ جیسی حکومت آئی تو میاں صاحب نے دونوں کے معاملے میں، وہ وزیرستان کے حوالے سے ہو اور کراچی آپریشن کے حوالے سے ہو، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم نے ان دونوں معاملات کو صحیح کرنا ہے. کراچی جو ہے پاکستان کی شہر آ گیا، یہ تماشا بنا دیا گیا ہے، وہاں پر 20,000 لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں مارے جا چکے ہیں، قتل کیے جا چکے ہیں، اغوا برائے تاوان ہر روز کا معاملہ تھا. اسی طرح شمالی وزیرستان میں اماجگاہ تھی، نرسری تھی، ہیڈ کوارٹر تھا دہشت گردوں کا، وہ ہمارے بہادر فوج نے، ہمارے سپاہیوں نے، ہمارے افسروں نے اپنی جان کی قربانی دی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر معاملات بہت ٹھیک ہیں. اسی طرح کراچی میں بھی انہوں نے سنگل ہینڈیڈلی نہیں کیا، یہ نہیں کیا کہ میں صرف میں کروں گا. نواز شریف نے کہا کہ میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گا، صوبائی حکومت بھی ہوگی، رینجرز بھی ہوگی، آرمی بھی ہوگی، سول سوسائٹی بھی ہوگی اور دیگر پارٹیز بھی ہوں گی، سب کو ساتھ لے کر چلیں گے اور ہم نے یہاں پر نتیجہ دینا ہی دینا ہے، اکراس دا بورڈ ہوگی. اور وہی آج اس کا نتیجہ دیتے ہیں، ورنہ راجہ صاحب عید کے دن حاضری کم ہوتی تھی نمازوں میں، جمعے کی نمازوں میں کم ہوتی تھی، 6 ستمبر کو کوئی باہر نہیں نکلتا تھا، 14 اگست کو لوگ باہر نہیں نکلتے تھے، عید کے دن جو میلے ہوتے تھے وہ انہیں بند ہو گئے تھے کئی سالوں سے. اس مرتبہ پہلی مرتبہ یہ ہوا ہے کہ جناب وہاں پر کھلم کھلا وہاں پر ساری چیزیں ہوئی ہیں، لوگ دڑا دڑ باہر نکلے ہیں. یہ ووٹ الیکشن کی باتیں کرتے ہیں آج، یہ دھرنے یہ باتیں کرتے ہیں، جلسے جلوس کرنے کی، یہ خود کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس لوگ نہیں، ہم لوگ لوگوں کو جنازہ کندھا دے سکے، اتنا دہشت اور اتنا خوف تھا.
0: اس میں کوئی شک نہیں، اس سے حکومت کو کریڈٹ جاتا ہے، حکومت کی مرضی نہ ہو تو فوج تو حکومت کے ساتھ چلتی ہے، فوج تو جو حکومت کہے گی فوج نے تو وہ کرنا ہو بے کرنا ہے. سلیم صاحب آپ تو ایک دو آخری سوال کرتے ہیں، مجھے پتا ہے مصروف ہیں. سلیم صاحب آپ نے وزٹ کیا، آپ نے غالب صاحب سے آپ کی ملاقات ہوئی، غالب صاحب ماشاء اللہ بڑے پاپولر ہیں، جو میرے پاس نالج ہے کہ وہ پسندیدہ شخصیت ہیں، بہت کم بیوروکریٹس ہم نے دیکھے ہیں، بہت کم امبیسڈر دیکھے ہیں جن سے لوگ محبت کرتے ہیں. تو آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھیوں سے یا پارٹی کے لوگوں سے یا عام لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو ان کا کیا نظریہ امبیسی کے بارے میں، امبیسڈر صاحب کے بارے میں؟
1: راج صاحب اصل میں میں نے اپوزیشن کی سیاست خاص کر جنرل مشرف وقت میں اتنی زیادہ کی، میں آج ان کو بھی کہہ رہا تھا کہ کسی افسر کی تعریف کرنا جو نا وہ اس سے زبان لڑکھڑاتی ہے، یا کسی کی بھی تعریف کرتے ہوئے، کیونکہ ٹیوننگ زیادہ اپوزیشن کی ہو گئی ہے. مگر میں آپ کو سچ بات بتاؤں، میں یہاں 4 دن سے آیا ہوا ہوں. میں آیا تو تھا، ہماری کانفرنس تھی وہاں اسلام آباد میں، اپنا واشنگٹن میں، اور پھر میرے یہاں پر کچھ چیک اپس وغیرہ تھے تو میں فرانس بھی آ گیا. تو میں نے یہاں پر دیکھا کہ عام طور پر جس جگہ بھی ملک میں جائیں تو وہاں لوگ سفارت خانے کی کاروائی پر ضرور اپنا تبصرہ دیتے ہیں. میں گیا ہوں مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، تو یہاں پر جب سے میں آیا تھا میں نے دیکھا کہ کسی نہ کسی بہانے کوئی نہ کوئی لوگ، جو آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں پچھلے 3-4 سالوں میں، 3 سالوں میں خاص طور پر، اس کا وہ ذکر ضرور کرتے تھے امبیسڈر صاحب. میں جانتا نہیں، ملاقات ہی نہیں تھی میری، میں نہیں جانتا ان کو، تو اس کا ذکر ضرور کرتے تھے کہ جی بڑا انہوں نے کام کیا ہے. مثلاً میں نے کہا بھائی کیا کام کر دیا، کیا تعریفیں کی، کیا جو اتنی تعریف کر رہے ہو کیا وجہ کیا اس کی؟ انہوں نے کہا جی پہلے تو یہ تھا کہ یہاں پر کوئی ہمیں پوچھتا نہیں تھا، پاسپورٹ رینیو کرانے جاتے تھے، اور کیا کام ہوتا ہے وہاں، لمبے چوڑے کو کام ہوتے نہیں ہیں، यानी जी छोटे छोटे काम के लिए जाते थे तो कई कई दिन लग जाते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, सुबह जाते थे रात को आते थे, सुबह जाते थे रात को वापस आते थे, और स्टाफ का जो रवैया था वो बड़ा खराब था। तो कहेंगे ये जब से ये आए हैं गालिब साहब, गालिब इकबाल साहब, तो इन्होंने सारी चीजों को बिल्कुल दुरुस्त करके रख दिया। मैंने कहा मसलन, उन्होंने कहा जी पहले दफ्तर पहले नीचे बेसमेंट में होता था और वहां पर ना बैठने की सही जगह, ना उठने की, ना स्टाफ के लिए, और खासकर जो लोग जाते थे उनके लिए तो कोई हाल ही नहीं था, कोई पूछता नहीं था उनको। तो ये कहेंगे कि उन्होंने तब्दीली की। फिर उन्होंने ऐसा सिस्टम कर दिया कि उनने सब, मेरे ख्याल यकीनी तौर पर उन्होंने स्टाफ को तंबीह की होगी, ट्रेनिंग दी होगी, उनको बताया होगा कि जनाब मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं, क्योंकि वो खुद बता मुझे जो वाकया जो पता चला कि जब पहले दिन जब ये आए तो ये बगैर किसी को बताए हुए लाइन में ये भी खड़े हो गए कि जी मुझे भी पासपोर्ट बनवाना है, देखना है, मुझे एप्लीकेशन वगैरह दे दें। तो उस दौरान में जो इनको झिड़कें पड़ी आधे घंटे में अफसरों की तरफ से, आ जाते हैं जी टाई कोट पहन के, अंग्रेजी बोलते हैं, बैठ लाइन में खड़े हो जाओ। तो कहने जी मैंने तो बर्दाश्त किया क्योंकि मैं तजुर्बा करना चाह रहा था कि असल में हो क्या रहा है, और कोई अच्छा आदमी को, खानदानी आदमी को, ट्रेंड आदमी है जिसके दिल में तरस होता है, हमदर्दी होती है, वही चीजें करते रहते हैं ऐसे लोग। तो कहना मैंने वो झिड़के सही, चलो जी अभी आप हमने काम को सीखना है, सही करना है, तो झिड़के तो सुननी पड़ेगी। तो उसके बाद फिर इनको सही पोजीशन पता चली कि यहाँ तो बिल्कुल ही बड़ा रख हुआ मामले था। तो उन्होंने ये सारी चीजें की, दुरुस्त की। आज लोग कहते हैं कि भाई वो हमारे ये राजा अली असगर साहब है,
0: जी जी
1: दोस्त है, भाई है हमारे, और यहाँ पर बहुत सोशल वर्क भी कर रहे होते हैं, बहुत ज्यादा आना जाना रखते हैं लोगों के साथ, जो खासकर नए लोग आते हैं उनकी बड़ी मदद करते हैं, क्योंकि खुद माशाल्लाह काफी इनका काम एस्टेब्लिश है, 30-40 साल से है, बल्कि पाकिस्तान में भी इनका सियासी असर रसूख खासा है, क्योंकि इनके अपने एरिया में अभी ये 2 UCs जीते हैं, बल्कि कई लोग तो इनको ये भी पैसे क्या मशवरा दे रहे हैं कि अगले इलेक्शन में भी हिस्सा लें MPA के लिए। तो ये यहाँ पर बहुत इनका असर सूख है। कल भी इन्होंने बहुत यहाँ 2-250 लोगों का एक सिलसिला रखा हुआ था और उसमें दावत भी थी, खाना भी था, मधु भी किया हुआ था लोगों को, साफी भी थे और दूसरे मुस्लिम लीग के और सीधा सीधा पाकिस्तान के जो लोग हैं वो लोग भी आए हुए थे। तो इन सब की राय यही है, मशवरा यही है इनका कि बल्कि ये तो बहुत ज्यादा ये चाहते हैं कि इनका ट्रांसफर रुक जाए किसी तरह, ये जाए ना, क्योंकि 3 साल पूरे हो गए,
0: टेन्योर पूरा हो गया।
1: मैं भी आज मिला हूँ, मुझे उनकी शख्सियत बहुत प्यारी लगी, बहुत बाखलाक, बहुत देर तक हमारे साथ बैठे भी रहे, बातें भी सुनी, और मैंने भी उनको ये मशवरा दिया क्योंकि जाहिर है मेरे से उम्र में छोटे भी हैं और वैसे भी हमारी क्योंकि जिम्मेवारियां हैं हुकूमत में, तो मैंने उनकी बहुत हौसला अफजाई भी की है, बहुत हौसला अफजाई की है उनके साथ। वो हमारे जो एक अफसर थे उनके साथ, वो भी जो ये पासपोर्ट सेक्शन के इंचार्ज हैं, उनको भी मैंने यही मशवरा दिया कि जो आपने जो रवैया रखा हुआ है इसको आप जारी और सारी रखें, और ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा सवाब का काम है जो आप लोग कर रहे हैं। एम्बेसडर साहब गालिब इकबाल साहब जो है वो अपना रवैया इसी तरह रखेंगे और इनका जो स्टाफ है वो भी अपना ये रवैया कायम और दायम रखेगा, ताकि जो हमारे लोग हैं बड़ी दूर दराज से आए हुए होते हैं, बड़ी सख्त तकलीफों में।
0: मेरा भी खुद मीडिया सारे से जो फ्रांस का मीडिया रहता है, दोस्त हैं सारे, लेकिन वो इसी तरह जो बातें आप कह रहे हैं वही बातें सारी वो भी यही बातें करते हैं, लफ्ज दूसरे लफ्जों में यही बातें करते। मैं आपको जरा डेनमार्क लिए आता हूँ। आपको याद होगा कि डेनमार्क में 2 दफा अम्बेसी के बाद डेमोन्स्ट्रेशन हुई थी, और उसके बाद चौधरी निसार साहब ने कहा था भाई इनका मसला क्या है, इनको रीडेबल पासपोर्ट मशीन हमें मिल गई, चले अल्हम्दुलिल्लाह पासपोर्ट बनने शुरू हो गए, रीडेबल पासपोर्ट मशीन। अब स्लिम जैद साहब, मोहतरम नवाज शरीफ साहब भी यहाँ तशरीफ लाए थे, लेकिन कुछ अरसे के बाद उनकी हुकूमत चली गई थी। राजा जफर अलहक साहब से भी ये बात रही, अब आपके कोलीग भी हैं, मेरा जरूर उनको सलाम दीजिएगा, बहुत ज्यादा हमारे अपने हैं, और ये सिलसिला चलता रहा। सब लोगों से हमने बात की, हमारा मसला है ड्यूल नेशनैलिटी का, दोहरी शहरियत का,
1: ठीक है।
0: हमसे पहले स्वीडन को मिल चुकी है, हालांकि हम पुराने डिमांड करने वाले हैं, हैं। उसके बाद अमेरिका को मिल गई, पड़ोस में हमारे 20 मिनट का रास्ता नहीं, हम स्वीडन के अंदर दाखिल हो जाते हैं पुल क्रॉस करके, और पता ही नहीं चला कि उनके सफीर मोहतरम ने कैसे उनको 2.5 दे दी। हमने बहुत कोशिश की, साला साल से कोशिश कर रहे हैं, पहली एक मोहतरमा थी 8 साल उनके साथ कोशिश, आपने कहा अपोजिशन की, हमने तो यहाँ सारा वक्त ही अपोजिशन का गुजारा है। तो मौजूदा जो सफीर साहब आए, अच्छा वक्त चला, इन्होंने वादा किया कि जी इंशाल्लाह आपको 2.5 जो मिल जाएगी, हमने पिछले मार्च में देख, शायद पिछले मार्च में मिल जाए, और अब जो नया मार्च ये भी अपना गुजर गया, कुछ नहीं मिला। यहाँ मैं आपको बताऊँ, हुकूमत ने सितंबर में 2.5 का कानून पास कर दिया है, उन्होंने शर्त भी नहीं रखी कि अगर आपको कोई, हम कोई डिमांड रखेंगे जिन्हें पहले कोई पेपर लेके, उन्होंने कहा जी आपको आपकी हुकूमत आपकी एम्बेसी आपको पासपोर्ट देती है शरीया, हमें कतन कोई एतराज नहीं है, उन्होंने इसका बिल पास कर दिया। अब सफीर मोहतरम ने एक ऐसी चाल चली कि इसको पैकेज की शक्ल में जाके जर्मनी और चेक रिपब्लिक के साथ एक पैकेज की शक्ल में इसको डाल दिया जानबूझ के। बेसिकली मैं आपको आज इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये अपने कायम अली शाह साहब के जो हैं वो सफारशी हैं, मैं ऑन एयर आपको कह रहा हूँ, मैं छुपा के बात नहीं, मेरे मिलते हैं, हम बैठते हैं, चाय इकट्ठे पीते हैं, इस तरह का कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन बात पब्लिक की है। क्या बात है कि जब भी मुस्लिम लीग की हुकूमत आती है, डेनमार्क के लोगों को, यहाँ मुस्लिम लीग मजबूत है, डेनमार्क के लोगों को कुछ नहीं मिलता। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं पब्लिक की तरफ से कर रहा हूँ चूंकि मैं खुद मीडिया में हूँ,
1: ठीक है जी जी,
0: कि खुदारा मियां साहब डेनमार्क के लोगों को 2.5 मिल गया, ये एक एजाज की बात होती है हुकूमतों में, इसको आप क्लियर करें ताकि लोग अपने जाकर अपनी एम्बेसी से पाकिस्तानी पासपोर्ट बनाएं, रेवेन्यू देंगे, पैसे देंगे, पासपोर्ट बनवाएंगे, पैसे मिलेंगे। आपके अगर शहरी वापस आपके पास आना चाहते हैं तो उसके रास्ते में एम्बेसी सबसे बड़ी रिकावट बनी हुई है, और जो हमारे सफीर मोहतरम है ये बिल्कुल, कभी इस तरह बात करते कभी ये हो गया जी, बिल्कुल लिख दिया हमारी बड़ी मजबूरियां जी, हमारे पास कुछ नहीं है। तो सलीम साहब, अगर इस जमहूरी दौर में कुछ नहीं मिलेगा तो फिर कब मिलेगा,
1: उसके बारे में पता नहीं था पहले क्या क्या कुछ होता रहा है
0: जी जी,
1: और दूसरे ममालिक में क्या क्या आसानियां हो रही हैं, दीगर जो आसपास है, ये सारी तफसील अगर हमारे पास आ जाएगी
0: जी जी,
1: तो इसको मैं डेफिनेटली पूरी तनदही से इस मामले की आपकी मदद करूंगा
0: इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बल्कि चौधरी निसार साहब के भी नॉलेज में ये बात है।
1: अच्छा अच्छा ठीक है,
0: लेकिन कोई बिल्कुल सोई हुई है जी, जैसे पता चले
1: आपसे गुजारिश ये होगी कि आप मेरे से रब्ता भी रखें,
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह रखेंगे।
1: आज तो बहुत अच्छा हो गया कि आपसे रब्ता हो गया, बहुत खुशी हुई, मगर आप मेरा नंबर भी अगर आप नोट फरमाना चाहें तो मैं आपको दे रहा हूँ, बल्कि ऑन एयर दे रहा हूँ, किसी और में भी बात करनी हो
0: ठीक है,
1: कोई बात मुझ तक पहुँचानी हो तो मेरा मोबाइल नंबर है 0333-2297-2297।
0: बहुत शुक्रिया असलम साहब। आखिर में यहाँ डेनमार्क के बसने वाले शहरियों को आप क्या पैगाम देंगे और अपनी पार्टी के लोगों को क्या पैगाम देंगे?
1: कि ये जो हमारे जितने भी लोग हैं ओवरसीज, खुसूसी तौर पर अभी क्योंकि हम डेनमार्क में बात कर रहे हैं, डेनमार्क के लोगों से मैं मुखातिब हूँ, तो इनको से मैं सलाम पेश करता हूँ कि बड़ी मेहनत से, बहुत लगन से अपना काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान डेनमार्क की हुकूमत भी इनकी जो जो इनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं, जिस मेहनत के साथ ये काम कर रहे हैं वो भी इसको मानती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि यहाँ पर आकर अपने बच्चों की तालीम पर भी तवज्जो दे रहे हैं। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं वो अपने जो पाकिस्तान में सहूलत नहीं मिल सकी है या नहीं है या कम है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो नया ट्रेंड आया है, बहुत अच्छा ट्रेंड आया है कि वो बच्चों की तालीम पर यहाँ पर अब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। तो ये इसी तरह ईमानदारी के साथ अपना काम करते रहें जिस तरह कर रहे हैं, मेहनत भी उसी तरह करते रहें जैसे कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मजीद नाम भी रोशन करेंगे, और जाहिर है कि यहाँ से जो जर मुबादला जा रहा है उसमें भी पाकिस्तान की बहुत मदद हो रही है, और ये इसको जारी और सारी रहना चाहिए, और ये जाना सब चीजें कानूनी तरीके से जानी चाहिए, किसी और गैर कानूनी तरीके से भेजने का जो सिलसिला है वो मखल खासियत तक कम भी हो गया है, बस इसको बिल्कुल पूरी तरह खत्म हो जाना चाहिए ताकि जो फायदा पाकिस्तान की हुकूमत को पहुंच सकता है वो जरूर उसको पहुंचना चाहिए।
0: सलीम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे सामान के साथ शेयर किया, इंशाल्लाह पाकिस्तान से भी आपके साथ रहा रहेगा।
1: बहुत मेहरबानी जनाब, सबको सुनने वालों को, देखने वालों को, आपको सबको मेरा बहुत बहुत सलाम अलैकुम।
0: वालेकुम सलाम, पाकिस्तान जिंदाबाद। सामान ये थे मोहतरम सलीम जिया साहब जो के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी, और चूंकि वो खुद अपोजिशन में सारा वक्त उनका गुजरा, स्ट्रगल में वो रहे, اور تعلیمی لحاظ سے آپ نے دیکھا جب شروع میں انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ معیار پہ پورے اترتے تھے اور ڈیزرو کرتے تھے. جو ان کی سیٹ تھی ان کا رائٹ تھا, ان کا رائٹ ان کو ملنا چاہیے تھا. پارٹی نے ان پر کوئی احسان نہیں کیا, پارٹی کے لیے انہوں نے قربانیاں دیں. تو یہاں بھی آپ لوگ دیکھیں جو پارٹیوں میں ہوتے ہیں, یہاں کی جو نیشنل پارٹیز ہیں, جتنی پارٹیاں ہیں, تو جو لوگ پارٹیوں میں ہوتے ہیں اپنے پارٹی کے ساتھ لائل ہوتے ہیں, محنت کرتے ہیں, آگے جاتے ہیں, گراس روٹ سے اوپر جاتے ہیں, تو ڈیفینیٹ پارٹیاں انہیں کو اپنے لیتے ہیں, سینیٹر بھی لیتے ہیں. یہاں کو سینیٹ کا تو نظام نہیں, یہاں تو ایک ممبر آف پارلیمنٹ ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سلیم ضیاء صاحب نے آج سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کو سینٹ میں ہونا چاہیے. قانون سازی یہ لوگ کرتے ہیں, تو پڑھے لکھے ہی لوگ ہی قانون سازی کریں گے, تو ان جیسے لوگوں کو وہاں ضرور موجود ہونا چاہیے. امر راجہ علی اسکر صاحب کے بھی بڑے مشکور ہیں, ان کے یہ مہمان تھے اور ان کا بھی بہت شکریہ. تھوڑی دیر کے بعد ان سے بھی بات کریں گے, چونکہ مہمانوں کے ساتھ وہ مصروف ہے. تو سامعین, انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں. یہ لائیو پروگرام تھا جو خصوصی طور پر آپ کے لیے پیش کیا گیا. ہمارے ساتھ رہیے گا.
2: ایف ایم 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین ناظرین, یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. موسم جو ہے وہ ٹھنڈا ہوتا جا رہا ہے, پتے گر گئے ہیں اور بادل بھی آ گئے ہیں. تو اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسن بخاری شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب, آج کیا لے کر آئے ہیں آپ؟
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم. راجہ فور صاحب, آپ کو, آپ کی ٹیم کو, آپ کے لسنر ناظرین کو, سب کو السلام علیکم. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت ڈنمارک کا موسم تو بہت سرد ہو رہا ہے, بلکہ سردیوں کی طرف, سردیوں کی آمد کہہ سکتے ہیں آپ. ٹمپریچر جو ہے وہ 17-19 کے درمیان ہے, اور اگر تھوڑی سی دھوپ نکل آئے تو اب 20 چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی موسم جو ہے یہ اب جیکٹس وغیرہ پہننے کا موسم آ گیا ہے, اور خصوصی طور پہ جو ہمارے تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہیں, میری عمر کے لوگ ہیں, ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور پھر یہاں پہ کچھ عجب قسم کے وائرس بھی آ گئے ہیں جس سے لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ڈنگی وائرس جو پاکستان میں عموماً سننے میں آتا ہے اور دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو ڈینگی ہو گیا ہے, فرانس اور دوسرے علاقوں میں کافی ڈینگی کے جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں, جس سے یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ کچھ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. یہ ڈینگی جو مچھر کے ذریعے پھیلتا ہے, اور یہ مچھر جو ہے وہ یورپ میں آ چکا ہے. ڈینگی مچھر جو ہوتا ہے, ڈینگی وائرس پھیلاتا ہے, تو اسی طریقے سے ہمیں احتیاط کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ 1 اکتوبر سے ہر جو پینشنر ہے یا جو فوج پینشنر ہے یا وہ جو کوئی بڑی کریٹیکل قسم کی ڈیزیز کے اندر ہیں, جیسے کینسر ہے یا ہائی ڈائبٹیز, ان کو انہوں نے کہا کہ آپ اپنا ٹائم لے سکتے ہیں, شیئر کرا سکتے ہیں کہ آپ کسی بھی جگہ جا کے, تو یہ جو انفلوئنزا کا انجیکشن ہوتا ہے جس کو فلو ہم کہتے ہیں, وہ اور کرونا وائرس کا انجیکشن دونوں آپ لگوا سکتے ہیں, یا آپ دونوں میں سے ایک ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سا ہمیں لگانا چاہیے. دیکھیں, رومرز تو بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی وہ کرونا وائرس یہ کر دیتا, کرونا وائرس کے ساتھ یہ بیماری آ جاتی ہے. میں خود اب 77 کی ایج میں جا رہا ہوں, پر جلد 77 پہنچوں گا, لیکن میں شروع سے ہی کرونا وائرس جو ہے اس کے انجیکشن لگا رہا ہوں. میں مجھ میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی, کوئی اس کے اثرات نہیں ہوئے, بلکہ مجھے کیونکہ میں ٹیکسی چلاتا تھا تو مجھے بعض اوقات وائرس, یہ جو کرونا وائرس ہے یہ لگ جاتا تھا, لیکن وہ زیادہ سے زیادہ ایک دن یا 24 آور سے زیادہ زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 دن تک مجھے تھوڑا سا محسوس ہوتا تھا, اس کے بعد مجھے اپنی امیونٹی کی طرف سے جو میرے اندر وہ طاقت ہوتی تھی اس کی وجہ سے میں سروائیو کر جاتا تھا. میں کسی کو پریشرائز نہیں کر رہا کہ آپ ضرور لگوائیں, لیکن گورنمنٹ نے سب کو جو ہے وہ میل بھی بھیج دیا ہے, ای باکس میں بھی آ گیا ہے, آپ ضرور احتیاط کریں, اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں. پھر جب آپ ٹریول کر رہے ہیں تو سب سے ضروری اس وقت یہ بات ہے کہ आफ्टर ऑल की जो ये जो सर्दियों की छुट्टियां हैं जो जिसको हम कहते हैं पतझड़ का जमाना, उसमें खजान जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो अब अक्टूबर में उसकी छुट्टियां होने वाली हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेवल करेंगे, सफर करेंगे। तो मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा बल्कि मैं गवर्नमेंट के जो असूल है उसकी तरफ से आपको बता रहा हूँ जो कानून है। एक, अगर आप पेंशनर हैं, फोर्टीज पेंशनर हैं, बिफोर टाइम पेंशन आपने ली हुई है, तो आप अपने उड पिटेलिंग डेनमार्क को जो है जो आपका पेंशन का आधार है वो सबका है उसको कहते हैं उड पिटेलिंग डेनमार्क, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें। वो आपको एक, जब आप उनको डेट लिखाएंगे कि हम इस डेट से इस डेट के लिए हम फलानी जगह सफर करके जा रहे हैं, तो वो आपको ई बॉक्स में आपकी छुट्टियों का जो है ऑफिशियल वो भेज देंगे कि इस बंदे ये बंदा जो है ये ऑफिशियल छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा है। उसके ऊपर मुल्क का नाम नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि आपको कितना अर्सा तक बाहर रहने की, इस मुल्क से बाहर रहने की इजाजत है और किस तरीके से। एक पेंशनर जो है जब वो बता के जाता है, जैसे मैं फुल पेंशनर हूं, तो मैं मुझे उन्होंने लिख के भेजा था, मैंने उनको कहा था कि मैं एक माह के लिए जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि तुम्हें 6 माह तक बाहर रहने की इजाजत है विद पेंशन, यहाँ की पेंशन, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वो उर्बे ट्रेनिंग डेनमार्क को फिर बताना पड़ेगा और उसका फैसला वो करेंगे। और ये छुट्टियां जो है ये आपके लिए लीगल है, आपके पास एक बवीस आ जाता है अगर आपको कम्यून पूछती है या कोई पूछता है। इसके अलावा आप जो है बाउ सर्विस, जो आपके लोकल बाउ सर्विस है, आप उसको मेल कर दे, टेलीफोन कर दे। आप ये ना कहेंगे कि मैंने फ्राइडे नाइट को सफर किया तो कम्यून बंद थी, या सैटरडे या संडे को किया तो कम्यून बंद थी, नहीं, आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको टेलीफोन कर सकते हैं, अगर वो टेलीफोन टाइम है तो वो सुनेंगे, नहीं तो मेल पे आप उनको मैसेज कर दें। तो क्योंकि जिस अदारे से आप पैसे ले रहे हैं उनको तो उर्बे ट्रेनिंग डेनमार्क को तो पता है कि आप राइज कर रहे हैं, लेकिन बाउ सर्विस को भी आप बता के जाएं। इसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम से छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये याद रखें कि छुट्टियां तो आपका लीगल हक है, लेकिन आपका ये लीगल हक है कि जब आप इस मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन देनी, वहां पे कानूनी तौर पे आपकी मदद करना इस गवर्नमेंट का, इस मुल्क का फर्ज है। आपके पास येलो कार्ड हो, आपके पास परमानेंट अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन आपके पास अगर खुदा ना हादसा नेशनलिटी है, मेक नो डिफरेंस, आपने अपने जो आपकी बाउ सर्विस है उसको आपने इन्फॉर्म करना है कि हम छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर खुदा ना खासा वहां पे जाकर आपसे कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो आपकी पूरी एम्बेसीज वहां की और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो आपकी मदद करते हैं। ये लीगलाइज चीजें हैं और ये आपको करते हैं। अब पाकिस्तान जो है वहां पे राइजे फुसिकिंग जो है वो कवर नहीं करती, वो राइजे फुसिकिंग इसलिए कवर नहीं करती कि आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर है, और ये इस वजह से है कि कैटेगरी 5 उस पर लागू होती है। हालांकि ग्रे ग्रे जोन से पाकिस्तान निकल चुका है, और ग्रे जोन से निकलने के बाद ये हमारी एम्बेसीज और हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी वजह से यहाँ पे ये केस पुट अप नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस पे आवाज उठाई जा रही है, कम्युनिटी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप अपनी छुट्टियों पे अपनी इतला करके जाए ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी मुल्क में आ जाती है, एग्जाम्पल आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप बता कर नहीं जाते और वहां पे आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, आप काम पे नहीं आ सकते, आप फंस गए, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है डेनमार्क के अंदर। लिहाजा जब आप बता कर जाएंगे तो डेनमार्क से वहां जाने पे ये गवर्नमेंट जो है एम्बेसी जो है वो आपकी फुली मदद करेगी, बजाय आप वहां जाके ऑल फॉर बके और ये कह दियो ओ जी स्कूल मुझे तो समझ नहीं आई मैं कानूनी। हम आपको बता रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लीगल बताकर जाना आपका राइट्स है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और अगर आप कम्यून से सोशल ले रहे हैं या आप ऑफिस लूस है फिर भी आपका राइट है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं और आप उनको बताएं वो आपको छुट्टियां देंगे और उन छुट्टियों में आपको बकायदा पैसे मिलेंगे। जी राजा साहब।
0: शाह साहब आपने तो सारी मालूमात दे दी। तो शाह साहब ये जो हमारे सिटी काउंसलर साहिबान होते हैं जिस जिस कम्यून में बैठे होते हैं, मैं कोपेनहेगन की बात करूंगा, फ्रेडस्पिया की बात करूंगा, तो ये लोग क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते? जब ये इलेक्शन आते हैं तो ये माशाल्लाह सारे एक्टिव होते हैं, सब जो पाकिस्तानी नसाद जो डैनिश भी हैं और उनके पास परमानेंट अपर शलालसा भी है, ये सारे लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, क्या बात है शाह जी?
3: राजा साहब अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। आप रेडियो पे ले लेते हैं हम लोगों को आपके थ्रू, आप हमें मुझे कहते हैं और हम एक दो बंदे हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हैं, लेकिन अगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सवाल जवाब नहीं करते, लोग आपको लिखते नहीं है कि हमें ये कानून के हमारी रहनमाई फरमाए, तो यहाँ पे इतने ज्यादा फैसिलिटीज हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनको हम इंजॉय कर सकते हैं, जिनको हम सही मायने में उनको लेके चल सकते हैं। बाकी रहा ये काउंसलर्स और ये जो ये लोग एक पोस्टर हैं, ये बस आते हैं कि हमें हमारी तस्वीर आ गई, हमारा पोस्टर लग गया कि हम काउंसलर बन के हमें हम जी बहुत हायर एजुकेटेड हैं। हमने ठीक है जी आपको मुबारक हो, आप बहुत हायर एजुकेटेड हैं, मेक नो डिफरेंट, अच्छी बात है आप और हायर एजुकेटेड हो, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों को आकर आप खुद दे कि आपकी कम्यूनों के, क्योंकि हम बारहा पिछले 8-9 साल से आपके रेडियो पे ये बकायदा बता रहे हैं लोगों को कि हर कम्यून के अपने अपने जो आवाम है आप जो उस इलाके में रहती है उसके लिए डिफरेंट कानून है, उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाई हुई है और आप उनको कैसे चलाते हैं, फिर ये इनका काम है आकर बताना। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है कम्यून के अंदर और आपकी रसाई वहां तक नहीं हो सकती तो फिर आप इन काउंसलर से बात कर सकते हैं कि भाई प्लीज आप हमारी मदद करें। अब काउंसलर जो हैं वो अपना काम करते हैं, प्राइवेट जो जॉब वगैरह करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए कोई प्रोग्राम, कोई अगर कोई इनकी अपनी जो छोटी सी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर कोई बहस मुबासा, तो ये खुद पूरी वो चीजें पढ़ के नहीं गए होते, वो बजट को इनको पता नहीं होता, ये जाते हैं और मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते जी हमने बस ये हाँ हाँ कर दी। तो हालांकि जो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं वहां पर बोलते हैं और ये बस साइन करके आ जाते हैं, तो ये आवाम को क्या बताएंगे, ये तो फोटो सेशन के लिए आते हैं और फोटो सेशन कराते हैं।
0: एनवायरनमेंट होती है कि अगर आपने यहाँ डेनमार्क की सियासत ही नहीं करनी, लोकल जो सियासत होती है बड़ी पावरफुल सियासत होती है, यहीं लोकल जो है लीडर बनते हैं, यहीं से पार्टियां टिकट देती हैं, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट इस तरह का ना हो, हमारा इंटरेस्ट जो है पीछे की तरफ हो, तो हम जो है वो ऐसे लोग आ जाते हैं, वो उन्हें जाहिर है कि एक जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, खाना मुफ्त होता है, तो शाह साहब इससे तो बड़ी कोई अयाशी नहीं है, जबकि हमारे बच्चे यहाँ हैं, इन्हें यहाँ पढ़ते हैं, इन स्कूलों में जाते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, इन्हें तो यहाँ की सियासत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए।
3: राजा साहब आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है, इन सियासतदानों को मैं क्या करूं? मैं तो इनको दावत देता हूं आओ मेरा सर पाड़ो, मुझे मारो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मेरे दांत दारा तोड़ो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मैं बूढ़ा आदमी हो गया, मुझे समझ आए कि अब जवान लोग मुझे मार। देखे पिछले 25-30 साल से जब से इनवादा के जो कानून जो है सख्त हुए हैं उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो विद फैमिली जो हैं वो ग्रीन कार्ड पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स की और बड़े बड़े साइंटिस्ट की शक्ल में वो डेनमार्क में आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना, हम अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, ब्लड रिलेशंस को यहाँ बुला सकते हैं डेनमार्क के अंदर विजिट करने के लिए, ना ही हम अपने बच्चों की शादियां जो है वो अपनी मर्जी से वहां पे कर सकते हैं। ये जो ब्लडर कर रहे हैं, इसकी वजूहत जो है ये हमारे कौंसलर हजरात हैं, क्योंकि हम इनको वोट देते हैं और ये कहते हैं जी हमारी बिरादरी। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पे मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं, मसाजिद जो है वो फिरकों की अलामत होती है, और उसके अलावा यहाँ पे बिरादरी इज्म जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, और गांव के अंदर और ये फलाने पिंडा अस्तफार अल्लाह ताला मुझे माफी दे, मैं अल्लाह ताला से माजरत करता हूँ और माफी मांगता हूँ और उन लोगों से माजरत करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि ये फलाना कमी है, फलाना ये फलाने पिंड है, ये फलाना फलाने का, मैं बड़ा बड़ा चौधरी हूँ, पीछे चौधरी साहब के पास उस वक्त मजी बिस्तरा ही ना होता हो, लेकिन पैसा जब आ जाता है तो फिर सब चौधरी बन जाते हैं। तो बात असल में यह है कि हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम में सबसे बड़ी इस्लामी तलीमात में यह है कि हम सब बराबर हैं और सब कलमा गो हैं, हमें किसी को ये काम नहीं देना चाहिए।
0: यहाँ तालीम मुफ्त है, हर चीज जो है वो पढ़ने यूनिवर्सिटी तक की तालीम मुफ्त है, तो किस तरह बच्चों को जो है, बच्चे पढ़ते भी हैं जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा नाम है बच्चों का, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, गो के किसी भी महकमे में चले जाएं, हमारे बच्चे बड़े काबिल हैं, गैर मुल्की बच्चे बड़े काबिल हैं। शायद सब कौन सी गाइडलाइन दी जाए कि जब 70-71 वाले लोग आज वही कुछ बनाना चाहते हैं जो 70-71 में आए थे, हमारी तरह बनो।
3: जब तक हम अपने कलमा को भाई को अपने बराबर का स्टेटस नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है। जब तक हम किसी को कमी और ये कहिए ये फलानी नस्ल का, ये फलानी नस्ल का, जब तक हम इस चीज में, ठीक है अगर कोई बंदा शराबी है, नशा करता है, उसके अंदर कोई बुराई है तो एक वो अकेला सब्जेक्ट है, उसके आप दूर है, एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है, या कोई पीछे कोई बेचारा जूतियां सी रहा था या कपड़े सी रहा था, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो दर्जी है या क्या था या नाई था, उसको इसके पेशे पे मत जाए, ये देखिए कि उसके अंदर खानदान कौन सा है, उसका खून क्या है, उसके दूसरे लोग क्या करते हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि मैंने खुद लोगों को देखा है गुजरात शहर के अंदर, जिस मोहल्ले से मैं आया हूँ वहां के बहुत बड़े लोग ऐसे थे जो कि टूटे हुए मकानों में रहते थे, लेकिन बाद में उनके बच्चों ने एजुकेशन हासिल की और उन्होंने टॉप में पाकिस्तान के वो लोगों में शामिल हुए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जो मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ते थे, उनमें से मेजोरिटी जो है उन्होंने बड़ी बड़ी जॉबें की। तो कभी किसी की ये नहीं देखना चाहिए कि क्या था, मेरा बाप जो था मेरा बाप था, मेरा दादा जो था वो उनकी अपनी पोजीशन थी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ के मैंने क्या किया, मैंने डेनमार्क के अंदर सारी उम्र टैक्सी चलाई और सियासत की और लोगों से बातें की।
0: तो क्या इसका मतलब, आपको बहुत तजुर्बा है, ये जो टैक्सी के मामला था, लोग बड़े खुश है, उनको जो नई टैक्सी ब्रांच चली है खुली है तो लोग परमानेंट जॉब करते हैं, महीने के महीने उनको तनख्वाह आ जाती है, अगर खुद भी माल अपनी टैक्सी है तो फिर भी वो अपनी 2-3 घंटे चला लेते हैं, तो शाह साहब ये जॉब अच्छी नहीं है?
3: ये बिल्कुल जॉब करना ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बता दूं कि अब क्रिसमस के बाद, दिसंबर के बाद, जनवरी फरवरी सबको पता है कि ये सबसे बुरे तीन महीने होते हैं एक कैब ड्राइवर के लिए, एक लोगों के पास, क्योंकि दिसंबर का महीना वो क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए वो इंतहा से ज्यादा अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसको यूज कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो फिर लोग जो है वो इन पे सफर नहीं करते, कोई मजबूरी के आलम में हो तो वो सफर करता है, तो वहां पे इनकम जो है कम हो जाती है और ये अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो नई टैक्सी आई है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप 29-30 हजार आपको वेज मिल रही है उसमें से आप टैक्स दें और फिर आपको कंपनी जो है वो आपको एज ए ड्राइवर जो है वो रख रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी जो आपको वो टूर देंगे उस पे आपने टूर लेने हैं, इसमें आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपको जहनी तौर पे ये नहीं कह रहा कि आज पूरी दिन में से आपने 1000 करोड़ बनाया, वो ये तो आप तो आपको तो अपनी तनख्वाह से है और तनख्वाह आपको मिल रही है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 7.5 घंटे जो है आपने काम कर रहे हैं उसके अंदर आपके जो है वो लंच ब्रेक वगैरह भी सब कुछ है, तो ये चीजें जो है ये ज्यादा महफूज है क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे टैक्सी बिरादरान का सबसे बड़ा खुद कसूर है। जब हमने इनको 2017 में ये कहना शुरू कर दिया था कि खुदा रहा इस चीज को आप आगे लेके ना जाए, इसको यहीं पर स्टॉप कर दे और अपनी गवर्नमेंट जो है इसको बचाए, लेकिन इन्होंने क्या किया उस वक्त, इन्होंने कहा कि ये जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर शाह साहब बैठ के झूठ बोलते हैं और ये बस ऐसे ही बेकार करते हैं और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमारी वोमैनशिप छीन नहीं सकता, हम लोग महफूज हैं, हम लोग महफूज हैं। तो आज ये है कि कोई भी वोमैन नहीं है, कोई भी वोमैन जो है उसका स्टेटस जो है वो डेनिश जबान के अंदर वो एक आम गाड़ी का मालिक है, आम गाड़ी का जिसको इजाजत दी गई है टैक्सी चलाने की, जिस तरह ऊबर जो है वो इजाजत देती है कि भाई आप जो है आपके पास एक आम गाड़ी है तो आए हम आपको उसको एज ए टैक्सी चलाने की इजाजत देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये की है और ये इसलिए उन्होंने ओपन कर दिया हर चीज और इससे लोगों को।
0: शाह साहब एक बात सुनने में आ रही है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज हो सकती है कि मियां मुनीर साहब जो हैं वो फोरमैन रहे टेक्सा ब्रांच के, तो वो सुना है कि वो भी अपनी जो है वो गाड़ी वापस करने जा रहे हैं।
3: जी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां वापस कर दी हैं और बहुत बहुत सारे लोग जो हैं वो सोच रहे हैं क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि गाड़ी के जो खर्चे हैं 30-35 हजार करोड़ का जो खर्चा है मंथली गाड़ी का वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप इतनी मेहनत करें और अपनी अपनी तनख्वाह भी ना निकाल सकते हो तो कोई भी आदमी जो है जो सेंसेबल आदमी है वो इस चीज को नहीं देखेगा। और दूसरा ये चीज है कि आप देखें कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की और मिलियन मिलियन करोड़ की गाड़ियां थी, अब उनकी रीसेल वैल्यू को नहीं रही क्योंकि यहाँ पे तो अब नई गाड़ियां जो है अब आपने आप देखे कि चाइना ने मैं इसी हफ्ते में गया हुआ था चाइनीज गाड़ियां देख रहे, उन्होंने स्पोर्ट मॉडल और इतनी इतनी खूबसूरत गाड़ियां निकाल दी है जो 3 लाख से शुरू हो रही है इलेक्ट्रॉनिक और 3 लाख से शुरू हो रही है और उनके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज है, हर एक चीज है। तो ये चीजें जो है ये होश ज्यादा से ज्यादा सस्ती गाड़ियां आ रही है, लाख तक करोड़ में आप गाड़ियां छोटी से छोटी जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप ले सकते हैं। तो ये गाड़ियां जो है अब सड़कों पे आ गई है और लोग अगर लेते हैं गाड़ियां, मेरे अपने बच्चों ने रखी हुई है, तो ये गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो फिर बैटरी जो है जब उसकी गारंटी खत्म हो जाती है तो फिर सबसे महंगी जो चीज है वो 1 लाख से ऊपर की जो बैटरी है वो जो है वो प्रॉब्लम करती है बंदे को, क्योंकि जब आप कारोबारी नहीं करते, आपके पास इतना बड़ा कारोबार नहीं है, आपके पास थोड़ा सा दो 1 लाख करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो बैंक आपको कभी भी नहीं देगा अगर आपके पास सरमाया है
0: तो। शासन भाई आपकी गवर्नमेंट मदद नहीं करती, सब्सिडी नहीं देती,
3: कोई मदद नहीं जी। गवर्नमेंट जो है वो वसूल करने के लिए बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो आपको चेक में देती है, गवर्नमेंट जो
0: तो
3: है
0: शाह साहब शहर में पार्किंग ही नहीं है, लोग घूमते रहते हैं, जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कितनी बड़ी लेनी है कितनी छोटी लेनी है, शहर के अंदर स्पीड जो है वो 30-40 तक हो गई है, तो गाड़ी की बड़ी गाड़ी की कोई पाबंदी नहीं, हर गाड़ी का मीटर 220-250 तक चला जाता है, तो शाह साहब ये पाबंदियां क्यों नहीं लगती?
3: देखिए लग रही है सारा कुछ हो रहा है, अब पहले 1 करोड़ की होती थी इनकी कोई वोल्टेज इलेक्ट्रिक गाड़ी की, अब डेली अखबारों में आ रहा है कि 4.5 से जो है 5 तक चली गई है और दिन के मुख्तलिफ औकात में जो बिजली है वो महंगी हो जाती है फिर सस्ती। ये एक एक किस्म की इन्होंने लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी ये कर लिया कि कमाई कराने करने का तरीका क्या है, पेट्रोल को महंगा कर दो, इलेक्ट्रिक को महंगा कर दो, कुछ चीजों में आप लोगों को छूट दे दो, फिर दूसरी जगह से आप पैसे पैसे जो है वो गवर्नमेंट अपने ले लेती है। तो ये जो मसाइल है गवर्नमेंट अपने अपने
0: टैक्स का निजाम है, फिर सहूलियात भी मिलती हैं, देख लेना सोशल की सहूलियात होगी, इसी तरह बूढ़ों की सहूलियात होगी, गाड़ियों की सहूलियात होगी, अस्पतालों की सहूलियात होगी, शाह साहब ये तो टैक्स से निजाम चलता है।
3: देखिए जी, टैक्स का निजाम जो है वो बड़ा ही गंभीर और गलत टैक्स सिस्टम है। यहाँ पे जो अरबपति हैं, जो करोड़पति हैं, अगर वो फ्रॉड करना लगे तो उनको करोड़ों अरबों का फ्रॉड कर जाते हैं और उनको टैक्स वाले नहीं पकड़ सकते।
0: फिर जो सजा भी देता है, इससे बच को नहीं सकते।
3: नहीं, वो सजा जो है ज्यादातर उन लोगों को मिलती है जो थोड़े थोड़े पैसे की का हो जाता है, जो कोई मजदूरी कर रहा है अगर उसका।
0: तो ऑन द होल इसका हाल बताएं, आपके पास 80 साल 50 साल तजुर्बा है तो हमारे पास 2 मिनट है, हाल बताएं।
3: टैक्सी का
0: जो सारा निजाम, इसका हल बताएं हमें क्या करना चाहिए।
3: सबका हल ये है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं तो आपको राइट हासिल है कि आप हर साल अपनी कम्यून के अंदर जाएं, आप उनको कहें कि जी मेरा कोबरा जो है, इसको कोबरा कहते हैं, आप मेरा जो है फाइनल जितना मैंने टैक्स दिया है, क्या आप आवेश की वो हो, क्या आप नॉर्मल टैक्स पेयर है, तो आप वो अपना रिकॉर्ड निकलवाएं और उस उसको जो है आप जो है उस पर देख सकते हैं कि आपने कितना टैक्स दिया है, या आपके आवेश की वो ने कितना आपका टैक्स दिया है, क्या वो जायज है, क्या आपको इस साल जो है टैक्स किसका देना है, उस पे आप टैक्स ऑफिसर से बात कर सकते हैं। और अगर आप आवेश की वह हैं तो आप ये देख सकते हैं कि क्या जायज टैक्स आपने पे किया है या कोई नाजायज आपसे लिया जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे पिछले 30-40 साल से ऊपर जो टैक्स का मिनिस्टर है इस वक्त, उन्होंने खुद ये बयान दिए हैं और इसी तरीके से लिबरल अलायंस और दूसरों ने कि बड़ा शोर डाला है इस बात पे कि टैक्स के अंदर बहुत सारे होल्स हैं और बहुत सारे लोगों को के कारोबार जो है वो छीने गए हैं, बाद लोगों ने बहुत ज्यादा।
0: तो शायद ये जो टैक्स का निजाम जो करते हैं जिसे रिवीसा कहते हैं, तो ये एक महीने के कितने चार्जिंग लेते हैं?
3: देखे जी, रिवीसर भी दो तीन किस्म के हैं। एक रिवीसर है जो मैट्रिक करता है या फर्स्ट ईयर अपना जिमनेजियम करता है और उसके बाद वो रिवीसर बन जाता है कोर्स करके। एक जो सही रिवीसर है वो होता है अपना स्टेट रिवीसर, और स्टेट रिवीसर जो है वो इतने महंगे होते हैं, वो करते हैं बड़ी बड़ी फर्मों के लिए काम, और हमारा आम आदमी जो है वो स्टेट रिवीसर के पास जाने को सोचता ही नहीं। हम जितने भी रिवीसरों के पास जाते हैं वो असल में रिवीसर नहीं होते, वो झूठ बोल रहे होते हैं, वो होते हैं बुक फेयर करने वाले, यानी जैसे हम अपनी जबान में कहते हैं जी मुंशी, के हमारे मुंशी ने ये हिसाब किताब लिख दिया, वो माजरत के साथ वो असल में मुंशी होते हैं, उनके पास इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो आकर वो ये कर सकते हैं काम कि वो टैक्स को लिख सकते हैं कि भाई मुझे जो
0: कभी कभी इश्तियार भी हमारी नजरों से गुजरता है कि आपको एक जो रिवीजर की जरूरत है, हम 600 करोने में 500 करोने में आपका महीने का हिसाब किताब किया करेंगे।
3: ये गलत चीजें हैं, इससे इंसान धोखा खाता है, वो एक किस्म के मुंशी होते हैं, और माजरत के साथ मैं इनसे, क्योंकि ये हकीकत है डेनिश कानून के अंदर, मैं खुद इस कानून को जानता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, जो स्टेट रिवीसर होता है वो असल में वो बंदा होता है कि जो टैक्स वालों को लिखता है कि जो चीजें मेरे सामने मेरे क्लाइंट ने रखी है, जो पेपर उसने मुझे सबूत दिया है, उसके मुताबिक जो कुछ मैं लिख रहा हूँ और ये मेरे हाथ से निकल के गया है, इसका मैं हल्फन जो है वो मैं इसको सही समझता हूँ। लेकिन जो छोटे रिव्यूसर होते हैं वो लिख देते हैं जी कि ये चीजें जो तो मुझे उसने प्रोवाइड की थी वो मैंने लिख दी, वो इसको अपनी जिम्मेवारी नहीं समझता, वो कहता है कि जो मेरे क्लाइंट ने मुझे दिया वो मैंने लिख के आगे कर दिया। लेकिन जो पढ़ा लिखा स्टेट रिव्यूसर है वो कहेगा कि नहीं, मैं जो तो गलत पेपर है वो मैं कभी भी नहीं लिखूंगा, मैं उन चीजों को लिखूंगा जिनके पास तुम मुझे सबूत के तौर पे दोगे और जो पेपर होगा मटेरियल वर्क
0: तो
3: होगा।
0: शाह साहब, इससे साबित हुआ कि कानून का एहतराम करना चाहिए, कोई मुश्किलात नहीं आती।
3: बिल्कुल, आप कानून का एहतराम करें, फिर कानून भी जो है अगर उसके अंदर कोई ऐसी गलती आ जाती है तो वो कानून जो है वो रिवर्स होकर आपकी इमदाद को भी खड़ा हो जाता है। इसीलिए हम लोगों को ये कहते हैं कि देखो ये जो कानून बना रहे हैं पार्लियामेंट में, आप इसकी तरफ ना जाएं, बल्कि आप उसको देखें जो आईन है, आईन के खिलाफ अगर ये कानून बने हुए हैं तो आप उसको कहीं भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप ऐसी वायलेशन ना करें कि जिससे आप कानून की गिरफ्त में आ जाएं। और अगर आप खुदा ना खास्ता आ गए हैं और ये झूठा ब्लेम है तो फिर आप आपको उसकी
0: कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। शाह साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया, आपने मालूमात दी। सामान्य नाजरीन हमारा किसी से मुतफिक होना ज़रूरी है, लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह वो फरमा रहे थे कानून कायदे का एहतराम करें तो मुश्किलात आपके सामने नहीं आएंगी। अगर कानून से कहीं

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।

0: ये रेडियो आपकी आवाज है, इसको आपके सुनने के लिए बनाया गया है, आपकी समातों को तस्कीन देने के लिए। सो रेडियो आपकी आवाज सुनते रहिए ताकि आप अपने मुल्क और अपनी जबान से जुड़े रहें।
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदर आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर रास्ता आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समाइन, आपको आपने बताया था कि आज हमारे स्पेशल मेहमान होंगे जो कि हमारे सिटी काउंसलर, आगे तो हम सिटी काउंसलर नहीं कहते थे, आज इनको सिटी काउंसलर कहा जा रहा है। ये आज़ाद ग्रीन पार्टी के सिटी काउंसलर हैं और हाल ही में मुंतखब हुए हैं और उन्होंने टाउन हॉल में अपनी सीट जो है वो ले ली है, उस सीट पर अब बैठते भी हैं। सबसे पहले तो अशम, आपको मुबारकबाद देते हैं सिटी काउंसलर बनने की।
3: जी, बहुत शुक्रिया अंकल, आप सब लिसनर को मेरी तरफ से सलाम।
2: आज एज ए सिटी काउंसलर प्रोग्राम तो हम वैसे करते रहते हैं, जो आज जो लाइव प्रोग्राम है हम इसी तरह कर रहे हैं जिस तरह पहले किया, किसी ज़माने में किया करते थे। तो आपको कैसे लगा
3: अंकल? आप कह रहे हैं तो मैं थोड़ा बहुत रियलाइज कर रहा हूँ कि वाकई जो हमने 6-7 साल की मेहनत की है उसका मुझे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रहा है इन मैंडेट। तो बहर वैसे इतना कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि शुरू से मैं काफ़ी करीब साथ साथ काम कर रहा था सिकंदर भाई के साथ, तो ये हमारा एक ही मैंडेट मतलब हम सबका है, तो ऐसा मुझे कोई डिफरेंस नहीं फील हो रहा।
2: क्योंकि इतने सालों से आप काम करते रहे, वाकई आपको जो है फील नहीं होता, लेकिन नए लोग हैं, इन्होंने आपको किस तरह वेलकम किया?
3: जी अंकल, अगर आपने क्या मैं डेनिश मीडिया में देखा होगा तो काफ़ी ज़्यादा क्या मैं आप समझ ले एक के रोलर कोस्टर राइड रहा है, क्योंकि जो मेरा इंट्रोडक्शन था वो एक तरफ से थोड़ा बहुत कंट्रोवर्शियल भी था, क्योंकि ये जो सिकंदर भाई का जो केस जो चल रहा था ये काफ़ी महीनों से क्या मैं आगे पीछे जा रहा था, एंड काफ़ी ज़्यादा खासकर जो डेनिश सिटीजन थे वो काफ़ी इन्वॉल्व थी इस केस पे, तो उस पर जब फैसला आ गया था एंड हमने प्रोसेस में आगे जाना था जहाँ मैं इंट्रोड्यूस हो रहा था सिटी काउंसिल में, तो वहाँ काफ़ी जो हमारे करंट मेंबर्स है सिटी काउंसिल के उनके काफ़ी डिफरेंट ओपिनियंस थे उस पर। तो ठीक है, हमने क्या मैं अपना काम करना है, हमने अपने लोगों को देखना है, तो इस मोटिवेशन को लेके हम चल रहे हैं। बहरहाल
2: चलें, बजट तो बन गया, बजट जो अभी तक पास नहीं हुआ, तो पास क्यों नहीं हो रहा?
3: अंकल अभी ये सेकंड पहलिंग पे क्या हमने बजट पे काम करना है, ये 1 अक्टूबर को होगा जहां हम भी क्या मैं अपना वोट डालेंगे, तो जो स्पेसिफिक्स है वो बजट की वो अभी फाइनलाइज नहीं हुई, लेकिन ओवरऑल एक जनरल पिक्चर कवर हो गया है।
2: आपको क्या लगता है, कोई हमारे हक में, या हमारे हक से मुराद है गैर मुल्कियों की बात करूं, कोई खास है? दांतों के हवाले से पार्टियां कह रही थी फ्री करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, या खाली सियासी नारे थे?
3: अंकल अभी क्योंकि इस बार हमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने का मौका नहीं मिला, और हमने काफ़ी ज़्यादा क्या मैं रिक्वेस्ट एंड रिक्वायरमेंट्स दी हैं क्या हम जो हम चाहते हैं कि बजट में का एक मेन हिस्सा हो, अनफॉर्चुनेटली वो क्राइटेरियाज मीट नहीं हो पाए, तो इसलिए क्या मैं सिकंदर भाई ने भी क्या मैं अपना स्टेटमेंट दिया था बजट का, एंड वो एक्चुअली वो जो बजट के जो फाइनलिंग है वहाँ से वो निकल गए थे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बड़ा चेंज आएगा इस बार, लेकिन ये क्या मैं सिटी काउंसिल पीरियड का अभी शुरुआत है, पहला क्या पुशेट फॉर हैंडलिंग है, तो मुझे लगता है कि ये भी आराम आराम से करना चाह रहे हैं, एंड जब इलेक्शन के करीब होंगे तो फिर आप वहाँ आप भरे चेंजेस उस वक्त देखेंगे।
2: जिस तरह सिकंदर कह रहे थे, आपके पार्टी के जो चेयरमैन हैं वो कह रहे थे आप अगला इलेक्शन जो है कोपेनहेगन कम्यून से लड़ेंगे और वो खुद पार्लियामेंट का लड़ने जा रहे हैं, ये बात कहाँ तक दुरुस्त है?
3: अंकल एम्बिशन तो हमारा हमेशा कि हम पार्लियामेंट का रहा है, एंड अभी हमने क्योंकि लास्ट इलेक्शन हमारा कम्यून का कुपमेक में हुआ है, तो हमने काफ़ी अच्छी तरीके से क्या हम एक नेटवर्क बना लिया, काफ़ी अच्छी तरीके से हम जो यहाँ के लोगों के इश्यूज है वो हम समझ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये यही है कि हमारे लिए एक ज़रूरत बन गई है कि हम पार्लियामेंट लेवल में भी हम कम्यूनिटी की आवाज़ को हम बुलंद करें। तो अभी बहरहाल क्योंकि ये काफ़ी एक डिफिकल्ट टाइम रहा है जो ट्रांजिशन रहा है मेरा सेकंड भाई का, तो हमने अभी इस पे थोड़ा बहुत फोकस करना है। तो इंशाल्लाह जब ये स्टेबल हो जाएगा तो हम पार्लियामेंट इलेक्शन के भी तैयारी शुरू कर लेंगे।
2: पार्लियामेंट के इलेक्शन, कम्यून्स के इलेक्शन तो टाइम पर होते हैं, पार्लियामेंट का तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए साइन भी ज़रूरी होते हैं। क्या इसके अलावा भी बंदा इलेक्शन लड़ सकता है?
3: तरीके होते हैं लेकिन बेस्ट वे तो यही है कि आप क्या मैं ऐसे पार्टी आप सिग्नेचर्स इकट्ठे कर लें। हमने क्या मैं लास्ट इलेक्शन में भी देखा है कि जो हमारे भाई राशिद अली हैं उन्होंने भी क्या मैं इलेक्शन लड़ा था मतलब वो पार्टी के बगैर। तो ये तरीके का पॉसिबल है लेकिन ये है कि जब आप फिर इस तरीके से इलेक्शन लड़ते हैं तो आपके लिए बहुत बहुत बहुत मुश्किल होता है कि हम एक सीट जीतना। आपको मुझे लगता है 20,000 वोट्स से ज़्यादा आपको चाहिए ये सीट हासिल करने के लिए।
2: तो राशिद अली क्या वापस आ रहे हैं या कोई नई पार्टी ज्वाइन कर ली है?
3: जी उनका मुझे नहीं पता लेकिन बाहर मुझे ये पता है कि वो एक्टिव है अभी भी क्या हम पॉलिटिक्स में।
2: तो अशम आपसे बात करेंगे, अभी आपने जो तैयारियां की हैं, ज़ाहिर है अभी आपके पास काफ़ी टाइम है सीखने के लिए भी, और आपको वैसे भी काफ़ी काम आपने पहले भी सीखा हुआ है, पार्लियामेंट में थे तो आप देखते रहते थे आपको, आप अपना काम करते हैं, ऑफिस वर्क आपका A1 होता था। लेकिन अब बहुत सारे उम्मीदवार हैं, अगर देखा जाए गैर मुल्कियों में, गैर मुल्कियों की जो आवाज़ उठाती है वो सिर्फ आप ही की
3: जी
2: पार्टी है, बाकी तो इलेक्शन जीतने के लिए सोशल डेमोक्रेट भी बात करती है, रेडिकल वेंस्टा भी बात करती है, SF भी बात करती है, और जमातें
3: जी
2: भी बात करती हैं, तो खुल के जो मुखालफत करती है वो तो डेनिश पीपल्स पार्टी करती है। आप क्या कहेंगे?
3: जी अंकल बहुत शुक्रिया आपने ये क्या हम सवाल उठाया क्योंकि बेसिकली मेरा यही कंसर्न रहा है एज ऑफ रिसेंट। क्योंकि अगर आप कल परसों देखें एक कहानी निकली है काफ़ी क्या हम अखबारों में जहां वो कह रहे कि फकीर खान का नया बंदा अशम आगे नदीम ने ये कहा है कि क्या मैं अरेंज मैरिज एंड फोर्स मैरिज दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि डेनमार्क में हमारे जो माइनॉरिटीज खासकर मुस्लिम जो कल्चर के लोग हैं इनकी ये प्रैक्टिस है कि वो अरेंज मैरिज प्रेफर करते हैं एंड बच्चों को भी अक्सर कि हम इस चीज़ में ज़्यादा आसानियाँ वो देखते हैं। तो मैंने बस ये कहा कि कोई रेसिस्ट पॉलिटिशियन कहते हैं कि ये दो चीज़ें एक है इसको ख़त्म कराने के लिए कि फिर डेनमार्क में अरेंज मैरिज का मौका ना हो। और मैंने बस यही कि हम आगे कहा है कि ये कि हम अच्छी बात नहीं है इसमें कोई क्या गलत काम नहीं होता कि आप प्लीज़ इन लोगों को अलाउ करो ये करने के लिए। लेकिन इस पे मुझे बहुत शदीद क्या मैं क्रिटिक्स हुए हैं ना सिर्फ क्या मैं रेसिस्ट पार्टियों से जो राइट विंग पार्टीज है लेकिन जो लेफ्ट विंग पार्टीज है ये भी कह रहे कि इसको हमें अलाउ नहीं करना चाहिए। गारिकेल वेंसन ने कहा है, इनस लिस्ट ने भी क्या हम इस चीज़ पे काफ़ी क्रिटिकली उन्हें देखा है। अब मेरी सिर्फ ये क्या हम कंसर्न है कि जो पार्टीज हम नॉर्मली हम इनको वोट देते हैं अगर वो ऐसे एक कॉन्सेप्ट जैसे अरेंज मैरिज को ख़त्म कराना चाह रहे हैं तो फिर क्या मैं हमारे लिए क्या रह गया अंकल आप मुझे बताएं।
2: इन स्टेशन की आप बात करते हैं तो एक दफ़ा उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस वक्त की जो फोरमैन थी, बाद में वो सोशल डेमोक्रेट में चली गई, तो अब लॉर्ड मेयर भी रहीं, तो अब गालिबन उन्होंने सियासत छोड़ भी दी है, तो वो तो एक ज़माने में कहती थी जब ये सवाल किया गया अरेंज मैरिज के मुतल्लिक, तो वो कहती या हा ली क्लास, मुझे कोई परवाह नहीं है, कुछ 10 शादियाँ करे, 5 करे, 3 करे, 2 करे, अपनी मर्जी से करे, मैं बिल्कुल बलैना नहीं करूँगी।
3: अंकल होना भी ऐसे चाहिए ना कि हम आप कि हम ओपन रहे दूसरे लोगों के कि हम प्रेफरेंस के लिए एज लॉन्ग एज आप कोई किसी के साथ ज्यादती ना करें कोई क्रिमिनलिटी ना करें तो हमें फिर क्या हम अपने आप को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आज वो ये कह रहे हैं कि क्या मैं हम अरेंज मैरिज के जो कॉन्सेप्ट है इसको क्या हम बैन करना चाह रहे हैं। कल वो किसी के हिजाब के बारे में बात करेंगे या तो वो फिर कहेंगे कि आप
2: नहीं, आजकल
3: मस्जिद को
2: कोई
3: भी हमने
2: अरेंज
3: बंद
2: मैरिज
3: कराना
2: हो रही है, आप
3: पड़ेगा
2: तो कभी भी किस तरह की डिबेट हमने नहीं सुनी,
3: जी
2: आजकल कोई अरेंज मैरिज हो रही है, हमें तो अभी आज दिन तक हमारे पास तो कोई इतला नहीं है।
3: नहीं, ये पिछले 2-3 दिनों से मैं अंकल आपको आर्टिकल्स भी सेंड कर लूंगा, काफी ज्यादा क्या मैं खबर आई है इस चीज के बारे में
2: इस पे
3: मेरे साथ
2: रेडिकल
3: एसोसिएट
2: इंस्टा
3: है
2: क्या कहती हैं, सोशल डेमोक्रेट क्या कहती है, ये दूसरी पार्टियां क्या कहती हैं?
3: जी। आप यकीन करें कि एक जो विंस्का का जो मेयर है आमसोस पर मिस्टर ल्यूटकन, उसने कहा कि मैंने कभी इतना क्या मैं क्रेजी बात नहीं सुनी। मतलब उन्होंने अपना ये इशार किया कि ये हमारे सोच में भी नहीं हो सकता कि हम इस चीज को अलाउ करें। तो अब मसला ये हो गया कि ये एक कहानी बन गई है, अब हम हमें अगले मीटिंग में देखना पड़ेगा कि वो इस पे एक्चुअली कोई काम करना चाहेंगे इसको खत्म करने के लिए, या वो एवं क्या मैं मीडिया के लिए ये बात कर रहे हैं। और अगर खेल विंसन ने भी कहा कि ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते, एंड इनोसलिस ने भी कहा है।
2: अशम क्या बात है, रेडिकल विंस्टा तो गैर मुल्कियों के हक में बड़ा बोलती है, जब वक्त आता है तो उसके बाद वो अपनी सीट लेकर फिर वो भूल जाते हैं, मुआहदे कर लेते हैं, पार्टियों के साथ मिल जाते हैं।
3: अंकल अगर अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन यही है कि कई ऐसे पार्टीज हैं जो हमारे वोट्स के लिए काफ़ी कुछ कह जाते हैं, लेकिन इसेंशली कि हम पार्टी के जो स्ट्रक्चर में वो ये अलाउ नहीं करते कि वो हमारे लिए काम करें। अभी जैसे ये अरेंज मैरिज वाली बात हुई है, एक दूसरा एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ कि पार्लियामेंट में रिसेंटली इन्होंने ये क्या बिल क्या एक्सेप्ट कर लिया है कि जो फॉरेन स्टूडेंट्स जो यहाँ आते हैं, नॉर्मली वो अपने बीवियों को भी या फैमिली मेंबर्स को भी साथ के आ सकते हैं, मतलब अपने स्पाउसेस को साथ के आ सकते हैं। अब उस चीज को भी वो खत्म कर रहे हैं। और पहले ये था कि क्या मैं जब आप ऐसे स्टूडेंट वीजा पे आते हैं तो आपको फिर 3 साल मिलते हैं वर्क वीजा, अब वो 3 साल वर्क वीजा वो 1 साल का करवाना चाह रहे हैं। अब बंदा ये सोचे कि क्या मैं, इन्होंने पहले से ये स्ट्रक्चर बनाया है कि लोग यहाँ आए अपना मास्टर या पीएचडी करें, कंप्लीट करके फिर वो एक अच्छा सा काम करें, अच्छे पैसे कमाएं, और फिर उन पैसों में से तो काफी पैसे क्या मैं गवर्नमेंट को मिलेगा ना टैक्स के थ्रू। तो पहले से एक सिस्टम बना है जहां सिर्फ जो वेल एजुकेटेड एंड वेल स्टेब्लिश लोग हैं वो यहाँ रह सकते हैं, लेकिन अब उनको भी वो हटा रहे हैं क्योंकि कोशिश ये है कि जितने कम क्या मैं खासकर जो एशियन मुल्कों के लोग आ रहे हैं उनको हम जितना रिस्ट्रिक्ट करें वो बेहतर है। और साथ साथ यूरोपियन यूनियन ने एक स्पेशल डील बनाया इंडिया के साथ कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ इंडियंस आए। तो ये आप अंकल आप खुद देखें कि हम ऐसे डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ अनफॉर्चुनेटली मुसलमान
2: कहीं हम
3: होना
2: लोगों
3: आपके
2: की
3: लिए
2: अपनी
3: आसान नहीं
2: गलती तो
3: है
2: नहीं है,
3: जी।
2: कहीं हम लोगों की अपनी गलती तो नहीं है?
3: हमारी गलती है अंकल, हमारी गलती इस रीजन की वजह से है क्योंकि हम प्रॉपर तरीके से क्या हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में। अगर अभी मैं क्या मैं सिटी काउंसिल से पहले मैं क्या नोएपो काउंसिल में बैठा हूँ, वहाँ एक अंकल असलम मुल्ला पाकन है वो शामिल है क्या उस वेल में, लेकिन उनके अलावा ऐसे कोई प्रॉपर किस्म के क्या मैं मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो जब हमने फैसले लेने होते हैं कि क्या हम इस रोड को अगर हमने खोलना है या इस रोड को हमने बंद करना है या पार्किंग का हम देख लें, अगर वहाँ हमारे कम्युनिटी के लोग नहीं होंगे तो हम अपने कम्युनिटी के लिए कैसे काम करेंगे, एक तो ये है। दूसरी बात ये है कि जो लोग काम करना चाह रहे हैं अगर हम उनको सपोर्ट ना करें फिर तो आप दुआ ही कर सकते हैं।
2: लेकिन अशम अगर आप दूसरी तरफ देखें कि जो लोग 12-12, 13-13 साल से यहाँ रहते हैं, टैक्स भी दे रहे हैं, कोई इलीगल काम भी नहीं कर रहे, लेकिन उसके बावजूद उनको वीज़ा नहीं दिया जाता।
3: ये क्योंकि अंकल हमारे एक इमेज बन गई है ना, अभी भी पाकिस्तान कैटेगरी 5 में है, एक जमाने में हम कैटेगरी 3 में थे। तो ये हम ये एक इश्यू ऑन गोइंग है, इवन दो कि क्या मैं जितने सक्सेसफुल पाकिस्तानी डैनिश लोग हैं उतना क्या हो सके दूसरे और क्या माइनॉरिटी ग्रुप के नहीं होंगे। हमारे बहुत बहुत अंकल वेल स्टेब्लिश डेनिश सिटीजन है। अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट का जो जज है पाकिस्तानी है, मतलब कई ऐसे लोग हैं जो हाईली क्या मैं इन्वेस्टेड क्या मैं बिजनेस ओनर्स है जो क्या पाकिस्तानी है। तो हमारा डेनिश कम्युनिटी में हमने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, पॉलिटिकली हमने उस तरीके से इस्टेब्लिश नहीं किया जहां हमें करना चाहिए।
2: तो अशम आप क्या समझते हैं कि कुछ में कुछ हमारी अपनी गलतियां भी हैं, या आप दूसरी तरफ जमातों की तरफ कहते हैं फलां जमात हमारे खिलाफ बात कर रही है, फलां जमात कर रही है, कहीं हमारी अपनी गलतियां भी हैं कहीं?
3: अंकल मुझे लगता है कि हम प्रॉपर तरीके से और क्या हम काम कर सकते हैं। अभी आप देखें, एज ऑफ रीसेंट क्या मैं उन्होंने क्या मैं जो क्लाइमेट मिनिस्टर अनाउंस किया, वो एक अफगानी औरत है। उसने भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया, समिया नावन ने। लेकिन मेरी बस ये क्या मैं अभी तक समझ नहीं आ रही कि क्या मैं पाकिस्तानी इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हुए हैं पॉलिटिक्स में, इतना ज़्यादा क्या हम हमारा एक्सपीरियंस रहा, इतने हम लोग हैं, अभी तक हमारे पास एक पाकिस्तानी मेयर नहीं बना। तो ये आपको
2: क्या वजह
3: सवाल
2: क्या है,
3: उठाने
2: वजह
3: पड़ते
2: क्या
3: हैं,
2: है?
3: और यही मैं सोच रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि ये वजह क्या है
2: हम वोट
3: कि
2: देते
3: इसका,
2: नहीं हैं, हम पावर पॉलिटिक्स करते हैं।
3: ये भी चीज़ है कि हम जो ऐसे कम्युनिटी में हमारे पास बहुत ज़्यादा डिवीजन है। अब आप देखें पिछली दफ़ा क्या मैं पार्लियामेंट के इलेक्शन में कासिम भाई वाहिद पाकिस्तानी थे जो क्या मैं कुंभ महकमे से खड़े हुए थे, उसके उनके साथ साथ क्या समिया नावा खड़ी हुई थी, मतलब दो मुसलमान थे कुंभ महकमे में। कितने मुस्लिम लोग हैं और आपके सामने हैं, जितने वोट उनको मिले हैं वो क्या सही रिफ्लेक्शन नहीं है जो यहाँ की कम्युनिटी, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है या मुस्लिम कम्युनिटी है। तो अब मेरे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अगर हम प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करें अपने कैंडिडेट्स को तो हमारे लिए आसानियां भी हो जाएंगी, क्यों इन द एंड ये रूल्स हमारे लिए है ना। अगर क्या हम रूल सही लोग नहीं आएंगे अंदर तो हमारे खिलाफ रूल्स बनेंगे।
2: आप यहाँ पैदा हुए, आपने यहाँ तालीम हासिल की, आपने कानून को फॉलो करते हैं, तो उसके बावजूद अगर आप प्रॉब्लम बताते हैं, फिर आम आदमी का क्या हाल होगा?
3: अंकल यही क्या मेरी सबसे बड़ी कंसर्न है। अगर वो क्या मैं मुझे सिकंदर भाई या किसी और क्या जो पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैं हमें ऐसे ट्रीट करें तो जो आम आदमी है उनके साथ क्या होता होगा क्या मैं ऑन अ डेली रूटीन। तो बेसिकली हमें क्या एक चेंज लेके आना पड़ेगा और ये राम नाम से आएगा। लेकिन सबसे पहले अगर हम साथ इकट्ठे होके क्या हम अग्री करें कि नहीं बिल्कुल हमें इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए तो फिर ही क्या हम आप लोगों के लिए काम कर सकते हैं।
2: अच्छा, हम अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। अगर हम खुद वोट नहीं डालते तो फिर हम डैनिशों को किस तरह कहें कि वो हमें वोट डालें?
3: बिल्कुल अंकल, हमें क्या हम रियलाइज करना चाहिए कि वोट की क्या इंपॉर्टेंस है। एंड ये नहीं है कि क्या मैं अच्छा बारिश हो रही है इस दिन तो हम क्या वोट नहीं डालना चाह रहे, ये अक्सर ये एक बहुत बड़ा इश्यू होता है और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है मेरे अपने दोस्तों के साथ कि वो कहते हैं कि यार कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप पिछली कम्यून के इलेक्शन में आप देख सकते थे कि क्या मैं हमारे कम्युनिटी के एक कैंडिडेट थे जो एक वोट से हार गए थे। तो ऐसे भी इंसिडेंट्स होते हैं तो
2: क्या इसमें
3: हमें
2: हमारी
3: ऑब्वियसली
2: पाकिस्तानी पॉलिटिक्स तो नहीं शामिल?
3: अंकल ये तो आप लोगों को बेहतर पता होगा, मैं तो होप करता हूँ कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स नहीं इन्वॉल्व है। लेकिन मैं ये भी कह सकता हूँ कि ऑब्वियसली कोई ना कोई हद तक ये भी सच्चाई है।
2: सच्चाई है। तो आखिर में हमारे पास 1 मिनट है, आप किस तरह क्या कहेंगे आखिर में अपने वोटर को, सपोर्टर को, सामाइन को, नाज़रीन को?
3: जी शुक्रिया, बस मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि ये इस मुकाम पे लेके आ गए हो आपने, कि मुझे क्या ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल गई है कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरी तो ऑब्वियसली ये ख्वाहिश थी कि क्या मैं कम्युनिटी इलेक्शन में हमें 2 मंडेट मिलते कि मैं एंड सिकंदर भाई साथ साथ क्या हम जाते वहाँ। लेकिन बहरहाल एक सिचुएशन बन गई है, उसको हम फिर देख के चलेंगे। एंड खुशी की ये बात है ना कि क्या मैं हमारी कम्युनिटी के बंदे को मिला है वो मंडेट,
2: इसमें कोई
3: क्योंकि ये भी
2: शक
3: तो हो
2: नहीं है,
3: सका
2: फ्री
3: किसी
2: करोने
3: गोरे
2: का
3: को मिल
2: मैंडेट
3: जाता।
2: है,
3: जी
2: ये फ्री करोने का मैंडेट है, आपकी पार्टी का मैंडेट है।
3: बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी ऑब्वियसली कोशिश ये होगी कि मैं जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं उनको लेके चलूं। अगर कभी भी कोई आपको इश्यू सामने नजर आए आप मुझे क्या मेरे से रब्ता करें, एंड फिर होपफुली मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से पॉलिटिकली सेटिस्फाई करूं।
2: अशम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे साथ शेयर किया। सामान्य नाजरीन, ये नौजवान सामान, बहुत सारे सवालात थे। अभी हमारे लिसनर तनवीर साहब, उन्होंने हमें फ़ोन किया, अरेंज मैरिज के हवाले से बात हो रही थी, तो चूंकि ये थोड़ा टाइम था इस पर हमने खुल के बात करनी है, آئندہ جو پروگرام بنائیں گے اس کے اسی موضوع کو لے کر آگے چلیں گے. سمجھنے والے ساتھ ساتھ رہیے گا.

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ये मिला जुला इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम है जो अदारा आपकी आवाज़ के स्टूडियो से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मौसम जो है वो ठंडा होता जा रहा है, पत्ते गिर गए हैं और बादल भी आ गए हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हमारे थिंक टैंक सैयद तुकीर हसन बुखारी शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आज क्या लेकर आए हैं आप?
2: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा फूल साहब, आपको, आपकी टीम को, आपके लिस्टर नाजरीन को, सबको अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि इस वक्त डेनमार्क का मौसम तो बहुत सर्द हो रहा है, बल्कि सर्दियों की तरफ, सर्दियों की आमद कह सकते हैं आप। टेम्परेचर जो है वो 17-19 के दरमियान है, और अगर थोड़ी सी धूप निकला है तो अब आप 20 चला जाता है, लेकिन फिर भी मौसम जो है ये अब जैकेट्स वगैरह पहनने का मौसम आ गया है। और खसूसी तौर पे जो हमारे थोड़े से उम्र सीधा लोग हैं, मेरी उम्र के लोग हैं, इनको बहुत एहतियात करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे कुछ अजब किस्म के वायरस भी आ गए हैं जिससे लोग बीमार भी हो रहे हैं। और फिर आपको पता है कि डेंगू वायरस जो पाकिस्तान में अमूमन सुनने में आता है और देखने में आता है कि बहुत सारे लोगों को डेंगू हो गया है, फ्रांस और दूसरे इलाकों में काफी डेंगू के जो है वो वाकयात हुए हैं, जिससे ये भी पढ़ने में आया कि कुछ लोगों की डेथ भी हुई है। ये डेंगू जो मच्छर के जरिए फैलता है, और ये मच्छर जो है वो यूरोप में आ चुका है। डेंगू मच्छर जो होता है, डेंगू वायरस फैलाता है, तो इसी तरीके से हमें एहतियात करना चाहिए। दूसरा ये है कि 1 अक्टूबर से हर जो पेंशनर है या जो फौजी पेंशनर है या वो जो कोई बड़ी क्रिटिकल किस्म की डिजीज के अंदर है, जैसे कैंसर है या हाई डायबिटीज, उनको उन्होंने कहा कि आप अपना टाइम ले सकते हैं, शेयर करा सकते हैं कि आप किसी भी जगह जाके, तो ये जो इन्फ्लुएंजा का इंजेक्शन होता है जिसको फ्लू हम कहते हैं, वो और कोरोना वायरस का इंजेक्शन दोनों आप लगवा सकते हैं, या आप दोनों में से एक डिसाइड कर लें कि कौन सा हमें लगाना चाहिए। देखिए, रूमर्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बातें होती है कि जी वो कोरोना वायरस ये कर देता है, कोरोना वायरस के साथ ये बीमारी आ जाती है। मैं खुद अब 77 की एज में जा रहा हूं, पर जल्द 77 पहुंचूंगा, लेकिन मैं शुरू से ही कोरोना वायरस जो है इसके इंजेक्शन लगा रहा हूं। मैं मुझ में अभी तक कोई तब्दीली नहीं आई, कोई इसके असरात नहीं हुए, बल्कि मुझे क्योंकि मैं टैक्सी चलाता था तो मुझे बाज औकात वायरस, ये जो कोरोना वायरस है, ये लग जाता था, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन या 24 आवर से ज्यादा ज्यादा आप ये कह सकते हैं कि 2 दिन तक मुझे थोड़ा सा महसूस होता था, उसके बाद मुझे अपनी इम्यूनिटी की तरफ से जो मेरे अंदर वो ताकत होती थी उसकी वजह से मैं सर्वाइव कर जाता था। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं कर रहा कि आप जरूर लगवाएं, लेकिन गवर्नमेंट ने सबको जो है वो मेल भी भेज दिया, ई बॉक्स में भी आ गया, आप जरूर एहतियात करें, अपने डॉक्टर से पूछें। फिर जब आप ट्रेवल कर रहे हैं तो सबसे जरूरी इस वक्त ये बात है कि आफ्टर ऑल की जो ये जो

0: सर्दियों की छुट्टियां हैं जो जिसको हम कहते हैं पतझड़ का जमाना, मौसम खजान जिसको उर्दू में कहा जाता है, वो अब अक्टूबर में उसकी छुट्टियां होने वाली हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रेवल करेंगे, सफर करेंगे। तो मैं आपको अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि मैं गवर्नमेंट के जो असूल है उसकी तरफ से आपको बता रहा हूँ, जो कानून है। एक, अगर आप पेंशनर हैं, 40 पेंशनर हैं, बिफोर टाइम पेंशन आपने ली हुई है, तो आप अपने उड पिटेलिंग डेनमार्क को जो है, जो आपका पेंशन का अदारा है वो सबका है, उसको कहते हैं उड पिटेलिंग डेनमार्क, आप उनको जरूर इन्फॉर्म करें। वो आपको एक, जब आप उनको डेट लिखाएंगे कि हम इस डेट से इस डेट के लिए हम फलानी जगह सफर करके जा रहे हैं, तो वो आपको ई बॉक्स में आपकी छुट्टियों का जो है ऑफिशियल वो भेज देंगे कि इस बंदे, ये बंदा जो है, ये ऑफिशियल छुट्टियां गुजारने के लिए जा रहा है। उसके ऊपर मुल्क का नाम नहीं लिखा होगा, कुछ नहीं लिखा होगा, लेकिन वो आपको ये बताएंगे कि आपको कितना अरसा तक बाहर रहने की, इस मुल्क से बाहर रहने की इजाजत है और किस तरीके से। एक पेंशनर जो है, जब वो बता के जाता है, जैसे मैं फुल पेंशनर हूं, तो मुझे उन्होंने लिख के भेजा था, मैंने उनको कहा था कि मैं 1 माह के लिए जा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे लिख के भेजा था कि तुम्हें 6 माह तक बाहर रहने की इजाजत है विद पेंशन, यहाँ की पेंशन, लेकिन उसके बाद अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है तो वो उनपे ट्रेनिंग डेनमार्क को फिर बताना पड़ेगा और उसका फैसला वो करेंगे। और ये छुट्टियां जो है, ये आपके लिए लीगल है, आपके पास एक बवीस आ जाता है अगर आपको कम्यून पूछती है या कोई पूछता है। इसके अलावा आप जो है बाउ सर्विस, जो आपके लोकल बाउ सर्विस है, आप उसको मेल कर दे, टेलीफोन कर दे। आप ये ना कहेंगे कि मैंने फ्राइडे नाइट को सफर किया तो कम्यून बंद थी, या सैटरडे या संडे को किया तो कम्यून बंद थी, नहीं, आप उनको मेल कर सकते हैं, आप उनको टेलीफोन कर सकते हैं, अगर वो टेलीफोन टाइम है तो वो सुनेंगे, नहीं तो मेल पे आप उनको मैसेज कर दें। तो क्योंकि जिस अदारे से आप पैसे ले रहे हैं उनको तो उड़पे ट्रेनिंग डेनमार्क को तो पता है कि आप राइज कर रहे हैं, लेकिन बहुत सर्विस को भी आप बता के जाएं। इसी तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, आप काम से छुट्टियों पे जा रहे हैं, ये याद रखें कि छुट्टियां तो आपका लीगल हक है, लेकिन आपका ये लीगल हक है कि जब आप इस मुल्क के बॉर्डर को क्रॉस करते हैं तो वहां पे प्रोटेक्शन देनी, वहां पे कानूनी तौर पे आपकी मदद करना, इस गवर्नमेंट का, इस मुल्क का फर्ज है। आपके पास येलो कार्ड हो, आपके पास परमानेंट अपॉर्चुनिटी लेटर हो, लेकिन आपके पास अगर खुदा ना हास्ता नेशनलिटी है, मेक नो डिफरेंस, आपने अपने जो आपकी बहुत सर्विस है उसको आपने इन्फॉर्म करना है कि हम छुट्टियों में कहीं जा रहे हैं। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता वहां पे जाकर आप से कोई एक्सीडेंट या कोई ऐसी चीज हो जाती है, आप बीमार हो जाते हैं, तो वो आपकी पूरी एम्बेसीज वहां की और गवर्नमेंट ऑफ डेनमार्क जो है वो आपकी मदद करते हैं। ये लीगलाइज चीजें हैं और ये आपको करते हैं। अब पाकिस्तान जो है वहां पे राइजे फुजिंग जो है वो कवर नहीं करती, वो राइजे फुजिंग इसलिए कवर नहीं करती कि आपका पूरा पाकिस्तान जो है वो रेड जोन और ऑरेंज जोन के अंदर है, और ये इस वजह से है कि कैटेगरी 5 उस पर लागू होती है। हालांकि ग्रे ग्रे जोन से पाकिस्तान निकल चुका है, और ग्रे जोन से निकलने के बाद ये हमारी एम्बेसीज और हमारे यहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी वजह से यहाँ पे ये केस पुट अप नहीं हुआ, और इंशाल्लाह ताला इस पे आवाज उठाई जा रही है, कम्युनिटी के चेयरमैन भी हमारे साथ हैं, और इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला ये आगे लेके जाएंगे। लेकिन आप अपनी छुट्टियों पे अपनी इतला करके जाएं ताकि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम किसी मुल्क में आ जाती है, एग्जाम्पल आप पाकिस्तान चले जाते हैं, आप बता कर नहीं जाते और वहां पे आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, मिडिल ईस्ट की वॉर की वजह से आपको फ्लाइट्स नहीं मिलती, आप काम पे नहीं आ सकते, आप फंस गए हैं, तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है डेनमार्क के अंदर। लिहाजा जब आप बताकर जाएंगे तो डेनमार्क से वहां जाने पे ये गवर्नमेंट जो है एम्बेसी जो है वो आपकी फुली मदद करेगी, बजाय आप वहां जाके ऑल फॉर बके और ये कह दियो ओ जी स्कूल मुझे तो समझ नहीं आई मैं कानूनी। हम आपको बता रहे हैं और इस प्रोग्राम में आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे लीगल बताकर जाना आपका राइट्स है, आपको कोई स्टॉप नहीं कर सकता। और अगर आप कम्यून से सोशल ले रहे हैं या आप ऑफिस लूज है फिर भी आपका राइट है कि आप छुट्टियां ले सकते हैं और आप उनको बताएं वो आपको छुट्टियां देंगे और उन छुट्टियों में आपको बकायदा पैसे मिलेंगे। जी राजा साहब।
1: शाह साहब आपने तो सारी मालूमात दे दी। तो शाह साहब ये जो हमारे सिटी काउंसिलर साहिबान होते हैं जिस जिस कम्यून में बैठे होते हैं, मैं कोपेनहेगन की बात करूंगा, फ्रेडस्पिया की बात करूंगा, तो ये लोग क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन देते जब ये इलेक्शन आते हैं? तो ये माशाल्लाह सारे एक्टिव होते हैं, सब जो पाकिस्तानी नसाद जो डैनिश भी हैं और उनके पास परमानेंट अपर छलालसा भी है, ये सारे लोग ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं, क्या बात है शाह जी?
0: राजा साहब अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए, आप रेडियो पे ले लेते हैं हम लोगों को आपके थ्रू, आप हमें मुझे कहते हैं और हम एक दो बंदे हैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी हैं, लेकिन अगर लोग सुनना नहीं चाहते, लोग सवाल जवाब नहीं करते, लोग आपको लिखते नहीं है कि हमें ये कानून के हमारी रहनमाई फरमाए, तो यहाँ पे इतने ज्यादा फैसिलिटीज हैं इस मुल्क के अंदर कि जिनको हम एंजॉय कर सकते हैं, जिनको हम सही मायने में उनको लेके चल सकते हैं। बाकी रहा ये काउंसलर्स और ये जो ये लोग एक पोस्टर हैं, ये बस आते हैं कि हमें हमें हमारी तस्वीर आ गई, हमारा पोस्टर लग गया कि हम काउंसलर बन के हमें हम जी बहुत हायर एजुकेटेड हैं। हमने ठीक है जी आपको मुबारक हो, आप बहुत हायर एजुकेटेड हैं, मेक नो डिफरेंट, अच्छी बात है आप और हायर एजुकेटेड हो, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोगों को आकर आप खुद दे कि आपकी कम्यूनों के, क्योंकि हम बारहा पिछले 8-9 साल से आपके रेडियो पे ये बकायदा बता रहे हैं लोगों को कि हर कम्यून के अपने अपने जो आवाम है आप जो उस इलाके में रहती है उसके लिए डिफरेंट कानून है, उसके लिए डिफरेंट चीजें बनाई हुई है और आप उनको कैसे चलाते हैं, फिर ये इनका काम है आकर बताना। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स है कम्यून के अंदर और आपकी रसाई वहां तक नहीं हो सकती तो फिर आप इन काउंसलर से बात कर सकते हैं कि भाई प्लीज आप हमारी मदद करें। अब काउंसलर जो हैं वो अपना काम करते हैं, प्राइवेट जो जॉब वगैरह करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं 5-10 मिनट के लिए कोई प्रोग्राम, कोई अगर कोई इनकी अपनी जो छोटी सी पार्लियामेंट होती है उसके अंदर कोई बहस मुबासा, तो ये खुद पूरी वो चीजें पढ़ के नहीं गए होते, वो बजट को इनको पता नहीं होता, ये जाते हैं और मुंह उठा के आ जाते हैं, कहते जी हमने बस ये हाँ हाँ कर दी। तो हालांकि जो पार्टी के चुने हुए लोग होते हैं वहां पर बोलते हैं और ये बस साइन करके आ जाते हैं, तो ये आवाम को क्या बताएंगे, ये तो फोटो सेशन के लिए आते हैं।
1: तो
0: और फोटो सेशन
1: एक एनवायरनमेंट होती है कि अगर आपने यहाँ डेनमार्क की सियासत ही नहीं करनी, लोकल जो सियासत होती है बड़ी पावरफुल सियासत होती है, यहीं लोकल जो है लीडर बनते हैं, यहीं से पार्टियां टिकट देती हैं, लेकिन जब हमारा इंटरेस्ट इस तरह का ना हो, हमारा इंटरेस्ट जो है पीछे की तरफ हो, तो हम जो है वो ऐसे लोग आ जाते हैं, वो उन्हें जाहिर है कि एक जगह चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए, गाड़ियाँ चाहिए, खाना मुफ्त होता है। तो शाह साहब इससे तो बड़ी कोई अय्याशी नहीं है, जबकि हमारे बच्चे यहाँ हैं, इन्हें यहाँ पढ़ते हैं, इन स्कूलों में जाते हैं, यहाँ टैक्स देते हैं, इन्हें तो यहाँ की सियासत की तरफ तो जो देनी चाहिए।
0: राजा साहब आपका सवाल बड़ा रेलिवेंट है, इन सियासतदानों को मैं क्या करूं, मैं तो इनको दावत देता हूं आओ मेरा सर पाड़ो, मुझे मारो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मेरे दांत दारा तोड़ो ताकि मैं बोलना छोड़ दूं, मैं बूढ़ा आदमी हो गया, मुझे समझ आए कि अब जवान लोग मुझे मार। देखे पिछले 25-30 साल से जब से इनवादा के जो कानून जो है सख्त हुए उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं कि हजारों के हिसाब से लोग जो हैं वो विद फैमिली जो हैं वो ग्रीन कार्ड पे डॉक्टर्स इंजीनियर्स की और बड़े बड़े साइंटिस्ट की शक्ल में वो डेनमार्क में आ रहे हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं ना हम अपने किसी रिश्तेदार को बुला सकते हैं, ब्लड रिलेशंस को यहाँ बुला सकते हैं डेनमार्क के अंदर विजिट करने के लिए, ना ही हम अपने बच्चों की शादियां जो है वो अपनी मर्जी से वहां पे कर सकते हैं। ये जो ब्लडर कर रहे हैं इसकी इसकी वजूहात जो है ये हमारे काउंसलर हजरात हैं, क्योंकि हम इनको वोट देते हैं और ये कहते हैं जी हमारी बिरादरी। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो ये है कि यहाँ पे मुसलमान फिरकों में बटे हुए हैं, मसाजिद जो है वो फिरकों की अलामत होती है, और उसके अलावा यहाँ पे बिरादरीज्म जो है वो बड़ा स्ट्रांग है, और गांव के अंदर और जी ये फलाने पिरदा अस्तफार अल्लाह ताला मुझे माफी दे, मैं अल्लाह ताला से माजरत करता हूँ और माफी मांगता हूँ और उन लोगों से माजरत करता हूँ जो मुझे सुन रहे हैं कि ये फलाना कमी है, फलाना ये फलाने पिंड है, ये फलाना फलाने के मैं बड़ा बड़ा चौधरी हूँ, पीछे चौधरी साहब के पास उस वक्त मजी भी इस तरह ही ना होता हो, लेकिन पैसा जब आ जाता है तो फिर सब चौधरी बन जाते हैं। तो बात असल में यह है कि हमें यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ख्याल करना चाहिए। इस्लाम में सबसे बड़ी इस्लामी तलीमात में यह है कि हम सब बराबर हैं और सब कलमा गो हैं, हमें किसी को ये
1: क्या
0: काम नहीं
1: गाइडलाइन
0: देखना
1: देते
0: चाहिए।
1: हैं? यहाँ तालीम मुफ्त है, हर चीज जो है वो पढ़ने यूनिवर्सिटी तक की तालीम मुफ्त है, तो किस तरह बच्चों को जो है, बच्चे पढ़ते भी हैं जाते हैं इसमें कोई शक नहीं है, बड़ा नाम है बच्चों का, डॉक्टर्स हैं इंजीनियर्स हैं, गो के किसी भी महकमे में चले जाएं हमारे बच्चे बड़े काबुल हैं, गैर मुल्की बच्चे बड़े काबुल हैं। शाह साहब कौन सी गाइडलाइन दी जाए कि जब 70-71 वाले लोग आज वही कुछ बनाना चाहते हैं जो 70-71 में आए थे, हमारी तरह बनो।
0: जब तक हम अपने कलमा को भाई को अपने बराबर का स्टेटस नहीं देंगे, ये सबसे बड़ी गाइडलाइन है। जब तक हम किसी को कमी और ये कि ये फलानी नस्ल का ये फलानी नस्ल का, जब तक हम इस चीज में ठीक है, अगर कोई बंदा शराबी है नशा करता है उसके अंदर कोई बुराई है तो एक वो अकेला सब्जेक्ट है, उसके आप दूर है एक अलग बात है, लेकिन अगर कोई अगर काम कर रहा है, कोई टैक्सी चला रहा है या कोई पीछे कोई बेचारा जूतियां सी रहा था या कपड़े सी रहा था, तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो दर्जी है या क्या था या नाई था, उसको इसके पेशे पे मत जाए, ये देखिए कि उसके अंदर खानदान कौन सा है, उसका खून क्या है, उसके दूसरे लोग क्या करते हैं। आप ये हिसाब लगाएं कि मैंने खुद लोगों को देखा है गुजरात शहर के अंदर जिस मोहल्ले से मैं आया हूँ, वहां के बहुत बड़े लोग ऐसे थे जो कि टूटे हुए मकानों में रहते थे, लेकिन बाद में उनके बच्चों ने एजुकेशन हासिल की और उन्होंने टॉप में पाकिस्तान के वो लोगों में शामिल हुए। इसी तरीके से मैंने बहुत सारे अपने दोस्तों को देखा जो मेरी क्लास में मेरे साथ पढ़ते थे, उनमें से मेजोरिटी जो है उन्होंने बड़ी बड़ी जॉबें की। तो कभी किसी की ये नहीं देखना चाहिए कि क्या था, मेरा बाप जो था मेरा बाप था, मेरा दादा जो था वो उनकी अपनी पोजीशन थी, मैंने इंजीनियरिंग पढ़ के मैंने क्या किया, मैंने डेनमार्क के अंदर सारी उम्र टैक्सी चलाई और सियासत की और लोगों से बातें
1: तो
0: की।
1: शाह
0: तो क्या इसका मतलब
1: आपको
0: है
1: बहुत तजुर्बा है ये जो टैक्सी के मामलात आ लोगे, लोग बड़े खुश हैं, उनको जो नया नई टैक्सी ब्रांच चली है खुली है तो लोग परमानेंट जॉब करते हैं, महीने के महीने उनको तनख्वाह आ जाती है, अगर खुद भी माल अपनी टैक्सी है तो फिर भी वो अपनी 2-3 घंटे चला लेते हैं, तो शाह साहब ये जॉब अच्छी नहीं है?
0: जी बिल्कुल, जॉब करना ये बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बता दूं कि अब क्रिसमस के बाद दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी सबको पता है कि ये सबसे बुरे तरीन महीने होते हैं एक कैब ड्राइवर के लिए, एक लोगों के पास, क्योंकि दिसंबर का महीना वो क्रिसमस मनाने के लिए और न्यू ईयर मनाने के लिए वो इंतहा से ज्यादा अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम होती है उसको यूज कर चुके हैं, उसको इस्तेमाल कर चुके होते हैं, तो फिर लोग जो है वो इन पे सफर नहीं करते, कोई मजबूरी के आलम में हो तो वो सफर करता है, तो वहां पे इनकम जो है कम हो जाती है और ये अपने अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इसलिए ये जो नई टैक्सी आई है, जो नया सिलसिला शुरू हुआ है कि आप 29-30 हजार आपको वेज मिल रही है उसमें से आप टैक्स दे और फिर आपको कंपनी जो है वो आपको एज ए ड्राइवर जो है वो रख रही है और आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी जो आपको वो टूर देंगे उस पे आपने टूर लेने हैं, इसमें आपको कोई प्रेशराइज नहीं कर रहा, आपको जहनी तौर पे ये नहीं कह रहा कि आज पूरी दिन में से आपने 1,000 करोड़ बनाया ये तो आपको तो अपनी तनख्वाह से है और तनख्वाह आपको मिल रही है और आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं। 7.5 घंटे जो है आपने काम कर रहे हैं, उसके अंदर आपके जो है वो लंच ब्रेक वगैरह भी सब कुछ है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा महफूज है, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे टैक्सी बिरादरान का सबसे बड़ा खुद कसूर है। जब हमने इनको 2017 में ये कहना शुरू कर दिया था कि खुदा रा इस चीज को आप आगे लेके ना जाए, इसको यहीं पर स्टॉप कर दे और अपनी वॉनमैन जो है इसको बचाए, लेकिन इन्होंने क्या किया, उस वक्त इन्होंने कहा कि ये जो रेडियो आपकी आवाज है इसके ऊपर शाह साहब बैठ के झूठ बोलते हैं और ये बस ऐसे ही बेकारे करते हैं और हमारे लिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, कोई हमारी वॉनमैनशिप छीन नहीं सकता, हम लोग महफूज हैं, हम लोग महफूज हैं। तो आज ये है कि कोई भी वॉनमैन नहीं है, कोई भी वॉनमैन जो है उसका स्टेटस जो है वो डेनिस जबान के अंदर वो एक आम गाड़ी का मालिक है, आम गाड़ी का, जिसको इजाजत दी गई है टैक्सी चलाने की, जिस तरह ऊबर जो है वो इजाजत देती है कि भाई आप जो है आपके पास एक आम गाड़ी है तो आए हम आपको उसको एज ए टैक्सी चलाने की इजाजत देते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने भी ये किया है और ये इसलिए उन्होंने ओपन कर दिया हर चीज और इससे लोगों
1: लेकिन
0: को
1: शाह साहब एक
0: बहुत
1: बात
0: फायदा
1: सुनने
0: है।
1: में आ रही है, ये भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ हो सकती है कि मियां मुनीर साहब जो हैं वो फोरमैन रहे टेक्सा ब्रांच के, तो वो सुना है कि वो भी अपनी जो है वो गाड़ी वापस करने जा रहे हैं।
0: जी बहुत सारे लोगों ने गाड़ियां वापस कर दी हैं और बहुत बहुत सारे लोग जो है वो सोच रहे हैं, क्योंकि हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि गाड़ी के जो खर्चे हैं 30-35 हजार करोड़ का जो खर्चा है मंथली गाड़ी का, वो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। जब आप इतनी मेहनत करें और अपनी अपनी तनख्वाह भी ना निकाल सकते हो, तो कोई भी आदमी जो है जो सेंसेबल आदमी है वो इस चीज को नहीं देखेगा। और दूसरा ये चीज है कि आप देखें इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 लाख की और मिलियन मिलियन करोड़ की गाड़ियां थी, अब उनकी रीसेल वैल्यू कोई नहीं रही, क्योंकि यहाँ पे तो अब नई गाड़ियां जो हैं, अब आपने आप देखें कि चाइना ने, मैं इसी हफ्ते में गया हुआ था, चाइनीज गाड़ियां देख रहे, उन्होंने स्पोर्ट मॉडल और इतनी इतनी खूबसूरत गाड़ियां निकाल दी है जो 3 लाख से शुरू हो रही है इलेक्ट्रॉनिक, और 3 लाख से शुरू हो रही है और उनके अंदर हर किस्म की फैसिलिटीज है, हर एक चीज है। तो ये चीजें जो है ये ज्यादा से ज्यादा सस्ती गाड़ियां आ रही है, लाख तक करोड़ में आप गाड़ी, आप छोटी से छोटी जो है इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आप ले सकते हैं। तो ये गाड़ियां जो है अब सड़कों पे आ गई है और लोग अगर लेते हैं गाड़ियां, मेरे अपने बच्चों ने रखी हुई है, तो ये गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो फिर बैटरी जो है जब उसकी गारंटी खत्म हो जाती है तो फिर सबसे महंगी जो चीज है वो 1 लाख से ऊपर की जो बैटरी है वो जो है वो प्रॉब्लम करती है बंदे को, क्योंकि जब आप कारोबार ही नहीं करते, आपके पास इतना बड़ा कारोबार नहीं है, आपके पास थोड़ा सा तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की रकम जो है वो बैंक आपको कभी भी नहीं देगा अगर आपके पास सरमाया है
1: तो शाह
0: कि
1: साहब
0: भाई
1: इस
0: आपकी
1: पे
0: सैलरी।
1: गवर्नमेंट मदद नहीं करती, सब्सिडी नहीं देती।
0: कोई मदद नहीं जी, गवर्नमेंट जो है वो वसूल करने के लिए बैठी हुई है, गवर्नमेंट जो है वो आपको चेक में देती है, गवर्नमेंट जो
1: तो
0: है
1: शाह
0: वो
1: साहब शहर में
0: आपको
1: पार्किंग ही नहीं है, लोग घूमते रहते हैं, जब इतनी गाड़ियां आ गई हैं कोई पाबंदी नहीं है कि आपने इलेक्ट्रिक गाड़ी जो है वो कितनी बड़ी लेनी है कितनी छोटी लेनी है। शहर के अंदर स्पीड जो है वो 30-40 तक हो गई है, तो गाड़ी की बड़ी गाड़ी की कोई पाबंदी नहीं, हर गाड़ी का मीटर 220-250 तक चला जाता है। तो शाह साहब ये पाबंदियां क्यों नहीं लगती?
0: देखिए जी, लग रही है सारा कुछ हो रहा है। अब पहले 1 करोड़ की होती थी इनकी कोई वोल्टेज इलेक्ट्रिक गाड़ी की, अब डेली अखबारों में आ रहा है कि 4.5 से जो है 5 तक चली गई है और दिन के मुख्तलिफ औकात में जो बिजली है वो महंगी हो जाती है फिर सस्ती। ये एक एक किस्म की इन्होंने लोगों को बिल्कुल पाकिस्तान की तरह इन्होंने भी ये कर लिया कि कमाई कराने करने का तरीका क्या है, पेट्रोल को महंगा कर दो, इलेक्ट्रिक को महंगा कर दो, कुछ चीजों में आप लोगों को छूट दे दो, फिर दूसरी जगह से आप पैसे पैसे जो है वो गवर्नमेंट अपने ले लेती है। तो تو یہ جو مسائل ہیں گورنمنٹ اپنے اپنے
1: ٹیکس کا نظام ہے, پھر سہولیات بھی ملتی ہیں, دیکھ لینا سوشل کی سہولیات ہوگی, اسی طرح بوڑھوں کی سہولیات ہوگی, گاڑیوں کی سہولیات ہوگی, اسپتالوں کی سہولیات ہوگی, شاہ صاحب یہ تو ٹیکس سے نظام چلتا ہے.
0: دیکھیں جی, ٹیکس کا نظام جو ہے وہ بڑا ہی گمبھیر اور غلط ٹیکس سسٹم ہے. یہاں پہ جو ارب پتی ہیں, جو کروڑ پتی ہیں, اگر وہ فراڈ کرنے لگے تو ان کو کروڑوں اربوں کا فراڈ کر جاتے ہیں اور ان کو ٹیکس والے نہیں پکڑ سکتے.
1: پھر جو سزا بھی دیتا ہے اس سے بچ کو نہیں سکتے.
0: نہیں, وہ سزا جو ہے زیادہ تر ان لوگوں کو ملتی ہے جو تھوڑے تھوڑے پیسے کا ہو جاتا ہے, جو کوئی مزدوری کر رہا ہے اگر اس کا.
1: تو شاہ صاحب آن دا ہول اس کا حل بتائیں, آپ کے پاس 80 سال 50 سال تجربہ ہے تو ہمارے پاس 2 منٹ ہے, حل بتائیں.
0: ٹیکسی کا
1: جو سارا نظام, اس کا حل بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے.
0: سب کا حل یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکس پیئر ہیں تو آپ کو رائٹ حاصل ہے کہ آپ ہر سال اپنی کمیون کے اندر جائیں, آپ ان کو کہیں کہ جی میرا کوبرا جو ہے, اس کو کوبرا کہتے ہیں, آپ میرا جو ہے فائنل جتنا میں نے ٹیکس دیا ہے, خواہ آپ آبش کی وہ ہو خواہ آپ نارمل ٹیکس پیئر ہیں, تو آپ وہ اپنا ریکارڈ نکلوائیں اور اس کو جو ہے آپ جو ہے اس پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا ٹیکس دیا ہے, یا آپ کے آبش کی وہ نے کتنا آپ کا ٹیکس دیا ہے, کیا وہ جائز ہے, کیا آپ کو اس سال جو ہے ٹیکس کس طرح دینا ہے, اس پہ آپ ٹیکس آفیسر سے بات کر سکتے ہیں. اور اگر آپ آبش کی وہ ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا جائز ٹیکس آپ نے پے کیا ہے یا کوئی ناجائز آپ سے لیا جا رہا ہے. کیونکہ یہاں پہ پچھلے 30-40 سال سے 40 سال سے اوپر جو ٹیکس کا منسٹر ہے اس وقت, انہوں نے خود یہ بیانات دیے ہیں اور اسی طریقے سے لبرل الائنس اور دوسروں نے کہ بڑا شور ڈالا ہے اس بات پہ کہ ٹیکس کے اندر بہت سارے ہولز ہیں اور بہت سارے لوگوں کو کے کاروبار جو ہے وہ چھینے گئے ہیں, بعض لوگوں نے بہت زیادہ.
1: تو شاہ صاحب یہ جو ٹیکس کا نظام جو کرتے ہیں جسے ریویسا کہتے ہیں, تو یہ 1 مہینے کے کتنے چارجز لیتے ہیں؟
0: دیکھیں جی, ریویزر بھی دو تین قسم کے ہیں. ایک ریویزر ہے جو میٹرک کرتا ہے یا فرسٹ ایئر اپنا جمنیزیم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ریویزر بن جاتا ہے کورس کر کے. ایک جو صحیح ریویزر ہے وہ ہوتا ہے اپنا اسٹیٹ ریویزر, اور اسٹیٹ ریویزر جو ہے وہ اتنے مہنگے ہوتے ہیں, وہ کرتے ہیں بڑی بڑی فرموں کے لیے کام, اور ہمارا عام آدمی جو ہے وہ اسٹیٹ ریویزر کے پاس جانے کو سوچتا ہی نہیں. ہم جتنے بھی ریویزروں کے پاس جاتے ہیں وہ اصل میں ریویزر نہیں ہوتے, وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, وہ ہوتے ہیں بک فیئر کرنے والے, یعنی جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جی منشی, کہ ہمارے منشی نے یہ حساب کتاب لکھ دیا, وہ معذرت کے ساتھ وہ اصل میں منشی ہوتے ہیں, ان کے پاس اتنی بڑی کوالیفیکیشن نہیں ہے کہ وہ آ کر وہ یہ کر سکتے ہیں کام, کہ وہ ٹیکس کو لکھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے جو
1: کبھی کبھی اشتہار بھی ہماری نظروں سے گزرتا ہے کہ آپ کو ایک جو ریویزر کی ضرورت ہے, ہم 600 کرونے میں 500 کرونے میں آپ کا مہینے کا حساب کتاب کیا کریں گے.
0: یہ غلط چیزیں ہیں, اس سے انسان دھوکہ کھاتا ہے, وہ ایک قسم کے منشی ہوتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ میں ان سے, کیونکہ یہ حقیقت ہے ڈینش قانون کے اندر, میں خود اس قانون کو جانتا ہوں, میں پڑھتا ہوں, جو اسٹیٹ ریویزر ہوتا ہے وہ اصل میں وہ بندہ ہوتا ہے کہ جو ٹیکس والوں کو لکھتا ہے کہ جو چیزیں میرے سامنے میرے کلائنٹ نے رکھی ہیں, جو پیپر اس نے مجھے ثبوت دیا ہے, اس کے مطابق جو کچھ میں لکھ رہا ہوں اور یہ میرے ہاتھ سے نکل کے گیا ہے, اس کا میں حلفن جو ہے وہ میں اس کو صحیح سمجھتا ہوں. لیکن جو چھوٹے ریویزر ہوتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں جی کہ یہ چیزیں جو تو مجھے اسے پرووائڈ کی تھی وہ میں نے لکھ دی, وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتا, وہ کہتا ہے کہ جو میرے کلائنٹ نے مجھے دیا.
2: سامعین کرام, FM 92.9 پر ہم ریڈیو آپ کی آواز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں.
3: یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے, اس کو آپ کے سننے کے لیے بنایا گیا ہے, آپ کی سماعتوں کو تسکین دینے کے لیے. سو ریڈیو آپ کی آواز سنتے رہیے تاکہ آپ اپنے ملک اور اپنی زبان سے جڑے رہیں.
4: FM 92.9 اور کیبل نیٹ 88.9 پر یہ ریڈیو آپ کی آواز ہے.

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा

0: बुद्ध ने सबु कलमा पढ़ा,
1: काफिर मुसलमान हो गए।
0: जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा हो गए। जग में जब आए मोहम्मद, इस्लाम जिंदा

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: क्यों ना हो बाहर लम्हा